107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार, वैशाख मास की 29वीं तिथि, शक संवत 1948। तदनुसार 19 मई सन 2026 सुबह के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: सबसे पहले। हरि का नाम है सबसे प्यारा, कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

107 FM पर मैं शिवम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रातः के 6:02 हो रहे और प्रतिदिन की तरह विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं और आज की भक्तिभाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि के साथ दिन का शुभारंभ करते हैं।

किसी पात्र की तरह नहीं है जिसे तथ्यों, मतों या उधार की बुद्धि से भर दिया जाए, अपितु मन तो एक जीवंत अग्नि है जिसे जिज्ञासा, चिंतन और सत्य के प्रेम से सदैव प्रज्वलित रखना चाहिए।

मन की कल्पना एक सूखी लकड़ी और लकड़ी के टुकड़े के रूप में करें। जैसे एक चिंगारी उस लकड़ी को छूती है तो आग पकड़ लेती है और हमें गर्मी देती है और प्रकाश भी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार मन को भी जिज्ञासा, जुनून और खोज की ज्वाला से प्रज्वलित करते रहिए।

जय श्री हनुमान। दोस्तों आप सुन रहे हैं भक्ति भाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि। 6:20 हो रहे हैं। ज्ञान की खोज का अर्थ खाली बर्तन में अनाज की तरह सूखे हुए तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा को जन्म देता है जो रचनात्मकता को पोषित करे, खोज को प्रेरित करे और मौलिक विचारों को और भी ऊर्जावान बनाए।

ज्ञान जब केवल तथ्यों का संग्रह बनकर रह जाता है तो वह बोझिल और निष्क्रिय निर्जीव हो जाता है, पर जब वही ज्ञान समझ को जन्म देता है तो वह बुद्धि का रूप ले लेता है, जो सदैव जीवंत, प्रकाशमान और अनंत रहता है।

खुद को व्यस्त रखना ही ईश्वर का मार्ग है। श्रम जिसे लोग कठिन समझते हैं, असल में वही ईश्वर का मार्ग है, क्योंकि परिश्रम से ही ईश्वर मिलता है, जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और आपको ज्ञात हो कि कोई काम बोझ नहीं होता है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है।

व्यस्त मन कभी प्रलोभन से ग्रस्त नहीं होता, यह कमजोर मन वालों के लिए दोहरे लाभ वाला होता है। व्यस्त लोग जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं, वे सबसे ज्यादा खुशी रहते हैं।

मैं पुष्पांजलि से आप सभी से अनुमति लूं, पर उनका नाम, जिनका नाम के बिना बड़ा से बड़ा यज्ञ, बड़ी से बड़ी पूजा अधूरी होती है, वो नाम का जयघोष, जिनका नाम लेने भर से जीवन के सारे दुख क्लेश कट जाए, भोलेदानी महाकाल बाबा विश्वनाथ का नाम। जुड़िए मेरे साथ और कीजिए शिव को नमन, और मेरे साथ आंखें बंद करके बोलिए एक बार, ओम नमः पार्वती पते हर।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में ग्रामीण निकायों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। वहीं मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो आगरा व लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों को इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.5

4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के तौर पर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में कल खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:05 पर आपका दोस्त शिवम हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेके, जिसे आप कहते हैं सदाबहार गीत। और दोस्तों आज मंगलवार है और ये चमकती धूप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी धूप तेज हो गई है, तो उठ जाइए और मंगलवार के दिन को और भी बेहतरीन से तरीके से देखें, क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं और बहुत से ऐसे गाने भी हमने लेके आए हैं जो आज शायद पहली बार आपने सुने हो। तो ये गाना सुनिए और एंजॉय करिए सुबह को।

7:12 प्रोग्राम सदाबहार गीत में शिवम आज आपके साथ है। अच्छा दोस्तों, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि बहुत टाइम हो गया आपने कभी अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, कोई उपहार खरीदा है, या अगर कुछ ऐसा किस्सा हो तो हमसे शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से याद आया कि बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल भी किया है, बड़े सारे लोगों ने तारीफ भी की है प्रोग्राम की, गाने उनको पसंद आ रहे हैं, मतलब कि लोग जग गए हैं भाई साहब, अपने काम में बिल्कुल अब मगन हो गए हैं। क्योंकि गर्मियों की जो सुबह होती है ना, अगर हम सर्दियों की रात से कंपेयर करें इसको, तो वो अभी के टाइम में ऐसा लगता है कि दिन कितना आगे चला गया है, कितने उजाले हो गए हैं, लोग आने जाने लगे हैं, सड़कों पर भाग दौड़ होने लगी है, चहल पहल होने लगी है। बहरहाल, हम बात कर रहे थे गिफ्ट के लिए कि कभी आपने अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदा है कि मतलब आज भाई हमारे ऑफिस में बिना डांट किए, बॉस की बिना डांट सुने आज मैंने पूरा काम कर लिया, तो शाम को वापस लौटते टाइम अपनी फेवरेट वाली शुगर फ्री या विद शुगर कोई आइसक्रीम खा ली, या वो शर्ट जो हमें बहुत पसंद है, मेहनत करने के बाद वो शर्ट आज पहन के अगले दिन ऑफिस आएंगे, ऐसा कुछ किया है कुछ स्पेशल अपने लिए, चूंकि हर कोई दूसरों के लिए करता है, तो कभी अपने लिए कुछ खरीदा है बताइएगा जरूर। वैसे चना जोर गरम गाना है, सुनिए स्वाद लीजिए गाने का।

आप सुन रहे हैं 7:21 पर सदाबहार गीत, और रवि अभी जो गाना सुना, सुबह सुबह वैसे चना खाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो आपने गाना सुना उसको सुनना भी अच्छी बात होती है। बिल्कुल उसी तरह जो अगला गाना है, वैसे जो ये गाना हम सुना रहे हैं, एक जगह है, उस जगह का जिक्र है और उस जगह पे कुछ खो जाता है। वैसे तो ये बड़ी मोहब्बत और आशिकाना मिजाज से गाया जाता है, लेकिन आमतौर पर हमारे और आपके घरों में अगर गिर जाए सुबह सुबह तो बिल्कुल एकदम तांडव काट दिया जाता है। भाई साहब गाना सुनिए, उसके बाद इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं।

तो भाई साहब, अगर झुमका गिर जाए तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कोई वापस करने का इरादा रखता होगा, लेकिन अगर वाकई में अगर किसी का गिरा हो तो वापस करने में ही भलाई है। वैसे देखिए, यह है ना, मोहब्बत की इंतहा होती है कि झुमका गिरा और जगह मशहूर हो गई, है ना, बरेली। ऐसा ही कुछ गाना मैं अगला सुनाने वाला हूं आपको, और इस गाने से ना एक

उस समय बड़ा ही एक भ्रम फैला था 90s के बच्चों में। तो इस गाने की कहानी यह है कि इस जो फिल्म है ये बहुत अच्छी फिल्म थी, और इस कहानी से अलग इसकी एक जो रूमर था कि नागिन फिल्म का जो मैं गाना सुनवा रहा हूँ आपको एक्चुअली, तो इस गाने में जब ये फिल्म खत्म होती है तो जो बच्चे थे ना उनको ये फील होता था, उनको ये कहानी दिमाग में बैठती थी कि सांप की आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो फोटो क्लिक करती है। बाद में जब बड़े हुए या तमाम तरीके के रिसर्च देखी गई या जानकारी हुई तब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या आपको पता है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि हम आपके साथ जो रिश्ता है वो तोड़ने वाले हैं। और हमारे साथ एक और मोहतरमा आ गई है रिश्ता निभाने के लिए। फिलहाल उनका नाम जो है हम अभी छुपा कर रखेंगे, उनकी आवाज जरूर सुनाएंगे। लेकिन रोशनी रावत ने मेल किया है, सुल्तान रजा साहब ने मेल किया है, मोनू सेठ ने मेल किया है, गुलफसा और अंतर सिंह, अशोक कुमार, शिवराम और ब्रजेश सिंह वारिस अली जी ने मेल किया है। तो हमें ये बताइए कि
1: पूछिए,
0: अभी जो भी हमने गाना सुना तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये गाना हमें 90s के दौर में तो जोड़ता ही है, और उसके अलावा जो आज का टाइम है, नहीं लगता कि मतलब आज के समय में रिश्तों की जो है महत्व बड़े खोए जा रहे हैं, उसकी परिभाषाएं बदल रही हैं?
1: हाँ नहीं, ये बात तो बहुत सही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है ना, तो हर चीज इवॉल्व करती है, तो रिश्ते भी, रिश्तों के स्वरूप बदल जाते हैं, तो वो और लोगों की सोच बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो अभी क्या है ना, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है रिश्तों में थोड़ा हल्कापन लाने का। जैसे पहले मान लीजिए, आपको आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई मोहतरमा पसंद आ रही है, किसी फलां कॉलेज में पढ़ती है,
0: बिल्कुल,
1: तो 6-8 महीने तो इस बात में लग जाएंगे कि बात कैसे की जाए। अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे खट से ढूंढा, इधर पार्टी में दिखा, उधर ढूंढा, बातचीत शुरू हो गई, और तो ईज बहुत है।
0: बिल्कुल, अरे भाई,
1: के मैसेजेस है ना,
0: उस समय तो 3 महीने लग जाते थे सिर्फ नाम पता करने में।
1: हाँ, और मोबाइल फोन होता नहीं था सबके पास, है ना?
0: सोच लीजिए।
1: तो भाई मतलब तब पता चलता था कि क्या शिद्दत है आपकी। तो अब दूसरे डेफिनेशंस हो गए शिद्दत के।
0: बिल्कुल सही कहा। कहने का मतलब ये है कि देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें सुबह सुबह आपको सुनने को मिली है। इनका नाम नहीं बताया जाएगा, नाम जरूर, नाम लिख के जरूर
1: भेजिएगा। नाम में क्या रखा है?
0: नहीं, नाम नहीं रखा है। तो सुनते रहिए सदाबहार गीत 100.7 रेनबो पर।

जी देखिए, रूठना रूठाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भाई साहब बड़ा मंगल, तो अगर आप रूठ गए तो हो सकता है कि जो गर्मा गर्म पूरी का स्वाद है उससे आप वंचित रह जाए। लेकिन वंचित रहने की जरूरत नहीं है, हम आपको समय समय पर सारी चीजें बताते रहेंगे कहां क्या बट रहा है। भाई साहब मैं तो देख के आया हूं, पहला ईमेल जो मैं पढ़ रहा हूं अशोक कुमार जी का है, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं और राखी मैम को गुड मॉर्निंग बोला है। एड्रेस है रायपुर उड़ौरी मितौली लखीमपुर खीरी से इन्होंने प्रोग्राम की फरमाइश अरे प्रोग्राम की तारीफ के साथ इन्होंने ईमेल किया है। रोशनी रावत जी ने नाम सजेस्ट कर, जान गई हैं ये कि कौन है। और राम राम जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, 6 बजे जुड़ी हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। वारिस अली जी ने भी बहुत सारी तारीफ के गुलदस्ते हम तक पहुंचाए हैं। ये संजय नगर ऐशबाग लखनऊ के हैं, विजेस सिंह दीपू इटौवा कैसरगंज से हैं, ये चना खा रहे हैं खेतों में बैठ के गन्ने की, और इनको ये दो गाने बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, गोटेदार लहंगा और चना जोर गरम। बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए, चने की फोटो भी इन्होंने भेजी है। छविराम सिंह जी ने भी बहुत शानदार सा ईमेल किया है और बहुत तारीफ की है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका एड्रेस जिला फरुखाबाद यूपी से है। अशोक कुमार जी ने दोबारा मैसेज किया है और गुलफसा सिद्दीकी ने भी ईमेल किया है, साथ में ढेर सारे फ्रूट्स भी इन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। मोनू भैया लिखते हैं, शिवम भैया जी जय महाकाल, जय महाकाल, बड़े मंगल की शुभकामनाएं इन्होंने दी है, पिछले प्रोग्राम की बहुत सारी तारीफ इन्होंने की है। और सुल्तान रजा साहब ने भी

ईमेल किया है अपने शब्दों के साथ। इन्होंने कुछ नाम लिखा है, राजा, जीशान, मम्मी पापा और छोटा सा अमान की तरफ से शुभ प्रभात इन्होंने लिखा है। बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। 7:42, अगला गाना आपके रेडियो पर।

दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कभी आपने अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, ये छोटी छोटी कोई ऐसी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपने लिए खुद के लिए किया हो, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने लिए करते हैं। परिवार के लिए तो सभी करता है, कभी बच्चों के लिए कुछ लेते चले गए, कभी वाइफ के लिए लेते चले गए, कभी माँ बाप के लिए लेते चले गए कुछ, कभी दोस्तों के लिए लेते चले गए। तो क्या आपने कभी अपने लिए कुछ स्पेशल किया है? जरूरी हो जाता है कि जब आप सबके लिए कर रहे हैं तो आपके लिए भी करना बनता है। मतलब आप एक अपनी फेवरेट वाली आइसक्रीम खा सकते हैं, फेवरेट वाली पेन खरीद सकते हैं, फेवरेट वाली बुक खरीद सकते हैं। और बहुत जरूरी होता है ये अपने लिए इसलिए भी कि जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो अपने अंदर वो भरोसा, वो इनाम, वो खुशी जाहिर करना, अपने आप को देना, अपने आप को जगाना भी बहुत जरूरी है। वैसे अगर आपको सुबह सुबह दाल के पराठे विद चाय मिल जाए तो बताइए क्या ही बात रहेगी, है ना? 7:53 मिलते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ में, मैं और जिनका नाम आपने सुना, मतलब कि राखी जी।

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: نمسکار، آکاش وانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں جاگرتی شرما۔ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत

0: के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए

0: पीयूष सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है, ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है, नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: वेरी गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग टीचर।
5: गुड मॉर्निंग बेटा।
6: गुड मॉर्निंग बॉस।
7: गुड मॉर्निंग मम्मा।
8: गुड मॉर्निंग।
9: गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग।
11: गुड मॉर्निंग।
12: गुड मॉर्निंग।
1: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में, हर सुबह 7:15 से, ओनली ऑन रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
13: .7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है। 8:17:23 हो रहे हैं और गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी राखी, और मेरे साथ हैं मुस्कुराते हुए, चहकते हुए, गुनगुनाते हुए
14: शिवम।
13: यस
14: जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई आज आपका नाम जो है बाद में बताया जाएगा, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने ईमेल करके

0: फटाफट फटाफट फटाफट
1: खुद ही बता दे,
0: उपस्थिति दर्ज करा दी है।
1: राइट,
0: तो वैसे ये बताइए, मंगलवार का दिन आप स्टूडियो जब आ रही थी तो थोड़ा सा मौसम और थोड़े से सड़कों के चहल पहल के बारे में बताइए।
1: अरे देखिए, आज मतलब जब घर से निकलता है ना इंसान, तो कल का रेफरेंस लेकर निकलता है कि अरे कल तो बहुत सुबह गर्मी थी और आज बड़ी प्यारी सी हवा चल रही थी, और जो वृक्ष होते हैं अगर उनके नीचे आप रहे तो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है। हाँ, लेकिन वो जब धूप की मार पड़ती है, और वैसे भी अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलते हैं तो थोड़ा मौसम सुहाना होता है, बाद में धीरे धीरे

0: उनके नीचे आप रहें तो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है। हाँ, लेकिन वो जब धूप की मार पड़ती है, और वैसे भी अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलते हैं तो थोड़ा मौसम सुहाना होता है, बाद में धीरे धीरे चैलेंजिंग होता जाता है।
1: ये चैलेंजिंग वर्ड बहुत पसंद आया मुझे, अभी इसके बारे में बताते हैं, ये बात पूरी
0: ठीक है ना। तो फिर जब वहां से निकले और आ रहे हैं तो जगह जगह देखने को मिल रहा है कि तंबू कनात गड़ चुके हैं और भगोने चढ़ चुके हैं, आलू उबाले जा रहे
1: क्या
0: हैं,
1: बात।
0: आटा गूंदा जा रहा है, लोग जो हैं पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरी तत्परता के साथ बड़े मंगल के भंडारे में अपना सहयोग दे रहे हैं, और
1: मेरी तरह लालायित भी हैं कुछ लोग।
0: लालायित हैं जो कल से कुछ खाए नहीं ये सोच करके अब तो बड़े मंगल का भंडारा है, कल तो कुछ बनना ही नहीं है घर में।
1: हाँ सीधे वही।
0: और वाकई बात सच है, और सालों साल से ये परंपरा जो चली आ रही है हमारे शहर लखनऊ में, ये कहा जाता है कि जेठ मास का जितने भी मंगलवार होते हैं इसमें कोई भूखा नहीं सोता लखनऊ में।
1: बिल्कुल सही कहा। वैसे जो चैलेंजिंग वर्ड का जो आपने इस्तेमाल किया उसमें एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आई है, लेकिन उससे पहले सबको सबको सबको गुड मॉर्निंग, उठ जाइए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। लेकिन हाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि
0: उन्हें कहते हैं सूरज सर पे चढ़ाया
1: हाँ बस यही कह रहा था कि 8:19 हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। धूप देख के अंदाजा बिल्कुल भी ना लगाइए,
0: बस घड़ी देख के समझिए कि क्या टाइम हो रहा है,
1: और ये रुके रुके से जिंदगी को फिर से जगाइए।
0: बिल्कुल, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपकी ईमेल्स का भी हमें रहेगा इंतजार, लेकिन पहले एक बेहतरीन सा नगमा आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: हर दिन की शुरुआत अगर एक शुभ विचार के साथ की जाए तो वो दिन बेहतरीन बन सकता है, और सिर्फ मतलब विचार को ला करके छोड़ ना दिया जाए बल्कि उसे अपनाया जाए और अपने जीवन में सार्थकता से उतारा जाए तो हम अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। क्यों शिवम?
2: बिल्कुल सही कहा। और अगर आप उस चीज को समझते हैं, उन शब्दों का मतलब समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज को समझेंगे ही, बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन तक भी ये बातें जरूर,
1: बिल्कुल वो महसूस करेंगे आपके पर्सनालिटी में वो पॉजिटिविटी। तो आज का मॉर्निंग मंत्र कहता है कि दोस्त, किताब, रास्ता और सोच।
2: जी
1: ध्यान दीजिएगा, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच सही हो तो जीवन बेहतरीन बन जाता है।
2: बिल्कुल वाह, मतलब इस बात के लिए तो मैं आपके बिल्कुल तारीफ करूंगा क्योंकि जो आज का मंत्र है वाकई मुझे लगता है मेरे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: अक्सर यही चीजें होती हैं जो हम गलत जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो जीवन में परेशानियों का आगमन होता है।
2: बिल्कुल सही कहा, यानी कि दोस्त, किताब, रास्ता और सोच ये बिल्कुल सही होने चाहिए, और इन तीनों में से कोई भी अगर एक गड़बड़ मिली तो फिर बाकी सभी चीजें भी गड़बड़ हो ही जाती
1: है। बिल्कुल, ट्यूनिंग खराब हो जाती है और 100.7 की जगह आप कुछ और सुनने लगते हैं।
2: बिल्कुल, तो कभी नींद नींद हो जाता है और कभी
1: सख्त सख्त हो जाता है। देखिए अब एक बहुत ही अच्छा सा गाना आ रहा है आपके बीच में, ये देखिए।

0: तो भाई देखते ही देखते शिवम देखिए 8:30 हो गया और हर दिन यूं तो खास होता है, हम लोग हमेशा कहते हैं आज 19 मई 2026
1: जी।
0: और 19 मई की को अगर वैसे कैलकुलेट करें आप वार्षिक दिवस के रूप में तो 139वां दिन है आज, जो कि लीप ईयर में 140वां दिन होता, और वर्ष अभी समाप्त होने में 226 दिन शेष हैं।
1: ठीक तो है, मतलब
0: बहुत टाइम,
1: बहुत टाइम है, लेकिन हाँ ये समझिए कि बहुत टाइम निकल भी गया है।
0: हाँ।
1: मतलब जो अभी अभी आपने जो गिनती बताई ना कि 139वां
0: दिन
1: निकल गया, तो ये मतलब देखने में लगता नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम लोग, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कल की बात है, हम न्यू ईयर विश कर रहे थे, होली मना रहे थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह 2025 भी लगता है बहुत जल्दी से निकला, और 26 में भी देखिए मई महीने में हम लोग आ गए हैं, और क्योंकि ये ज्येष्ठ मास है, जेठ का महीना है, तो हर वर्ष लखनऊ में एक रिवाज है कि बड़े मंगल, मतलब हर मंगलवार के दिन बड़ा मंगल का भंडारा लगाया जाता है, जो कि हनुमान जी को समर्पित होता है, जगह जगह सुंदरकांड का पाठ होता है, और बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ लोग प्रसाद वितरण करते हैं, और जगह जगह जो है ये भंडारे आपको देखने को मिलते हैं। और अब तो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि पहले पूड़ी सब्जी मिलती थी सिर्फ, अब कढ़ी चावल, कहीं छोले भटूरे, कहीं छोले चावल, कहीं जो है चाउमीन वाउमीन भी मिलता है,
1: बिल्कुल कुल्फियां बटने लगती हैं, मतलब जो जिस तरीके से श्रद्धा भाव रखता है जितनी जिसकी।
0: तो इस बार थोड़ा सा कम दिख रहे हैं जो स्टॉल्स हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं तो उस हिसाब से ही लोग चल रहे हैं, है ना, एलपीजी का थोड़ा सा है दिक्कत, तो इस वजह से जैसा कि कहा भी गया है कि कम
1: इस्तेमाल करिए,
0: हाँ ओवर कंज्यूम मत कीजिए, तो वो भी अच्छा है, और साथ ही साथ ये जो श्रद्धा पूर्वक त्योहार मनाया जा रहा है ये भी बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: आपसे बस एक निवेदन है, अगर बड़े मंगल का भंडारा कहीं भी लगा हो और आपने या आपने लगाया हो, तो पूरी कोशिश ये कीजिए कि किसी भी प्रकार की गंदगी वहां ना फैलाइए, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा पूर्वक जब आप जाते हैं प्रसाद लेते हैं, तो उस प्रसाद के बाद जो पत्तल, प्लेट, दोने, ग्लास, चम्मच, कटोरी जो भी बचता है उसको इधर उधर ना फेंकने की बजाय या तो उठा के घर ही ले जाइए, वहां पर उसको डिस्पोज करिए, सड़क पे मत फैलाइए, और या फिर जो लोग भंडारा लगवा रहे हैं वो टब रखें,
1: बिल्कुल,
0: या ड्रम रखें जिसमें कि
1: पूरी व्यवस्था के साथ। कहने का मतलब यह है कि आप नगर निगम को सूचित भी कर सकते हैं, नगर निगम उस चीज की व्यवस्था करेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम बड़े मतलब

0: जोशो खरोश में या उल्लास में हम थोड़ी से नियमों का पालन करना भूल जाते हैं।
1: नहीं, और ये तो सेल्फ कंडीशनिंग होती है कि हम गंदगी फैलाएं कोई और साफ करेगा, ऐसा हम क्यों सोचते हैं।
0: बिल्कुल सही, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। तो इतना जरूरी है सोचना हो जाता है कि जो चीजें हम समाज के लिए दे रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है राकेश जी की भंडारा लगा है 1 किलोमीटर बाद और आपको अभी से मतलब 1 किलोमीटर पहले से ही पत्तल दोने गिलास मतलब की डिस्पोजेबल आइटम
1: चल रही है साथ में,
0: हाँ वो दिखने लग जा रहे हैं, वो दिशा तय कर देता है कि भाई साहब भंडारा आगे लगा हुआ है। हाँ, तो कृपया ऐसा ना करें, लोगों की भीड़ से ज्यादा अच्छा है कि पता चल जाए।
1: बिल्कुल, आप जैसे किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या वहां पर कूड़ा कचरा फेंक के आते हैं, बस यही ख्याल आपको अपने मन में रखना है। और भी आज का दिन जो 19 मई का दिन है वो कई मायनों में विश्व में इम्पोर्टेंट है, वो हम बताएंगे इस गीत के बाद, और फिर उसी से कनेक्ट करेंगे मुद्दा आज का।
0: जी हाँ, तो लीजिए इश्क भुलावा।

0: अगर आपके मन में भी है टेरेस गार्डनिंग यानी छत पर बागवानी से जुड़ी जिज्ञासा, समस्या या कोई सवाल, तो प्रत्येक रविवार गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके सवालों का विशेषज्ञ देंगे जवाब। तो लिख भेजिए हमें अपने प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbowhelpline@gmail.com। आपके प्रश्नों का हमें है इंतजार ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।
1: मुद्दा आज का।
2: आज का मुद्दा क्यों विशेष है ये बताइए शिवम।
3: तो जो आज का जिस मुद्दे की बात जो हम कर रहे हैं वो मुद्दा सीधे सीधे वो जो लाल पीली हरी गुलाबी जो गोलियां होती हैं ना,
2: हाँ,
3: मतलब जो दवाइयां होती है
2: देखने में बहुत सुंदर होती है लेकिन
3: खाने में
2: हाँ,
3: अच्छा मतलब कुछ लोग होते हैं ना दवाई मतलब जो खाते हैं वो बिना कभी कभी बिना पानी के खा जाते हैं लोग।
2: हाँ लेकिन वो बहुत गलत तरीका होता है क्योंकि मेनली पानी इसलिए पिया जाता है कि दवाई अंदर जाकर के डिसॉल्व होगी और बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो डिस्पर्सिबल होती हैं जिन्हें पानी में घोल के पीना होता है, अगर आप उनको वैसे ही पी लें तो वो जाके अंदर चिपक जाती हैं और डिस्पर्स होती रहती हैं और आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन जहां वो चिपकी हैं जाकर ना उसको प्रभावित करती है, अल्सर तक हो जाते हैं लोगों के। एनीवे हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे जिससे आपको दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन जो 19 मई का दिन है वो बहुत खास है क्योंकि आज मनाया जाता है
3: विश्व परिवार चिकित्सक दिवस, यानी कि परिवार चिकित्सकों की भूमिका और योगदान के लिए याद करने का दिन।
2: बिल्कुल, तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं आज उनको हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं कि भाई वो उन्होंने जो भी पढ़ाई लिखाई करी और वो चिकित्सक बने और हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो आज का दिन उनको समर्पित होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं जो आज के दिन मनाई जाती हैं लेकिन हमारा मुद्दा इसलिए हमने इससे जोड़ा है क्योंकि अक्सर ये देखा होगा आपने और हो सकता है किया भी हो, अगर किया हो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं
3: वैसे तो हम
2: कि भाई फलाने को कोई बीमारी हुई और फला फला दवाई खा के वो ठीक हुए तो ढिमकाना भी उसी दवाई से ठीक हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है हमारा मानना है।
3: बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग यही चीजें करते हैं कि मतलब घर में किसी सदस्य को बुखार की दवाई आई है और चार पांच खुराक है और दो खुराक में अगर वो ठीक हो गए तो तीसरी और चौथी खुराक जो है घर में किसी
2: को रख दी जाएगी,
3: बंद करके रख दी जाएगी और अगली बार जब किसी की तबीयत खराब होगी तो बस चट से निकाला और पट से दिया उनको।
2: बिल्कुल, अरे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, हमने ये वाली दवाई खाई थी इससे ठीक हो गया था, लो तुम भी खाओ,
3: हाँ।
2: है ना। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई उनके परिवार में कोई डॉक्टर हैं, ठीक है, आप बैठे हैं लखनऊ में और डॉक्टर साहब बैठे बरेली में और आपने यहां से किया फोन, आपके बहुत मतलब खांसी जुकाम, गले में दर्द, छाती में जकड़न, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आप फोन करते हैं और वहां से पूछ लेते हैं कि भैया ये हो रहा है, तीन दिन से परेशान है, बताइए दवाई बताइए, और भैया ने वहां से ना ब्लड प्रेशर लिया, ना टेम्परेचर लिया, ना वेट देखा, ना बीपी चेक किया और आपको
3: दवाई उन्होंने लिखी और मैसेज कर दी,
2: मैसेज कर
3: और
2: दी,
3: आप भी फोन उठाए और बिना किसी परेशानी के, शिकवा शिकायत के मेडिकल स्टोर पर जाके वो मैसेज दिखा के दवाई खरीद ली।
2: बिल्कुल,
3: कहीं ना कहीं इसमें आपकी लापरवाही भी दिखती है।
2: तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई डॉक्टर की जो सलाह होती है, हम लोग कहते हैं ना विशेषज्ञ की सलाह से ही दवाइयां लें, तो वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और ये बताने के लिए, या अगर आपको कोई वाकया ऐसा याद हो जो आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ या किसी दोस्त के साथ हुआ हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। हमें बताइए कि जो टॉपिक है हमारा आज का,
3: जी आज का टॉपिक है विशेष, ये है कि आपके लिए जो डॉक्टर जो सलाह देते हैं, जो परामर्श देते हैं।

0: वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सलाह, अपने सुझाव, अपने अपने जो अनुभव है वो हम तक पहुंचाइए fmakashwadi@gmail.com।
1: अभी शिवम बोलने लगे ना, अपनी सलाह अपने सुझाव, तो ऐसे ऐसा साउंड किया एकदम से, मतलब जस्ट सेइंग कि अपनी सलाह अपने पास रखो। कहते हैं ना कई लोगों से, है ना, तो मेडिकल फील्ड में अगर कोई दवाई की सलाह दे रहा है आपको कि ये दवा ले लो, ये सिरप ले लो, उसको यही बोलना चाहिए, अपनी सलाह अपने पास रखो, हम विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं।
0: आप हमारे यहाँ भी अपने ईमेल जरूर करिए। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ परामर्श निःशुल्क दी जाती है,
1: लेकिन वो मेडिकल समस्याओं से रिलेटेड नहीं,
0: गाने और अच्छी अच्छी बातों की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक अच्छा सा गाना बजा दिए इसी बात पे,
0: सुनिए
1: देखें। वाह,

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: वेरी डेफिनेटली आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की और 8:49 हो रहे हैं। राखी और शिवम आपके साथ हैं और बहुत सारी ईमेल्स आ गई हैं। शिवम
2: जी, तो पहला ईमेल मैं पढ़ दूं। एडवोकेट घनश्याम सिंह नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से लिखते हैं, शिवम भैया जी और राखी मैडम जी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार।
1: जी आपको भी नमस्कार।
2: आप लोगों के हृदय में ईश्वर बसते हैं। आप लोग श्रोताओं के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उसी के अनुसार गीतों को सुनवाते हैं।
1: क्या बात है भाई।
2: मेरे घर के पास भंडारा आयोजित किया गया है, वहाँ पहले से ही सफाई कर्मी स्थित है, मौजूद है और भंडारे के सीमित समिति में सदस्य के रूप में शामिल है। 4 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो और मुद्दे से जुड़े।
1: बहुत सुंदर बात।
2: देखिए इतनी अच्छी से सलीके से इन्होंने पूरा। और स्वास्थ्य चिकित्सक लोग हर तरह से उचित दवा देते हैं, डॉक्टर की सलाह से जो पीपी बुखार आदि चेक करके सलाह देते हैं उनसे ही मैं अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाता हूँ। घनश्याम सिंह जी ने ईमेल किया है।
1: बहुत सुंदर। घनश्याम जी आपने जो भंडारे की बात लिखी वो भी बहुत अच्छा लगा सुनकर के, और साथ ही साथ ये कि आप परामर्श के बाद ही डॉक्टरी सलाह के बाद ही दवाई लेते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। सुनील कुमार जी का मेल आया है। गुड मॉर्निंग शिवम जी, गुड मॉर्निंग राखी जी। जितना कम से कम हो दवा खाना चाहिए, बिना दवा के अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। दवा बांटना, दवा बेचना, इलाज करना रोजगार है, जितना हो सके इससे बच के रहना चाहिए। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत बीमारी में भगवान की तरह जरूर होता है। अंदाजा मारता करता है या दवा खा लो, इससे नहीं फायदा हुआ तो वो खा लो। अच्छा मतलब अंदाजा मार सकता है किसी को भी। हाँ माया कुमारी विकास नगर लखनऊ से आपने ये कविता रूपी जो अपने भाव व्यक्त किए हैं ये बहुत सुंदर हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: और बहुत बहुत तालियां।
1: अरे रे ताली बज रही क्या अलग से। भैया मोनू सेठ ने लिखा है कि नमस्कार किया है, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं ये, और लिख रहे हैं कैसन है आप, उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और जिस तरह से लू का प्रकोप शुरू हो गया है, कृपया बेवजह घर से ना निकलें, रेनबो से जुड़े रहें, दही छाछ तरबूज खरबूजा इत्यादि चीजें खाते रहें।
2: बिल्कुल, तो इसी तरह मैंने भी बताया है आपको कि भाई गर्मी बढ़ रही है बहुत तगड़ी, तो अगर आपको रखना है सेहत तंदुरुस्त और अच्छी तो खाते रहिए खीरा और ककड़ी।
1: हाँ, और अगर आपको सेहत रखनी है अच्छी तो मत खाइए बासी रबड़ी।
2: हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, एकदम
1: काफिया मिला दिया बिल्कुल।
2: कलाकार आदमी हम लोग।
1: देखिए मुझे भी आदमी बना दिया इन्होंने। सुल्तान रजा का मेल आया है बरेली से और लिखते हैं अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा छोटा सा अमान, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे ये, और लिख रहे हैं सदाबहार गीत में जो है शिवम भैया की पेशकश बहुत अच्छी थी और एक बहुत सुंदर से शेर लिखकर भेजा है। आपकी हंसी हमें बहुत प्यारी लगती है, आपकी हर खुशी हमें हमारी लगती है, कभी दूर न रहना, दूर न करना खुद से हमें, आपकी दोस्ती जान से प्यारी लगती है।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो बहुत शुक्रिया इस सुंदर से ईमेल के लिए, और इसी तरह आप लोग जुड़ सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com के माध्यम से। आप हमें ईमेल्स लिखिए और बताइए कि डॉक्टर की या विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं।
2: जी हाँ, और FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हम आपके ईमेल का कर रहे हैं इंतजार। आप मत करिए बिल्कुल भी इंतजार, क्योंकि गाना है एक
1: बेकरार। अच्छा
2: दोनों दोनों कोई भी चल जाता।

0: मॉर्निंग लखनऊ के फर्स्ट हाफ से इजाजत। एक न्यूज ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे गुड मॉर्निंग लखनऊ का अगला हाफ लेकर के और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और बातें।
1: बिल्कुल, तो चॉकलेट वाली स्माइल बनाए रहिए बड़ी सी, क्योंकि परेशानियां बहुत छोटी हैं आपके स्माइल से, है ना?
0: बिल्कुल, आपके हौसले के आगे क्या है परेशानी, कुछ नहीं।
1: बिल्कुल, तो ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान किए जाने की खबर को दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला और अमृत विचार ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबारों ने लिखा है कि यह आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी स्थिति, जनसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पंचायतों में भागीदारी का अध्ययन करेगा। आयोग का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 6 माह निर्धारित किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, प्रदेश में अब जन्म और मृत्यु के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर यह निशुल्क बनेगा। वहीं 1 साल के भीतर जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने के लिए भी अब कोई पैसा नहीं देने की नई नियमावली को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इन्हें मिलाकर कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल एक कार्यक्रम में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात कहे जाने को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। इस खबर में दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने लिखता है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सड़क और नमाज की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़ाएं, लेकिन सड़क पर नहीं। पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत होने की खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। अमर उजाला और अमृत विचार ने लिखा है कि ईसा नगर के गांव भरेटा के पास एक ट्रक और मैजिक के आमने सामने की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में 6 लोग बहराइच के और एक शिक्षिका सीतापुर की रहने वाली है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी के दौर जारी है। दैनिक जागरण ने सर्व प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 1 सप्ताह तक अत्यधिक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज से 25 मई तक 60 से अधिक जिलों के लिए लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में 4,874 ईवी चार्जर स्टेशन लगाए जाने की खबर को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर छापा है। अखबार ने बताया है कि केंद्र सरकार ने चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को मंजूर किया है। यूपी में 7 से 14 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने का ऐलान किए जाने, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार द्वारा धर्म के आधार पर चलाई जा रही सभी सहायता योजनाओं को बंद किए जाने, मुफ्त आधार अपडेट करने की समय सीमा एक साल तक के लिए और बढ़ाए जाने, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार का गठन होने और नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसद की शिक्षा मामले से जुड़ी समिति द्वारा एनटीए के आज अध्यक्ष उच्च शिक्षा सचिव तलब किए जाने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। और इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: नौ बजकर 5 मिनट 5 सेकंड हो रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत खैर मकदम इस्तकबाल आप सभी अजीजों का जो रेडियो के उस तरफ हैं और सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। अपनी सखी राखी और आपके दोस्त,
4: मेरा नाम वही पुराना शिवम और मैं राखी जी ये कहने वाला था आपसे कि भाई देखिए, मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ जो रेडियो सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं टंकी के पानी से तो एक जारी मैं कर दूंगा कि अभी क्या हो रहा है कि इतनी गर्मी हो जा रही है तो छतों पर रखे जो पानी की टंकी है वो बिल्कुल एकदम गड़गड़ गड़गड़
3: खोल रहा है पानी उसमें।
4: तो अगर आप जाने अनजाने में अचानक से नल ऑन करके और ऐसे छपाक से पानी मारा पे, तो ऐसा हो सकता है कि लगे कि ऐसा तो नहीं किसी ने गर्म पानी फेंक दिया हो मेरे ऊपर।
3: बिल्कुल
4: तो फ्रिज से भैया पानी निकाल के थोड़ा सा पानी मिला के नॉर्मल करके करिए, क्योंकि देखिए ये वाकई में ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें।
3: वैसे इससे एक ना ब्यूटी टिप याद आ गई कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है और मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं कि आप सुबह सुबह जब उठते हैं ना उसके बाद एक बोल में बिल्कुल बर्फ वाला ठंडा पानी लीजिए और अपना पूरा फेस उसमें डुबा दीजिए एक बार, ठीक है
4: सुबह सुबह।
3: हाँ, तो आपका जो चेहरा है वो कुंदन की तरह दमकने लगेगा, यानी अगर आप ये करते रहे रेगुलर बेसिस पे तो आपकी स्किन की टाइटनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट आता है।
4: ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने बताई। तो भाई मैं तो कल सुबह सुबह फ्रिज में अपना मुंह ही घुसेड़ दूंगा।
3: शिवम आपसे यही उम्मीद थी मुझे।
4: मैं करता हूँ
3: फ्रीजर में मुंह रख दिया अपना।
4: बिना सोचिए अगर बिना मुंह के कैसा दिखूंगा।
3: नहीं हमें नहीं सोचना है, आप गाना बजाइए।
4: गाना सुन लेते हैं तब तक हम लोग हंस लेते हैं।

0: और कमाल है हमारे सारे लिसनर्स जो इतनी शिद्दत से इतनी मोहब्बत से जुड़े रहते हैं 100.7 FM रेनबो के साथ, क्योंकि ये है
1: धड़कन लखनऊ की।
0: और इस धड़कन में अभी जो जुड़े हैं इस धड़कन को बढ़ाने के लिए या कहें कि काम डाउन करने के लिए, वो है विकास जी। और उनसे हम जानेंगे कि आज लखनऊ की यातायात व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी और किस जगह से जाना है, किस जगह को अवॉइड करना है। विकास जी हमारे साथ हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी सर, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में यातायात वर्तमान में सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है मैम। और जैसा कि आज बड़ा मंगल है और बड़े मंगल के अवसर पर हमारे जो लखनऊ शहर के 5 प्रमुख मंदिर है हनुमान जी के, वहां पर जो है थोड़ा सा श्रद्धालुओं का अधिक संख्या में आवागमन रहता है, तो ऐसे में थोड़ा प्रेशर रहता है वहाँ पर। जैसे अगर हम अलीगंज की बात करें तो अलीगंज में जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है तथा पुराना हनुमान मंदिर है अलीगंज में, वहाँ पर। और अगर हम महानगर क्षेत्र की बात करें तो हनुमान सेतु मंदिर जो हमारा हनुमान जी का है, वो वहाँ पर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। और साथ ही महानगर की महानगर में हजरतगंज की बात करें तो हनुमंत धाम और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ये जो प्रमुख हनुमान मंदिर है जहाँ पर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ऐसे में हनुमंत धाम के लिए हम लोगों ने लक्ष्मण झूला मैदान के पास में पार्किंग व्यवस्था कर रखी है, और हनुमान सेतु के लिए हनुमान सेतु के पीछे ही पार्किंग व्यवस्था है। और साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वाला जो प्रांगण है, खेल प्रांगण, वो पार्किंग के लिए आरक्षित है, और तालविन तालुकेदार का प्रांगण पार्किंग हेतु आरक्षित है। तो श्रोताओं से यही अनुरोध है कि यदि आप दर्शन पूजन करने हेतु जा रहे हैं तो कृपया अपने वाहनों को आप जो है पार्किंग स्थल पे ही पार्क करें, रोड पर जो है बिल्कुल पार्क ना करें, इससे अन्य आवागमन में बाधा होती है, लोगों को समस्या होती है। जब आपको जो निर्धारित पार्किंग स्थल दिया गया है, कृपया आप उन्हीं पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन को पार्क करें। यदि आपको कहीं ऐसी जगह है जहां जैसे

0: जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, तो भंडारों पे यदि आप जा रहे हैं तो ऐसी जगह चिन्हित कर लें जहां से जो है रोड का आवागमन बाधित ना हो, उस जगह अपने वाहन को पार करें। तथा भंडारा संचालक सभी संचालक महोदय से अनुरोध है कि यदि आप जो भंडारे का संचालन कर रहे हैं तो कृपया आप जो है रोड साइड को थोड़ा सा छोड़ करके संचालन करें, तथा ट्रैफिक मार्शल अपने स्तर से नियुक्त करें दोनों साइड में, जिससे कि ट्रैफिक बाधित ना हो और ट्रैफिक का संचालन
1: सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी मैम। और हम लोग जो है लगातार अपना ट्रैफिक पुलिस, हमारी रेसर मोबाइल्स है और सिविल पुलिस की हमारी कई मोबाइलें हैं, जो हम लगातार रन करके चारों तरफ जो है सुगम यातायात के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करा रहे हैं।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए।
2: जी सर, आपका और आपकी पूरी टीम का सर, कि आप गर्मी और बरसात और जाड़े में अपनी तत्परता हमेशा रखते हैं और हमारा सहयोग करते हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार सर।
1: जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: दोस्तों ये थे TSI विकास सिंह जी, जो दे रहे थे ट्रैफिक अपडेट। तो कहां से कैसे क्या चीजें आपको करनी है ये बहुत ध्यान रखना है, और खास बात ये भी है कि जब मंगलवार हो, ऊपर से ऑफिस का दिन हो, तो सहयोग की भावना जरूरी हो जाती
1: है। और बड़े मंगल में आप दर्शन करने जा रहे हैं या भंडारे का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, प्रसाद लेने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ियां इधर उधर बेतरतीब ना पार्क होंगी तो और सुव्यवस्थित रूप से सभी श्रद्धालु जो है वो आपके साथ साथ दर्शन भी कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हैं, तो इसका जरूर ध्यान दीजिए।
2: बिल्कुल, क्योंकि आप हैं सम्मानित नागरिक, जागरूक नागरिक और स्मार्ट नागरिक, और 100.7 FM सुनने वाले भी तो नागरिक हैं।
1: बिल्कुल, तभी तो स्मार्ट हैं।
2: तो सुनिए एक बेहतरीन सा गाना, और उसके बाद हाँ ईमेल आपके आने लगे हैं, वो मुझे पता चल गया है, आपके ढेर सारे ईमेल हमारे पास आ गए।
1: अब उसके बाद दो कट्स में हम सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है
2: जी। हाँ बिल्कुल, ढेर सारे ईमेल
1: जी।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: गुड मॉर्निंग लखनऊ में। आज का दिन हमने बताया था आपको 19 मई बहुत खास है और विश्व परिवार चिकित्सक दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है विश्व भर में। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अतातुर्क युवा और खेल स्मृति दिवस है, ये तुर्की का राष्ट्रीय अवकाश होता है और तुर्की को के जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी उसकी स्मृति में मनाया जाता है।
6: और आज ही विश्व IBD दिवस यानी के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि आंतों की सूजन संबंधी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक दिवस है।
5: और इसके अलावा मैल्कम एक्स दिवस है, जो कि अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक अधिकारों के नेता मैल्कम एक्स के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और साथ ही साथ आपकी ईमेल्स जो आई हैं हमारे पास उनको हम पढ़ते हैं। राजेश वर्मा लिख रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ लेना खतरनाक हो सकता है, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा।
6: जी हाँ, और वारिस अली खान जी लिखते हैं कि दोस्त शिवम और राखी खान परिवार को बहुत बहुत सलाम। लिखते हैं कि रहीमन एसी राखिए, बिन एसी सबसून, एसी बिन न किसी को गर्मी से मिले सुकून। और लिखते हैं ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। और राखी जी, आपका इंटरवल बहुत लंबा हो जाता है, जल्दी जल्दी आकर हम सबका स्वस्थ और रोचक ज्ञानवर्धक मनोरंजन किया करें। और पता है राखी जी, आपका ना आज दूसरा नाम रखा गया है, लिखते हैं कि आपका दूसरा नाम स्वस्थ मनोरंजन की गारंटी है।
5: अरे वरे, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस जी। और ये जो मेल्स हैं आपकी सभी की, जो इतने प्रेम से आप लोग लिखते हैं, सभी मेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम सर और राखी मैम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, लिख रहे हैं शकील अहमद, जायास रायबरेली से ये मेल आया है। और लिखे, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में रेनबो का GML डाउटलेसली ठंडक दे रहा है। सदाबहार गीत के सॉन्ग्स में मेरी सुबह बना दी। और इन्होंने वही लिखा है कि बहुत दिन बाद आपको सुन रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ लोगों के और नाम लिए हैं जिनको ये बहुत मिस कर रहे हैं, लगता है सब समर वेकेशन पर हैं। घर में कोई भी अगर बीमार होता है तो मैं डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेता, अपना इलाज खुद करने से लेने के देने पड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेने के देने पड़ सकते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और राम मोहन गुप्ता जी,
5: कविता आ गई
6: बिल्कुल वही चिर पर।

0: उचित अंदाज में इन्होंने अपना लिखा है कि अदरक शहद ले लेना रात में सुबह शाम गरारे, खांसी आते ही मिलने लगते घरेलू इलाज सारे।
1: क्या बात है।
0: आगे की लाइन है, जरा जरा सी बात पर डॉक्टर पास क्यों जाना, बुखार है ले लो फला फला गोली, ठंडा गरम
1: बचाना। आए दिन ऐसी राय लोग बिन मांगे ही दे देते, अपनी पर आती तो सीधे डॉक्टर से मिल लेते। माना घरेलू नुस्खे होते आजमाए, सहयोगी भी पर हर मर्ज की दवा हमेशा एक नहीं होती।
0: है भला सोच समझ कर करना चाहिए इलाज, हर बार वही दवा करे फायदा मुश्किल है आज। राम गोहन मोहन गुप्ता अमर और अमर लखीमपुर खीरी से इन्होंने ईमेल
1: जी। रामोहन जी आपने बहुत अच्छी बात कही, और जी जो घरेलू नुस्खे हैं ये डेफिनेटली कारगर होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब दर्द जो है वो हद से गुजर जाए या मर्ज थोड़ा आगे बढ़ जाए तो जरूरी होता है कि चिकित्सक की सलाह ले ली जाए,
0: बहुत जरूरी हो जाता है।
1: राही है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड राखी मैम, शिवम सर, आप दोनों कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत झक्कास, एकदम सिर दर्द खत्म करने वाला लग रहा है, बहुत दिनों से राखी मैम का इंतजार था। माई नेम राही फ्रॉम लखनऊ। टॉपिक जो हमने दिया है, बिना परामर्श के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, कई बार घड़ी में पड़ी घर में पड़ी दवाई खाने लगते हैं लोग, उनको ये नहीं पता है कि नुकसान भी हो सकता है। धन्यवाद आपका, आपकी अपनी राही।
0: और अजय कुमार सिंह ने लिखा है, गुड मॉर्निंग प्रिया आरजे राखी किशोर मैम एंड शिवम सर जी, आप दोनों कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों आरजे की आवाज बहुत अच्छी है। आज राखी मैम बहुत दिनों बाद आए और इनसे ना आपको शिकायत भी है, आपसे गुजारिश भी है कि थोड़ा जल्दी जल्दी आया करिए। मुद्दे पे कहूंगा कि इन्होंने लिखा है कि
1: कुछ नहीं कहेंगे,
0: कुछ नहीं कहेंगे, और लिखने के अनुभव सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा,
1: ठीक है? ओके मैम अनसन, मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। देखिए भैया, मोनू सेठ का मेल अब आया है टॉपिक पर कि एक मुहावरा याद आता है, छलनी में दूध दुहे और कर्म को टटोवे, जिसका मतलब है व्यर्थ का काम करना, मूर्खतापूर्ण प्रयास करना या बिना सोचा समझे गलत तरीके से मेहनत करना। जिस चीज में हमें जानकारी ना हो उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और गूगल से ली गई जानकारी मिल तो सकती है लेकिन वो आपके लिए सटीक है ये जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिवम सर जी और गुड मॉर्निंग राखी मैम जी। ये लिख रहे हैं ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बराई से, लिखते हैं ऐसी वैसी दवा न किसी को देना चाहिए न खाना चाहिए, फिर इसका रिस्पांस उल्टा हो सकता है। राखी जी दवा तो खा लेते हैं लेकिन एक्सपायरी डेट भी नहीं चेक करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बनकर बहुत से लोग दवाई खा लेते हैं और उनको किसी एमबीबीएस की सलाह की जरूरत नहीं, हम ऐसी वैसी दवा नहीं लेते बिना डॉक्टर के सलाह।
1: बहुत अच्छी बात है, और ये जो आप सभी ने लिखा है कि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और न खुद कीजिए ऐसा न किसी और को करने दीजिए। और कई बार क्या होता है ना, घर में स्पेशली जो थोड़ी उम्र दराज महिलाएं होती हैं या महिलाओं को वैसे भी आप देखिए तो वो कहती है अरे ठीक हो जाएगा, अरे ये, मतलब वो अपनी सेहत का उस तरह ध्यान नहीं देती जिस तरह उन्हें देना चाहिए। पता नहीं क्या कंडीशनिंग है, क्योंकि हमें तो ये लगता है शिवम कि अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारा मतलब हमारा शरीर ही तो आफ्टर ऑल हमारे सारे एक्शंस के लिए और रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है कि हम दुनिया में जो भी कर पाते हैं अगर हमारा शरीर साथ देता है तभी तो कर पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो मन मस्तिष्क और जो ये शरीर है इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, और हमेशा इसको चित्त को प्रसन्न रखिए और अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान बहुत बहुत बहुत ज्यादा दीजिए, हर वक्त इसकी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, और जैसे कि आपने कहा घर की महिलाओं के लिए, तो ऐसा अक्सर होता है कि वो कभी कभी अपने ख्याल तो मतलब रखती नहीं है और दवाइयों को लेके वो थोड़ा असहज फील करती है कि अब क्या ही बताएं, जाना पड़ेगा ये वो ऐसा वैसा, तो घर में रखी दवाइयां खा लेती है, तो घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल बिल्कुल शिवम, एकदम सही बात आपने कही कि आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो महिलाएं हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है उनको मजबूत रखें।
0: बिल्कुल, मतलब फोन के बैटरी डाउन होती है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन घर में अगर जो महिला है अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें देख के नहीं पहचान पा रहे हैं कि हाँ इनकी तबीयत खराब है, लो पूछे ले क्या हुआ है,
1: मतलब गुस्सा आ रहा है हमको बता रहे हैं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल गुस्सा आ रही है, लेकिन हम गाना सुनाएंगे फटक से।
1: अब तुम गाना सुना, हाँ ठीक है ये गाना सुनाएंगे तब तक हम इनसे और थोड़ा इनकी भड़ास निकलवा लेते हैं।
0: बिल्कुल ये लीजिए।
1: अरे कितना प्यारा गाना लगाया शिवम आपने,
0: ले लीजिए सबके लिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। बच्चों में विकास

0: थकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
0: इतिहास के पन्नों में आज का दिन.
2: दोस्तों, वैसे तो हर दिन होता है खास, लेकिन कुछ बातें हैं जो रच देती हैं इतिहास.
3: जी हाँ,
2: कविता में बात हो रही है.
3: क्या बात है, मतलब भयंकर वाली, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार. तो मतलब आइए पलटते हैं इतिहास.
2: तो घर वाले तारीफ नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे.
3: अरे मतलब वाकई बहुत शानदार था. तो अब इतिहास के पन्नों में हम ये लिख के लेके आए हैं
2: कि भाई जो भारतीय इतिहास है उसकी कुछ प्रमुख घटनाएं हम आपको बताते हैं. ऐसी चीजें जो 19 मई के दिन घटित हुई. 1961 की अगर बात करें तो गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान पुर्तगाली शासन के विरुद्ध आंदोलन की जो है वो गति बढ़ी और स्वतंत्रता की मांग अधिक मजबूत हुई, जो आज से शुरुआत हुई जिसकी.
3: और 1915 में प्लूटो का पहली बार फोटो खींचा गया था, जो 15 साल पहले आधिकारिक तौर पर लोवेल ऑब्जर्वेटरी क्लाउड टॉम्बो द्वारा खोजा गया था. भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का आज ही के दिन निधन हुआ. वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे.
2: ये 1963 की बात थी. और 1969 की अगर बात करें, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली थी. और 1986 में क्या हुआ था?
3: जी, भारत ने दूर संचार और वैज्ञानिक प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण तकनीकी विस्तार कार्यक्रमों की दिशा में नई पहले शुरू की थी.
2: और अगर विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं पर आते हैं हम लोग, तो 1536 में हुआ था इंग्लैंड के जो राजा हेनरी 8th थे, हेनरी 8th जिन्हें कहेंगे, उनकी दूसरी पत्नी एन बोलिन को व्यभिचार के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था. और इस पर एक बहुत सुंदर फिल्म भी बनी है, वो मैंने देखी थी.
3: अरे वाह. 1990 में आपको बता दे राकेश जी कि कनाडा की राजधानी ओटावा में महिलाओं को पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता के लिए आयोजन हुआ था उनको खेलने के लिए.
2: बताइए कितना टाइम लगा महिलाओं की हॉकी टीम को उतरने के लिए रिंक में.
3: जी हाँ.
2: और 1743 की बात करें तो जीन पियरे क्रिस्टिन ने सेल्सियस तापमान मापने का पैमाना विकसित किया था, जो अब हम लोग डिग्रीज नापते हैं ना सेल्सियस में. उसकी शुरुआत 1743 में हुई थी, जीन पियरे क्रिस्टिन ने की थी.
3: क्या बात है. और आपको बताते चले कि चंद्रमा अपने सबसे तेज बिंदु पर 30% तेज और 14% बड़ा दिखाई देता है. यह 1993 से पृथ्वी के अपने निकटतम बिंदु तक पहुंचता है. 2011 में आज ही के दिन ये चीजें नोट की गई थी.
2: और कल अगर आपने आप में से किसी ने भी चांद देखा हो तो बहुत ही प्यारा सा चांद था, एकदम पतला सा ऐसे, बहुत सुंदर सा, और उसके नीचे एक सितारा था.
3: बिल्कुल.
2: 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर की स्थापना की थी. और 1962 में मर्लिन मुनरो ने जॉन एफ कैनेडी के लिए प्रसिद्ध गाना हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट की प्रस्तुति दी थी.
3: और 1944 में आज के दिन आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था.
2: और एक बहुत ही लंबी कहानी, और कहानी कहें एक बहुत लंबा सिलसिला था, जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए जो स्वतंत्रता हमें दिलाई, जिसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी कई लोग करते हैं.
3: बिल्कुल सही.
2: तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं वो इतनी आसानी से नहीं पहुँचे हैं. बहुत सी जाने गई, बहुत सी शहादत हुई, उसके बाद हमें आज़ादी मिली. तो इस जो आज़ादी हमें मिली है उसको रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर पूर्वक हम एंजॉय करें, ये बहुत जरूरी है.
3: जी, मर्यादा और सम्मान के साथ उस आजादी को हम एक्सेप्ट करें. फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो पे पहुंच रहा है. ईमेल भी आ रहा है, हमें पता है, ईमेल भी पढ़े जाएंगे और बहुत सारी जानकारियां अभी भी हमारे पिटारे में बाकी है.
2: यस.

0: 9:43 मिनट हो रहे हैं और आप में से बहुत से लोग घर से निकल रहे होंगे, बाहर जाने की तैयारी कर रहे होंगे. बहुत से लोगों को कुछ कुछ प्रोग्राम होगा आज का, आपकी दिनचर्या होगी. तो चलिए आपको बता दें कि मौसम के क्या हाल रहेंगे. और दानिश जी हमारे साथ हैं मौसम विभाग से. आइए जानते हैं दानिश जी के थ्रू कि आज और आने वाले दिन में मौसम कैसा रहेगा.
1: जी हाँ,
0: गुड मॉर्निंग दानिश जी.
2: गुड मॉर्निंग
0: जी. बताइए कि लखनऊ में जो ये गर्मी का माहौल है, इसका आज क्या हाल रहेगा. वैसे तो कहा ही जाता है कि जेठ माह में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है.
2: तो अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी

0: चलता उसी तरीके से आज भी रहेगा। तो कुल मिला के कहें तो दोपहर में काफी तपिश होगी और तेज हवाओं का भी चलन रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर ऐसे बोले तो अगर बूढ़े और बच्चे को दिन में थोड़ा बचाव रखने की जरूरत है, क्योंकि धूप काफी तेज है और अनावश्यक दोपहर में बाहर ना निकले, क्योंकि हवाओं के साथ जो गर्म हवाएं आ रही हैं ये थोड़ा सा
1: नुकसान कर सकती है। और मेरे ख्याल से ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है कि कुछ
0: ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, जो सदर्न पार्ट है
1: जी,
0: बाकी जो साउथ का हिस्सा है एमपी और बुंदेलखंड रीजन, ये प्रयागराज के रीजन और आगरा के रीजन में ऑरेंज अलर्ट है और अभी आने वाले एक हफ्ते तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा।
1: जी जी, तो बस आपको अगर कोई संदेश देना है हमारे श्रोताओं को तो हमारे गुड मॉर्निंग लखनऊ के माध्यम से आप दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि जितना तरल पदार्थ पिए वो ज्यादा अच्छा है, और अगर बाहर निकलने हैं तो सर को ढक कर रखे और पानी अपने साथ लेके जाए, क्योंकि मोस्टली क्या है जो हवाएं चल रही है वो तुरंत आपको एक डिहाइड्रेट कर देती
1: है।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मौसम अपडेट देने के लिए और जानकारी देने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू।
2: तो दोस्तों ये थे हमारे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जो दे रहे थे मौसम अपडेट। अब हम आपको और भी चीजें अपडेट करेंगे, लेकिन हम आपको बताते चले ये भी ध्यान दें कि जो आपको अपडेट दी जाती है मौसम संबंधित, उसकी जानकारी आप अगर सुन रहे हैं तो औरों तक पहुंचाइए, और ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है ऐसे मौसम में कि जब तापमान अनियंत्रित हो, कि अगर कल 44 है, कल 42 है, तो आज कितना होगा, तो ऐसे में आप अपने के साथ साथ मतलब जीवों की भी थोड़ी सी देखभाल करिए।
1: बिल्कुल, जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, पक्षी, पेड़ पौधे, हमारा जो प्रकृति है हमारे इर्द गिर्द, उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति हर वक्त हमारा ख्याल रखती है।
2: हाँ।
1: दूसरी चीज जो दानिश जी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पानी, स्वयं साफ पानी एक बोतल में भर के ले चलें अपने साथ जहां भी जाएं आप, और कोशिश ये करें कि डिहाइड्रेट ना हो बॉडी किसी भी तरह, क्योंकि 90% जो हमारा शरीर है वो पानी से बना हुआ होता है, और अगर वो पानी कम हो जाता है तो हमें वीकनेस आती है, लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं कई बार।
2: बिल्कुल, बहुत ऐसी घटनाएं देखने को मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वाहन, पेट्रोल या डीजल वाहन या इलेक्ट्रिक ईवी वाहन डायरेक्ट धूप में खड़ी ना करें, कोशिश करें कि छांव में रखें या ढक के रखें।
1: अब समझ में आ रहा है कि पेड़ लगाने चाहिए।
2: बहुत अच्छी बात, यही बोलने वाले थे।
1: अब जैसे आपके घर के बाहर आपके जो व्हीकल्स होते हैं या कुछ भी, कोई भी आप खड़े होना चाहते हैं, खुद ही कुर्सी के बैठना चाहते हैं, तो अगर पेड़ पौधे, बड़े पेड़ होंगे तभी वो पॉसिबल होता है, अदरवाइज तो सीमेंट का जंगल बन ही रहा है।
2: बिल्कुल, क्योंकि एसी और जो स्प्लिट एसी और जो विंडो एसी है ना, वो छांव नहीं देगा, पेड़ ही छांव देगा। तो कुछ ऐड बजा लेते हैं, उसके बाद आते हैं गानों के साथ।
1: ठीक है।
3: मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
8: भाई अब मैच का क्या होगा,
7: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
9: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
10: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
9: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
10: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
11: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर MK बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। MK बंधानी हींग।

0: देखिए 9:52 52 seconds हो रहे हैं 5252
1: जी हाँ और अब बारी है किस चीज की वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि अब बारी है
2: जी आ गया
3: जन्मदिन मुबारक हो आपको
2: ओह हो थैंक यू वेरी मच

0: I wish you a happy, happy birthday.
1: Happy birthday to you.
2: अच्छा लोगों का बड़ा अलग अलग अंदाज होता है हैप्पी बर्थडे बोलने का. आजकल का जो अंदाज है वो ये है कि 12 बज के बिल्कुल एकदम रात वाला उस पे भैया धड़ा धड़ धड़ा धड़ एकदम
1: हाथ लगाए बैठे रहते हैं. जैसे ही 59 हुआ फिर देखते हैं कितने फिर झट से मिलाते हैं उसमें फिर व्यस्त हो जाता है फोन.
2: भाई साहब उसके बाद

0: चौड़ा करके बोलते भी होने को भाई देखो
1: सबसे
0: मैं
1: पहले मैंने
0: पहले हाँ। भाई, देख लो तो मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि केक का आधा हिस्सा आप ही ले जाएंगे भाई साहब।
1: हाँ सही बात
0: मतलब
1: है नहीं, जायदाद का भी आधा हिस्सा
0: मतलब पार्टी में हम जैसे लोग भी आते हैं लेट लपेट बोलने वाले कि भाई साहब थोड़ा सा हमको भी मिल जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आज आपका जन्मदिन है, आपका अवतरण दिवस है, तो आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन आप आगे जिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी है एनिवर्सरी तो भूलना नहीं है जनाब।
0: नहीं तो खाने में मिलेगा खीरा और ककड़ी।
1: हाँ, नहीं मिलेगा वेजिटेबल कबाब।
0: सही बात है। तो आज आप अपना जन्मदिन किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में वो भी बताते चले।
1: बिल्कुल। तो 1913 में नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म हुआ था जो देश के छठे राष्ट्रपति बने थे। और 1934 में मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर, अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। इसके अलावा कुछ फिल्मी हस्तियां हैं जिनको हम जिनका जन्म आज के दिन हुआ।
0: जी हाँ, और सबसे पहला नाम मैं लूंगा तनुश्री का। इनका जन्म जो है 19 मार्च 1984 को उन्नीस मई को हुआ था और जमशेदपुर में ये पैदा हुई थी। बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वहीं से ये पढ़ाई उढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद मॉडलिंग करने लगी।
1: बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनको यूपी के होने के लिए जाना जाता है, इनके स्ट्रगल के लिए जाना जाता है और बहुत ही ऑथेंटिक एक्टिंग के लिए जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेता जो है उनका भी आज जन्म हुआ। और 19 मई 1974 में बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने अभिनय की का प्रशिक्षण लिया नई दिल्ली से। और इसके बाद इन्होंने 1999 में सरफरोश फिल्म से शुरुआत की थी, डेब्यू फिल्म थी इनकी। बहुत ही छोटा सा किरदार था, शायद आपको याद भी ना हो, अब देखेंगे तो याद आएगा। और इस तरह से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है इनकी फिल्म्स की।
0: जी हाँ, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में, द लंच बॉक्स, मंटो, बदलापुर, रमन राघव और सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान में भी ये नजर आए थे। और कुछ इन्होंने वेब सीरीज भी की थी और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी
1: बिल्कुल नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, ये फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। और काफी अपनी जो ऑथेंटिक बहुत ही सिंपल एक्टिंग है
0: डायलॉग तो याद ही होगा सबको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबका बदला लेगा। तो 9:56 हो गए, हम लोग बदला तो नहीं ले पाएंगे
0: लेकिन ईमेल जरूर पढ़ेंगे,
1: तो ईमेल जल्दी से पढ़ते
0: हैं। जी हाँ, गुलाबसा सिद्दीकी, वैभव प्रकाश, एम के राज और अशोक कुमार ने हमें ईमेल किया है। और एम के राज लिखते हैं, शिवम सर, राकेश सर मैम को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मैं कोई दवा नहीं करता, कोई दवा करे 7 दिन में गोरा करे, कोई कहे 1 खुराक में मोटापा हर लेंगे। अरे भाई, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दवों से नहीं पसीनों से ही नसीब रोशन होता
1: है। नहीं, ऐसा नहीं है, जब बीमार पड़े तो दवा भी खा लेनी चाहिए। गुलफशा सिद्दीकी लिख रही है कि संडीला से ये लिख रही है कि जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो पूरी खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे दवाई खाते हुए बहुत गुस्सा आती है। किसी और की बताई हुई दवाई तो मैं हाथ तक नहीं लगाती, ना खाती हूँ और ना ही खाने देती हूँ किसी और को भी। तो भाई, लेकिन आप खुद तो जब तकलीफ हो तो दवा खा लेनी चाहिए, इलाज तो पूरा करना चाहिए।
0: बिल्कुल। वैभव प्रकाश ने भी ऐसा ही लिखा है कि भैया, हम बस इतना कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हमको दवाई नहीं खानी पड़े तो आज से ही खिलखिलाकर हंसते रहें और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो,
1: आपकी आधी बीमारियां ऐसे ही फुर हो जाएंगी।
0: बिल्कुल। तो अब हो गया है वक्त 9:57 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ से। राखी जी, मैं लूंगा आपसे अनुमति।
1: भाई साहब, हम भी लेंगे अनुमति गुड मॉर्निंग लखनऊ से, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक न्यूज ब्रेक के बाद जो कि है सुपर हिट सॉन्ग्स। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए 107.7 FM रेनबो के साथ, क्योंकि यही है
0: धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य व बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम और सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात और व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखानों के सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वहीं कल एक प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने नदी में गिर रहे 6 प्रमुख नालों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को सभी नालों की शीघ्र टैपिंग, दूषित जल के शोधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जल निगम के अनुसार मंदाकिनी नदी के प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से 10 MLD क्षमता की अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। इस परियोजना में सीवेज का वैज्ञानिक ढंग से शोधन कर उपचारित जल ही नदी में प्रवाहित किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। यह मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: 100.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है, 10:05:29 हो रहे दोस्तों, और अब वक्त है सुपर हिट सॉन्ग्स का। तो अगले घंटे बैक टू बैक ट्रैक्स पे ट्रैक्स लेकर आई है आपकी सखी राखी। उम्मीद ही नहीं, यकीन है हमें कि इन ट्रैक्स को आप बहुत बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो सुनते रहिए 107 FM रेनबो, क्योंकि यही है धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा

0: कल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:56 हो रहे हैं दोस्तों, सुपर हिट सॉन्ग्स को यहीं पर करेगी वाइंड अप आपकी सकी राखी। लेकिन अगले प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में आपके साथ, हम जुड़ेंगे आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स के जरिए। उसके बीच में होगा एक छोटा सा सॉन्ग और एक छोटा सा न्यूज ब्रेक, और उसके बाद फिर हम हाजिर होंगे। सुनते रहिए 100.7 FM रेडियो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, पूर्वान के 11 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इस नई बढ़ोतरी से ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा

किया गया था। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर कम काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए उनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक्स कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाते हुए 20 मई कर दिया है। अभी तक आवेदन की तारीख 17 मई निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों से आज और कल भी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का संकेत दिया गया है। 18 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 के सापेक्ष 4,20,000 से अधिक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ को नष्ट किया। इसमें 5,415 किलो डोडा, 306 किलो गांजा, 32 किलो चरस और स्मैक हेरोइन शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेरेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए। नशे के कारोबार पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ग्यारह बजकर पांच मिनट 35 सेकंड्स, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आप सभी लिसनर्स का 100.7 एफएम रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। और अब प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, जो कि आपका अपना प्रोग्राम भी, इस तरह से है कि आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स के माध्यम से आप जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, स्टूडियो में मौजूद हो जाते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं और आपके द्वारा जो भेजे जाएंगे संदेश वो मीनिंगफुल हों और सभी को किसी न किसी तरह से प्रभावित करें, सबके जीवन के लिए रुचिकर हों, ये सोच समझ करके आप हमें ईमेल भेजेंगे। 100.7 एफएम रेनबो का ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 2238852 पर, यानी 0522 जो हमारा लखनऊ का कोड है वो लगाना है आपको, और 2238852 ये नंबर मिलाना है। तो एक बेहतरीन सा नगमा आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है, इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए और हम फिर वापस आते हैं और आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स शामिल करेंगे।

0: तो आइए देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मोहतरमा?
1: बहुत अच्छे हैं। जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं मैम, और बताइए आप कैसी हैं?
0: बहुत बढ़िया हैं, आपकी आवाज़ सुन के और अच्छे हो गए। अब ये बताइए कि वहाँ कचहरी के पास कैसी गर्मी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और आप बहुत दिनों के बाद आई हैं मैम, जल्दी आया करो।
0: आ तो गए
1: काफी दिनों के बाद आई है, हम आपको बहुत याद कर रहे थे। राखी मैम कहाँ चली गई, जी, हम सब कुछ छोड़ गए।
0: जी नहीं नहीं कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर हैं और आप सबको हम भी याद करते हैं। तो आज शमा परवीन की तरफ से क्या संदेश जाना है सभी लोगों के लिए वो बताइए।
1: आज का हमारा संदेश ये है मैम, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बाहर निकले तो पानी का बॉटल लेके निकले और छाता लेके चले, खीरा और ककड़ी जो खाएं अपना ख्याल रखें।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो शरीर का पानी का बैलेंस है उसको बना के रखें। और जैसा कि अभी देखिए न्यूज़ में भी सुना होगा आपने कि 47 डिग्री तक जाने का अनुमान है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी,
1: हम अपने भाई बहन के नाम लेना चाहते
0: हैं। जी शमा परवीन, आप ले लीजिए अपने भाई बहनों के नाम और फिर हम भी गाना सुनाना चाहते हैं आपको।
1: जी बिल्कुल जी। हम नाम लेना चाहते हैं।
0: हाँ बोलिए।
1: सत्यम कुमार भाई हैं और साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम जी, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद वकील अहमद भाई, मोहम्मद फैज भाई, आप सभी सुनने वाले, मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जावेद अख्तर भाई।
0: थैंक यू सो मच शमा जी कॉल करने के लिए, थैंक यू।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: तो देखिए 11:16 हुए हैं और एक बहुत ही एक्साइटेड बहुत ही हैप्पी कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बताइए अपना।
2: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
1: जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं और कहाँ से?
2: हम सिस्टर्स उमरान सारी, हुसबान सारी, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
1: हाँ, और श्री
2: हमारे पहली बार कॉल लगी है।
1: अच्छा, पहली बार कॉल लगी आपकी। चलिए बहुत मुबारक हो कि आप, मुझे लगता है कई बार आपने ट्राई किया होगा और आज जब लगी है कॉल तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
1: क्या करती हैं आप उजरा?
2: मैम मैं घर पे रहती हूँ, कढ़ाई करती हूँ।
1: अच्छा, बहुत सुंदर काम करती हैं आप, तो कलाकार हैं इसका मतलब हमारी तरह।
2: जी मैम।
1: तो आज क्या संदेश देना चाहेंगी आप श्रीनगर लखीमपुर खीरी से हमारे सभी सुनने वालों को?
2: मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनका कहना माने, क्योंकि जिनके पास नहीं होते हैं माँ बाप, उनसे कोई पूछे कि उन पर क्या बीतती है जिनके माँ बाप नहीं होते।
1: बहुत सही बात है, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। जब हम लोग अक्सर बहुत सारे लोगों की और परिस्थितियों की इम्पोर्टेंस हमें तब समझ में आती है जब हम उस परिस्थिति में या उस व्यक्ति के साथ नहीं होते हैं, जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अपने जो माता पिता हैं उनका बहुत आदर करें। और कुछ और भी कहना है आपने उज़्मा?
2: जी मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ अपने।
1: जी जी जी, लीजिए सर, जल्दी से लीजिए नाम।
2: जी मेरी पुप्पी गोला गोकरणनाथ से, वो भी आपका एफएम सुनती हैं। साजिद अंसारी।
1: हाँ हाँ।
2: और जिया अंसारी, आतिका अंसारी, सलामा अंसारी, फतिहा अंसारी।
1: जी।
2: और मैम मेरी खासकर मेरी अम्मी।
1: अच्छा, तो अपनी अम्मी को भी हमारा सलाम कहिएगा और खूब इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।
2: मैं
1: खुश रहिए। हाँ,
2: भी आपसे बात करना चाहती हूँ।
1: नहीं, हम दो लोगों से एक बार में बात नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, उनसे बोलिए अब अगली बार वो मिलाएंगी। ठीक है
2: जी, थैंक यू।
1: तो ये थी उज़्मा और आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमें मिल रही हैं संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में। ईमेल भेजी है झग्गर राम साहू जी ने, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी।

आराध्या साहू, और आपने जो फरमाइश लिख के भेजी है वो तो हम नहीं पूरी कर पाएंगे, वो फरमाइशी गानों का प्रोग्राम अलग है, लेकिन आपने मैसेज कुछ लिख के भेजा नहीं। वी के गुप्ता लिख रहे हैं, राखी मैम गुड मॉर्निंग, विनोद कुमार गुप्ता गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी से, सुगंध माटी का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमारे साथ हमारे मित्र अजय कुमार मिश्रा जी भी आपको आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। लेकिन वीके गुप्ता जी, ये इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है वो सुगंध माटी की नहीं है, सुगंध माटी की आप हफ्ते में दो बार बुधवार और शनिवार को सुनते हैं, तो कल ज़रूर आप सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेल भेजने के लिए। इसके अलावा हमें किसने मेल भेजा है आइए देखते हैं। वारिस अली खान जी लिख रहे हैं, राखी जी नमस्कार, आपने खूबसूरत गानों को चुना था, आपकी मेहनत कामयाब हुई क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को गाने बहुत पसंद आए। अर्ज है, न तीर न तलवार से मरती है सच्चाई, जितना दबाओ उतनी ही उभरती है सच्चाई। संदेश इनको ये देना है कि रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है, झगड़ा करके भी जो रिश्ता ना टूटे बस वही अपना होता है। ऐशबाग संजय नगर से आपने मेल भेजा वारिस अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर बात आपने लिखी है, काश की पूरी दुनिया इस बात को सीखे पढ़े समझे जाने और साथ ही साथ उसका अनुपालन भी करे। बबीता राव ने बड़ा सजा धजा कर मेल भेजा है, गुड मॉर्निंग माय डियर रिस्पेक्टेड राखी मैम जी, और सितारे रेनबोज हार्ट्स बुकेज आइसक्रीम और बहुत सब कुछ है। एड्रेस

समझे जाने और साथ ही साथ उसका अनुपालन भी करे। बबीता राव ने बड़ा सजा दजा कर मेल भेजा है, गुड मॉर्निंग माय डियर रिस्पेक्टेड राखी मैम जी, और सितारे, रेनबोज, हार्ट्स, बुकेज, आइसक्रीम और बहुत सब कुछ है। एड्रेस है इनका बेलीकला, गोसाईगंज, नवाबों का शहर, लखनऊ से। मैम जी, मैं आपको मॉर्निंग से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगे और मैं तो आपके एक लफ्ज से ही पहचान जाती हूँ कि ये राखी मैम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया बबीता जी। संदेश ये देना चाहती हैं कि मेरा संदेश बहुत ही छोटा सा है, किचन में सभी लोग गैस में खाना बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि गैस चूल्हे को से तो गैस बंद कर देते हैं लेकिन गैस सिलेंडर जो रेगुलेटर होता है उससे बंद नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना किया करें, दोनों जगह से गैस बंद किया करें। और दूसरी बात यह भी है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। गैस सिलेंडर की पाइपलाइन की एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, उसे कृपया ज़रूर जांचा कीजिए, बीच बीच में चेक करते रहिए और उसको एक्सपायरी डेट से एक महीने पहले ही चेंज कर दीजिए, जिससे कभी भी किसी दुर्घटना के शिकार होने से हम बचे रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने घर वालों, पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। हमारे जितने लिसनर्स हैं ना, इतने प्रेम से आप लोग जो है रेनबो के बारे में लिखते हैं और इतने अच्छे अच्छे संदेश भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बबीता। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज। और आपने जो तस्वीर भेजी है इन फूलों की, इसी तरह आप इन फूलों की तरह ही खिलती रहें, मुस्कुराती रहें। और वकील अहमद साहब ने एक मेल भेजा है, अस्सलाम वालेकुम, संदेश यह है कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, खेतों में जाएं, पानी साथ ले जाएं, सुबह जल्दी जाएं, दोपहर में जल्दी आएं। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, तीसरे बड़े मंगल की सभी को शुभकामनाएँ। आपको भी बड़े मंगल की, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो लोग अभी ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने, हम उनको भी बता दें कि fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप मेल भेज सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0522223882 यानी 0522238852 और जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ। तो आइए बेहतरीन सा नगमा सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे आते हैं।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: ग्यारह बजकर 29 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और आइए देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़े हैं संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम में। हेलो,
4: नमस्ते सर।
3: नमस्ते, कैसे हैं आप?
4: सर, अच्छे हैं सर।
3: नाम बताइए अपना।
4: करुण कुमार परियार, ग्राम हसनापुर, लखीमपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।
3: और क्या कर रहे थे आप फोन मिलाने से पहले?
4: फोन मिलाने पहले रेडियो सुन रहे थे सर।
3: अच्छा, ठीक है।

0: आज बताइए संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं श्रवण कुमार जी?
1: यही सर की गर्मी में घाम में ज्यादा ना रहें सर, और अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं, और सर अच्छा शरीर अपना रखें, अच्छे से रहें।
0: आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है?
1: हेलो,
0: आपको सबसे ज्यादा खुशी कौन सी चीज देती है?
1: यही कि अच्छा पानी मिलता रहे बस।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आहार और विचार दोनों को अच्छा रखेंगे तो जीवन जो है वो सुंदर बना रहेगा। आइए देखते हैं, ईमेल्स बहुत सारी आई हैं हमारे पास, किस किस ने हमें ईमेल भेजी हैं, आइए उनकी ईमेल्स पढ़ते हैं। तो ये हैं रामराज, श्री गणेशाय नमो, संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से, राम राज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, पवन कुमार, मिर्जा इमरान बेग, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, धन्यवाद। तो ये आपने जो संदेश हमें भेजा है ना कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो इस हौसला अफजाई के लिए आपका धन्यवाद, और साथ ही जिनके जिनके आपने नाम लिखे हैं उन सबको भी धन्यवाद। धर्मेंद्र विश्वकर्मा लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसलिए हमारे आसपास के बर्ड्स और एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। धर्मेंद्र विश्वकर्मा, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से आपने लिखा, बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। बबीता ने भी इसके पहले ये बात कही थी, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा पर्यावरण है और जो पर्यावरण के जीव जंतु हैं उन सभी का ख्याल रखें अपने साथ साथ, क्योंकि खुद पे और अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पर तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन इस पर भी जाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जो गर्मी की जो हालत हो रही है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि धीरे धीरे हरियाली जो है हमारे आसपास से हटती जा रही है, कम होती जा रही है, बड़े बड़े जो छायादार वृक्ष होते हैं वो जो ठंडक और शीतलता पर्यावरण को प्रदान करते हैं वो कम होते जा रहे हैं, और वहीं जो गाड़ियां हैं, एसीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैकेनिकली चलती हैं वो उनका जब हम उपयोग करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो इसीलिए हर साल लगता है गर्मी और बढ़ गई, क्योंकि इन चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और पेड़ उतने लगाए नहीं जाते। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि एक तो पेड़ पौधों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हरियाली बनी रहे, और दूसरी चीज़ जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनके लिए आप दाना पानी चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए और इस तरह के छोटे पशु पक्षियों के लिए रख सकते हैं, अपने घर के बाहर नांद रख सकते हैं जिसमें पानी या फिर जो खाना आपके यहाँ से बच जाता है लेकिन खाने लायक है उसको डाल सकते हैं, हरे पत्ते और छिलके सब्जियों के, सब चीज़ें उपयोग में लाई जा सकती हैं, कैसे कि हम बाहर रख दें घर के और अच्छी तरह रखें उसको किसी बर्तन वगैरह में या किसी टब में, तो जो बाहर के प्राणी हैं उनका भी भला हो जाता है। भैया मोनोसेट लिख रहे हैं, जलम ही प्राणिनी प्राणिनः प्राणाः जलम शस्यस्य जीवनम् न जलेन विना लोके शस्य बीजम प्रजायते, अर्थात जल प्राणियों का प्राण है, जल ही फसलों का जीवन है, जल के बिना संसार में कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता, तो इसलिए पानी वेस्ट ना करें, और चाहे वो शरीर का पानी हो या फिर जो वातावरण का पानी है उनका एक लेवल मेंटेन रहे, ये ज़रूर देखने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा ईमेल आया है विपिन मौर्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेल लिखने के लिए। हेलो राखी मैम, आज हम आपको शिवम सर के साथ गुड मॉर्निंग प्रोग्राम से सुन रहे हैं, मेरा एक संदेश छोटा सा है कि जब भी अपने बच्चों के साथ बाहर जाएं तो पानी का विशेष ध्यान दें, और ज़रूरी हो तभी बच्चों को ले जाएं, अपनी दुकान पर बैठ कर ये हमें सुन रहे हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा सा संदेश देने के लिए। और आइए एक बेहतरीन सा नगमा सुनते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे और देखेंगे फ़ोन कॉल पर कौन है और मेल्स किस किस के और आए।

0: कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे एमबीए बंधा नहीं
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते जुड़ता है मन आस्था से संस्कारों से देवभूमि उत्तराखंड से केदारनाथ की दिव्यता बद्रीनाथ का आशीर्वाद गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं संस्कार और संकल्प की पहचान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
4: Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean.
5: जी ये गाना आप तक जरूर पहुंचेगा लेकिन अभी नहीं थोड़ी देर के बाद अभी फिलहाल वक्त है कि हम देखें कि हमारे साथ फोन लाइन पर कौन मौजूद है हेलो हेलो हेलो
6: हेलो
5: हाँ जी कौन बोल रही है
6: चांदनी बोल रही
5: जी चांदनी लो भाई चांदनी बहुत सुपर एक्साइटेड थी कि उनका फोन लग गया है लेकिन फोन कॉल उनका डिस्कनेक्ट हो गया देखेंगे थोड़ी देर में अगर दोबारा लगता है फिलहाल कुछ ईमेल्स शामिल कर लेते हैं महेंद्र देपन लिख रहे हैं आदरणीय राखी मैम जी नमस्कार मैं आपका नियमित श्रोता महेंद्र देपन गांव रूण जिला नागौर राजस्थान से आज इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये कहना चाहते हैं कि आंखें खोल देने वाला अनुभव साझा ये करना चाह रहे हैं लिख रहे हैं कल जब मैं काम से लौटते हुए मुंबई अहमदाबाद हाईवे से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ एक बेहद भयानक सड़क हादसा देखा जो देखने लायक भी नहीं था उस खौफनाक मंजर को देखकर सड़क पर चलती सभी गाड़ियों की रफ्तार अचानक धीमी हो गई लेकिन अफसोस इस बात का था कि वही गाड़ियाँ मात्र 5 मिनट आगे बढ़ते ही फिर से उसी तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगीं श्रोताओं से इनका एक निवेदन है कि सुरक्षा नियमों को किसी हादसे को देखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं अपनाना है बल्कि जब भी हम गाड़ी की स्टीयरिंग या हैंडल संभालें नियम हमारे साथ होने चाहिए अगर आप 4-व्हीलर में हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं अगर आप 2-व्हीलर में हैं तो हेलमेट पहनना कभी ना भूलें और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांदनी से जब मेरी ऑफ द माइक ऑफ एयर बात हो रही थी तो वो भी यही बोल रही थी कि सेम यही उनका भी संदेश था जो महेंद्र देपन जी का है कि ट्रैफिक नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए और ये जो नियम बनाए गए हैं उनको बनाने की तो एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा अगर हम स्वयं सुनिश्चित ना करें तो हमसे ज़्यादा भाई मतलब ये तो एक बुद्धिहीन व्यक्ति जैसा काम होगा ना कि हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें तो फिर भी चलिए नियम कानून बनाने पड़े और अब बन गए हैं तो सिर्फ डर की वजह से उसको फॉलो मत करिए आपकी सुरक्षा आपकी जान माल की सुरक्षा और साथ में जो लोग सड़क पर हैं आपके अलावा उनके भी सुरक्षा के लिए आपका नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एमके राज लखीमपुर खीरी से मुनेश कुमार राज भानपुर हरोवर ज़िला लखीमपुर खीरी से नमस्कार मुनेश जी आपको भी आप लिख रहे हैं कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है और ये रोज़ एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की को लाइव सुनते हैं आज का संदेश कुछ लाइनों के साथ इन्होंने दिया है भड़काने वाले रोज़ नया शोर मचाते हैं अपनी नाकामी छुपाने को दूसरों को लड़ाते हैं कान भरने में माहिर हैं ये चालाक ज़माने में खुद तो डूबे हैं तुम्हें भी डूबे बहाने में तुम्हें भी ले डूबे बहाने में जो बात बात पर आग लगाते हैं वो खुद अंधेरे में रह जाते हैं उनकी फितरत है नफरत फैलाना तुम्हारी ताकत है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना बहुत सुंदर बात आपने लिखी है और बहुत ही सटीक संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह का की सोच रखते हैं चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव तो जो नेगेटिव सोच रखते हैं वो थोड़ा अपने नेगेटिव सोच पर अंकुश लगाएं और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उसको बरकरार रखें क्योंकि पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत

है जो आपको हर मुसीबत हर मुश्किल से निकाल सकती है। गुलमशा सिद्दीकी लिख रही हैं, हेलो गुड मॉर्निंग राखी मैम, संडीला से ये प्रोग्राम सुन रही हैं, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इनका संदेश यह है कि जो लोग कपड़े धोकर पूरा दिन धूप में कपड़े फैले रखते हैं, फिर कहते हैं ये कपड़ा कच्चा निकल गया, इसका रंग उड़ गया, तो प्लीज़ पूरा दिन कपड़े धूप में ना मिलाएं, धूप बहुत तेज़ है। ये बहुत अच्छी बात कही गुलफशा आपने कि देखा जाए तो भाई कपड़े थोड़ा उल्टा करके फैलाने चाहिए और सूखते ही उतार लें, क्योंकि धूप में नेचुरल ब्लीचिंग क्वालिटी होती है, वो रंगों को उड़ा देती है। 11:45 हो रहे दोस्तों, और आपने ट्यून किया है 107.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और जो गाना हमने शुरू किया था अब उसको हम बजा देते हैं आपके लिए।

0: the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी और देखिए, देखते ही देखते 11:52 हो गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? फैज
5: जी।
4: हाँ, कैसे हैं आप?
5: जी दीदी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और हमारे गांव का मौसम भलाई खुशनुमा है।
4: अरे खुशनुमा, कौन से गांव में आप?
5: जी हमारा गांव है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, फुलवारी बाजार, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
4: अच्छा, तो वहाँ पर क्या मतलब बादल वादल घिरा है क्या?
5: जी नहीं, बादल है लेकिन मौसम बड़ा खुशनुमा, हवाएं बड़े ठंडी ठंडी चल रही हैं।
4: ठंडी हवाएं
5: निकली हुई है
4: कौन?
5: जी जी,
4: आप मतलब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आप ठंडी हवाएं चल रही है वहाँ पर, तो ये कैसे हो रहा है मुझे बताएं जरा, कैसे पॉसिबल है? आप मुझे लगता है किसी बगीचे वगैरह में होंगे ना, वहां पर ठंडी ठंडी हवा लग रही होगी। फैज जी, हाँ मैं बोल रही हूँ कि आप किसी बगीचे में हैं क्या, कहीं ऐसी जगह जहाँ खूब पेड़ पौधे हैं?
5: जी जी जी।
4: हाँ तभी तो।
5: नीम के पेड़ के नीचे हमारी दुकान है और नीम के जस्ट बगल में हमारा रेडियो रखा हुआ है, बजता है डेली। वहाँ ठंडे ठंडा रहता है,
4: बहुत बढ़िया
5: हवाएं चलती है तो ठंडी ठंडी लगती।
4: हाँ देखिए, अच्छे बड़े वृक्षों का यही तो फायदा होता है, यही तो साया है घने वृक्षों का। फैज आज आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
5: जी दीदी, आज का मेरा संदेश ये रहेगा, जैसे जैसे सभी लोग मान के चलो रोड पे चलते होंगे, मोटरसाइकिल से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, तो जैसे चले तो जैसे एम्बुलेंस वगैरह अगर पीछे से आती है तो उनको मतलब अपनी गाड़ी साइड कर ले, उनको निकलने दे। जी मैं यही मेरा संदेश है सभी लोगों से, ऐसा करें।
4: जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया फैज, और आपकी बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, और दो तीन चीजें और इसमें ऐड कर दें कि एक तो बाईं तरफ से ओवरटेक ना करें, और वो जो सुई बराबर जगह से भी आपको लगता है कि आपकी टू व्हीलर निकल जाएगी उसका, उसको ट्रायल ना करें हमेशा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मुझे जो लगती है ना, कि जो फाटक वाले रेलवे लाइन्स होती है, रेलवे क्रॉसिंग्स होती है, जहाँ पे मैनुअल फाटक होते हैं, उसमें देखा गया है कि फाटक नीचे गिर रहा होता है तब भी गाड़ी से लेकर और फोर व्हीलर, टू व्हीलर, साइकिल, रिक्शा सब घुस रहे होते हैं, है ना? और उसके बाद जब वो बंद हो जाता है तब भी टेढ़ा करके साइकिल को, स्कूटर को निकाल लेते हैं। और ये अपनी भाई इतने जाबाज ये लोग हैं जो हमारे जो ये काम करते हैं, तो उन दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया कि आप बहुत डेयर डेविल हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। नहीं
5: जी जी। हेलो दीदी
4: जी,
5: कुछ लोगों को नाम लेना चाहता हूँ, अगर
4: जल्दी से नाम ले लीजिए, अब वक्त है बहुत कम।
5: जी जी, आसिफ भाई, रिंकी पिंकी, समा परवीन है, गुलाब साहब भी है, साहिब अंसारी है, साहिब अंसारी, बाबू अंसारी भाई, सुरभि सिंह है, बस
4: ठीक है। थैंक यू सो मच फैज, थैंक यू। और देखिए चलते चलते कुछ मेल्स भी पढ़ लें। रोशनी रावत लिख रही हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इन्हें बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी।

0: रोशनी रावत बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हैं, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। संदेश इनका यह है कि आपको अगर हॉस्पिटल जाना है तो छोटे बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। बहुत ही अच्छा संदेश है, बहुत ही एजुकेटेड व्यू पॉइंट है ये। हम कहेंगे कि छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में एक्सपोजर क्यों देना है उनको। आप वहाँ पर तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त लोग आते हैं, तो तमाम तरह की बीमारियों के कीटाणु और बैक्टीरियाज वायरसेस होते हैं, तो छोटे बच्चों को अवॉइड कीजिए। ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाना बिल्कुल नहीं चूज़ करना चाहिए ये चीज़। और आलोक साहू लिख रहे हैं, रायबरेली गदागंज धमधमा से बोल रहे हैं, और संदेश है कि अपने शब्दों से किसी के दिल को चोट ना पहुंचाएं। अशोक साहू, अनीता देवी मुस्कान, अमन हिमांशु और आप सभी रेडियो एफएम को दिल से शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने ये छोटा सा मैसेज लिखा है आलोक साहू जी, और ये बहुत सुंदर बात है कि भाई आप जो बोलते हैं वो तो आप बोल के हट जाते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो किस पर किस तरह का पड़ रहा है, ये आपको उस समय नहीं पता चलता। तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें, लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, आपकी आवाज़ भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया ये इंसान कभी नहीं भूलता है। स्पेशली अगर आपने किसी को, आपकी वजह से किसी को बुरा लगा या उनको किसी प्रकार की बेइज्जती महसूस हुई या छोटापन महसूस हुआ, तो वो कभी नहीं भूलते हैं। तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, यही कोशिश करनी चाहिए। 11:56:44 हो गए हैं, तो अब तैयार हैं शिखा अगले कार्यक्रम के साथ?
1: जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ अगले कार्यक्रम के साथ। और राखी जी भी चाहती हैं कि भाई शिखा आए और अपनी हॉट सीट को संभालें।
0: तो शिखा बिल्कुल रेडी हैं, आपको अगले 4 घंटे तक एंटरटेन करेंगी और आपको भी इंक्लूड करेंगी प्रोग्राम में। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। आपसे फिर होगी बहुत जल्द मुलाकात। अपनी सखी राखी को दीजिए इजाज़त। आपको एक बहुत ही प्यारे से नगमे के साथ मैं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है? ये लीजिए, ये आया आपके रेडियो सेट पर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद यह छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। औरैया जिले में अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर बीती रात करीब 1:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई और उसमें बैठे कई लोग नीचे दब गए। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इटावा सफारी पार्क में खुशखबरी आई है। 9 साल के इंतजार के बाद रोहतक जू से 7 साल की रोशनी, क्षमा कीजिएगा, शेरनी सुधा इटावा पहुंच गई है। सोमवार को सफारी की टीम उसे सुरक्षित लेकर आई। सभी शेरनी को लायन हाउस 1 में 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। सीसीटीवी और डॉक्टरों की टीम उसकी सेहत पर नजर रख रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जी हाँ शत्रुपा का, जिसमें हर दिन की तरह कुछ ना कुछ खास लाई हूं मैं आपके लिए, और वो भी आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे आपके साथ, तो क्यों ना एक बेहतरीन सा ट्रैक भेज दें आप तक। तो चलिए ट्रैक भेजते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बातें करते हैं कि आज दिन है ट्यूसडे और क्या बातें करते हैं हम ट्यूसडे के दिन। तब तक आप गेस करिए और एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक एंजॉय करिए।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, 12:13 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। और अभी आपने एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक सुना था, लो चाय उल्फत हो गया। जी हाँ, इसी गाने के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज हम क्या बात करने वाले हैं, बस आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। जी हाँ, वही फैशन जो हम महिलाओं की सुंदरता में लगा देता है 4 चांद। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टाइलिश सलवार की जो आपके लुक को एनहांस करेंगे, साथ ही आपको देंगे एक बेहतरीन और गॉर्जियस लुक। तो वो कौन कौन से सलवार हैं जिसको आप पहन के लगने वाली हैं स्टनिंग, तो उसके लिए कुछ देर वेट करना होगा और उससे पहले एंजॉय करना होगा ये बेहतरीन सा गाना जो मैंने क्यों किया है आपके लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, फिर आते हैं लौट कर और बात करते हैं कि किन किन स्टाइल्स की सलवार को आप कैरी कर सकते हैं इन समर्स में।

बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

जी 12:21 का वक्त और बातें शुरू होने वाली हैं कार्यक्रम शत्रुपा में कि किन किन शलवार को आप कैरी कर सकते हैं इन समर्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टाइलिश सलवार के साथ आप दिखेंगी एलिगेंट। तो आपको बता दूं कि अगर आपके वार्डरोब में प्लाजो लेगिंग्स की भरमार है तो उन्हें फिलहाल पीछे रखना ही बेहतर है, क्योंकि फैशन बदलता है। जो आज ट्रेंड में है वो कल आउट ऑफ फैशन हो सकता है और लौट भी सकता है। जी हाँ भाई, जो फैशन होता है वो आउट ऑफ फैशन भी होता है और उसको लौटते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो प्लांट प्लाजो लेगिंग्स ने कुछ समय के लिए सलवार की जगह जरूर ले ली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पैंट लेगिंग और सलवार ने जरूर ले ली है लेगिंग्स में जगह उनकी, लेकिन अब सलवार जो कि हमारी पहली पसंद हुआ करते थे आ चुके हैं नए और मॉडर्न अंदाज में। तो बातें तो अभी और भी, पर उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है आप तक। तो चलिए इंजॉय करते हैं प्यारा सा गाना आप तक।

जी दोस्तों 12:26 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो गया है शत्रुपा जी। हाँ, जो जिसमें हम बात करते हैं आपके फैशन को लेकर। जी आज का जो दिन होता है, आज का जो सेगमेंट होता है शत्रुपा में, वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है आपके लिए, लेकिन जो आज का सेगमेंट है मुझे लगता है उसमें सभी जितनी भी हमारी महिलाएं सुन रही है ना प्रोग्राम, बहुत ज्यादा रुचि होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जी हाँ, और वो है फैशन। और फैशन में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है शलवार, कि किस तरीके की शलवार जो हम लोगों ने पहनना छोड़ दिया है, लेगिंग्स और प्लाजो की जो भरमार हमारे पास हो गई है, पैंट्स की भरमार हमारे पास हो गई है, और हमने कहीं एक किनारे शलवार को रख दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सलवार सूट एक ऐसा परिधान है जो हर उम्र, हर बॉडी टाइप और हर रंग रूप पर फबती है। वहीं अगर बात हो सलवार की, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका आरामदायक होना। अच्छा, जब भी हम पहनते हैं, जैसे लेगिंग्स पहनी, प्लाजो पहनी या पैंट्स हम कैरी करते हैं, तो एक मन में कभी चीज हमारे चलती जरूर है कि अच्छा जब सलवार पहनते तो उसमें कितना कंफर्ट था। लेकिन जो ट्रेंड में है तो हम सोचते हैं कि नहीं, लेगिंग्स ही पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, प्लाजो पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, और हमने सलवार को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और आपको पता है ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग, हर जगह यह आसानी से कैरी की जा सकती है। जो हम लोग पहनते थे, कभी एक टाइम था जो सबसे ज्यादा सलवार, सूट सलवार पहने जाते थे। आज हम महिलाएं ऐसे कपड़े चुन रही हैं जो स्टाइलिश होने के साथ साथ आरामदायक भी हो, और सलवार इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। तो जरा आज गौर फरमाइएगा कि किन किन स्टाइलिश सलवार को हम आज आपको बताएंगे, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको आप परचेज कर सकते हैं और स्टिच भी करवा सकते हैं, और उसको पहनकर आप लग सकते हैं गॉर्जियस। तो हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आने के लिए बेकरार है आप तक। तो चलिए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सलवार आप पहन सकते हैं और उसको पहनकर आप लग सकती हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी, खूबसूरत, और लोग कहेंगे

0: बंधा नहीं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जय श्री राम।
1: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।

जी हाँ भाई, जब इतनी इतने अच्छे अच्छे आप जब शलवार स्टाइलिश सलवार पहन के निकलेंगे तो लोग क्यों नहीं दीवाने होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किन किन नए स्टाइल्स के साथ आप अपने को दे सकती हैं स्टनिंग लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्शी सलवार का। जी हाँ, फर्शी सलवार का फ्लोई लुक जो फेस्टिव मौकों के लिए बहुत बेहतर है। जब फेस्टिवल टाइम होता है तो ये जो फर्शी सलवार होती है ना, एक अलग आपको लुक देता है, बिल्कुल हटके आप लगते हैं। और बात करें धोती स्टाइल सलवार की तो ये आपको देगा फ्यूजन लुक। और पैनल और ट्यूलिप डिजाइन की तो बात ही क्या। जी हाँ, पैनल और ट्यूलिप डिजाइन इतना देखने में एलिगेंट लगता है, इतना सुंदर लगता है कि शब्दों में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। और ये अपने यूनिक डिजाइन के कारण पसंद की जा रही है, इतना यूनिक है कि इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और सिगरेट पैंट स्टाइल सलवार ऑफिस वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि ये स्मार्ट और क्लीन लुक देता है। तो हमने अभी आपको बताया फर्शी सलवार के बारे में जो है फेस्टिव मौकों के लिए बिल्कुल बेहतर। और इसके अलावा धोती स्टाइल सलवार जो आपको देगा फ्यूजन लुक। और उसके बाद हमने बात करी थी पैनल और ट्यूलिप डिजाइन के सलवार की। और फिर हमने बात करी सिगरेट पैंट स्टाइल सलवार की। तो ये जो मैंने नाम बताए ना आपको, अगर आपने अभी इससे अवगत नहीं थी, आपको नहीं पता था, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके की सलवार आप जरूर से ट्राई करिए। और भी चीजें हैं जो हमें आपको बतानी है और भी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन जब आप ये जो चार तरीके की हमने चीजें बताई आपको, फर्शी सलवार और धोती स्टाइल सलवार के बारे में, पैनल और ट्यूलिप डिजाइन के बारे में और सिगरेट पैंट के बारे में, तो जब आप इसको पहनेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे जरा उसको सुन लेते हैं। वो कहेंगे चल तेरे

जी 12:46 का वक्त और आपकी दोस्त शिखा है आज आपके साथ कार्यक्रम शत्रुपा में। और आज का जो टॉपिक है वो है फैशन डिजाइनिंग, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि किन किन स्टाइलिश सलवार को कैरी करके आप लग सकती हैं एलिगेंट। तो अभी हमने बात करी थी चार ऐसे सलवार के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया, डिस्क्रिप्टिव वे में बताया कि कैसे आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाजो और शरारा वो भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। और उभारते हैं आपकी पर्सनालिटी को। और अगर आपने अभी एक एंकल लेंथ सलवार नहीं ट्राई करा, जी हाँ एंकल लेंथ सलवार भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो अभी तक अगर आपने एंकल लेंथ सलवार नहीं ट्राई करा है तो अब उसकी बारी है। जो सिंपल कुर्ती के साथ देता है लाजवाब लुक। तो बहुत ढेर सारी हमने सलवार के बारे में आज बात करी, और मुझे लगता है जो लोग नहीं भी जानते होंगे कि अरे इतने ज़्यादा टाइप हैं सलवार में, हम इसको कैरी अरे क्यों नहीं कैरी किया अभी तक, तो अभी भी मौका है। आप इन जितने भी सलवार मैंने आपको बताए, बहुत डिज़ाइनर लुक होता है, बहुत एलिगेंट, बहुत स्टनिंग दिखते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और जब शलवार की बात आती है ना दोस्तों, तो एक अलग से मतलब आप इमेजिन करिए, इतना कंफर्टेबल होता है ये, और ये जो गर्मी है ओहो, वो चिलचिलाती गर्मी, और उस पर लैगिंग और जीन्स पहनना तो एक कहीं हद तक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो जो पहले आराम हमें मिलता था और वही वो कहीं हमने छुपा दिया था बिल्कुल फैशनेबल दिखने के चक्कर में, लैगिंग्स को पहनकर, पैंट्स को पहनकर, जीन्स को पहनकर, तो वो तो आप कैरी करिए, अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये शलवार है ना, ये अपनी जो महत्वता है वो एज इट इज रखे हुए हैं, और वो कहीं भूल गया, वो आप लोग भूल गए थे, तो उसको अब आप ट्रेंड में लाइए। और ये जो मैंने जितने भी टाइप्स बताए हैं इसको एक बार ट्राई ज़रूर से करिए। तो देखिए आज हुई ना कितनी काम की बातें इस सेगमेंट पे, और अभी और भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे फैशन टिप्स हैं जो आपको देने हैं भाई। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि बने रहना है अपनी दोस्त शिखा के साथ और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

जी 12:54 का वक्त, और देखिए ना आपसे बातें करते करते कितना जल्दी समय यूं चुटकियों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये समय कह रहा है कि अभी वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा को, लेकिन उससे पहले जो एक प्रॉमिस किया था आपसे कि कुछ फैशन टिप्स देना है आपको, तो चलिए वो फैशन टिप्स दे देते हैं आपको। तो भाई आपको कुछ चीजों का जरूर से ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रोजमर्रा के लिए कॉटन, रेयन और जॉर्जेट फैब्रिक बेहतर है। तो आपको अगर रोज के लिए कपड़े खरीदने हैं, रोज के लिए कुछ भी चीजें लेनी है, तो आपको वो खरीदना होगा कॉटन, रेयन और जॉर्जेट फैब्रिक में। और खास मौकों के लिए आप सिल्क और चंदेरी बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। और रंगों की बात करें तो आप रंगों में पेस्टल शेड, सॉफ्ट प्रिंट्स और न्यूट्रल टोन को अपनी पसंद में शामिल कर सकती हैं। जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आप एक परफेक्ट आउटफिट चाहती हैं तो परंपरा और ट्रेंड का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। तो शलवार के ये जो जितने भी स्टाइल्स आपको आज हमने बताए, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट

होंगे, और इस बार इस समर्स आपको जरूर से ट्राई करना है. और देखिएगा तो भाई आप एक बार ये जो सेगमेंट है ना आज का, उसको याद जरूर करेंगे कि वाह क्या सेगमेंट था उस दिन का और क्या हमें टिप्स मिले. तो इसी के साथ अब हम प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. और लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि शिखा अभी आपके साथ रहेगी प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में. तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से मुलाकात और भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है।

कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल इंडस्ट्री के अनुसार प्रदेश भर में सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के संचालित हो रही है। राज्य में वर्तमान में 13,168 पेट्रोल पंप और 28 सप्लाई डिपो सक्रिय हैं। डिपो और रिटेल आउटलेट्स पर इतना स्टॉक मौजूद है कि औसतन 14 दिनों तक की मांग पूरी की जा सकती है। साथ ही रिफाइनरियों से लगातार नए स्टॉक की आपूर्ति भी जारी है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 8 लाख एलपीजी रिफिल उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही हैं। तेल कंपनियों ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की उपलब्धता संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर आज लखनऊ के हनुमान मंदिर बजरंगबली के जयकारों से गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए पंखे, कूलर व टेंट के खासे इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में उपभोक्ताओं की ओर से सैकड़ों संख्या में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इन भंडारों पर शाम तक अलग अलग मेन्यू के हिसाब से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी दोस्तों, 1:05 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का, जिसे लेकर आज मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ। और इस प्रोग्राम में हर दिन बात करते हैं हम किसी ना किसी के स्पेशल टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि उस टॉपिक पर आपकी क्या राय है।

तो हम आपको आज का वो विषय बताएं उससे पहले एक बेहतरीन सा ट्रैक बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए. तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना, फिर आते हैं लौट कर और बात करते हैं कि आज का क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पर आपको अपने व्यूज भेजने हैं.

0: अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाजों की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर ज़खीरा है। मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का वाफिर ज़खीरा है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: दरअसल हुकूमत ने YouTube के उन वीडियो की तरदीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का ज़खीरा बचा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का ज़खीरा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है। अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाज़े किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज़्यादा ख़रीदारी की ज़रूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी ज़राए से ही हासिल करें। जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है जहाँ शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर अजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई अजला में दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए सेहत मशावरात जारी किया है।
3: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दरअसल महकमा मौसमियात ने आज से 4 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि कम से कम दर्ज हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आगरा, औरैया, बलिया, बांदा, भदोई, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी के कई मकाम पर हीटवेव से लेकर शदीद हीटवेव चलने के इम्कान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।

0: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग। जब
1: एक बजकर 17 मिनट का वक्त और एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। दोस्तों कहते हैं, चाहे जितनी सख्त हो गर्मी की मार, चाहे जितनी सख्त हो गर्मी की मार, एक ठंडी आंधी दे जाती है करार। चाहे जितनी सख्त हो गर्मी की मार, एक ठंडी आंधी दे जाती है करार। बस हौसला रखो दिल में अपने, बस हौसला रखो अपने दिल में, सावन आएगा लेकर ठंडी बयार। तो इन बेहतरीन लाइंस ने कितना कुछ कह दिया। जी, इन बेहतरीन लाइंस में कितना लाइंस में कितनी चीजें संजोए हुए थी अपनी ये लाइंस, और इन लाइंस से काफी चीजें हमें सीखने को भी मिली होंगी। तो दोस्तों, इन लाइंस को सुनकर शायद आप थोड़ा बहुत भांप चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई हम हैं ना यहां पर आपको बताने के लिए। तो बताते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है कि दोस्तों, हर सीजन अपने में कुछ ना कुछ संजो कर लाता है, जिसे हम उस सीजन की स्पेशलिटी मान लेते हैं। तो आज आपको बताना है ये कि ये जो गर्मी का सीजन आया है, उसमें आपको क्या चीज पसंद है। जी हाँ, उसकी कौन सी खासियत है जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं एक बार टॉपिक फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि हर सीजन अपने में कुछ ना कुछ संजो कर लेकर आता है, और हर जो सीजन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी स्पेशलिटी होती है। तो गर्मी के जो सीजन में आपको कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है, जो आपको रहता है गर्मी का इंतजार। तो ये टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक पर आपको अपने व्यूज हमें भेजने हैं, और व्यूज आपको भेजने हैं हमारी ईमेल आईडी पर। और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो आप हमें अपने मेल्स भेजिए इस टॉपिक पर, और हम भेजते हैं आप तक एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। तो आप भी इंजॉय करिए और मैं भी इंजॉय करती हूँ यहाँ पर। तो चलिए दोनों इंजॉय करते हैं, और साथ ही भाई मेल्स जरूर से लिख भेजिए कि क्या आपको पसंद है इस गर्मी के मौसम में।

इन्होंने लिखा है, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट, बजे बजे से लेकर 12 बजे रात तक, अच्छा 12 6 बजे से जब तक रेडियो स्टार्ट होता है तब तक ये जो है रात तक रेडियो सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतने प्यार और एहसास से हमसे जुड़े हुए हैं। और लिखा है सो जाते हैं कभी कभी तब भी रेडियो चलता रहता है, 12 बजे के बाद ही रेडियो बंद होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से हमारे प्यार और एहसास से हमसे जो हमसे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने सुधान बाबा नरेश पंडी और पप्पू जी का नाम लिखा हुआ है, और इन्होंने लिखा है कि हमें गर्मियों में आम अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, वही मैंने कहा कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ, हर सीज़न की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो इनको आम बहुत पसंद है गर्मियों में। और हमारे पास शिव पूजन लाल जी का मैसेज आ गया है, मेल आया है, इन्होंने लिखा है हेलो डियर रॉकिंग शिखा मैम जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? भाई आपको भी गुड आफ्टरनून, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं शिव पूजन फ्रॉम विलेज सनी गामा लखीमपुर खीरी से। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लिया है, टॉपिक गर्मी का सीजन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम, तरबूज, लीची आदि खाने को मिलते हैं, और गर्मी की छुट्टी स्कूल में मिलती है, और खास बात ठंडी जगहों पर घूमने में मजा आता है।

जी 1:25 का वक्त, और देखिए ना जो हमने आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड हमारे पास व्यूज भी आना शुरू हो गए, और हमारे पास मेल आ चुका है सुधान बाबा जी का। इन्होंने लिखा है गर्मी का आम अच्छा लगता है, अगर भी क्या गर्मी तो और अच्छा लगता है। मजे की बात, बातें की रेडियो बंद होते हैं तुरंत चालू कर देते हैं लोगों ने। हम लोग 3 लोग हैं और बहुत ही ज्यादा रेडियो सुनते हैं मुझे लगता है।

और विकास जी ने हमें मेल कर दिया है, हेलो मैम नमस्कार, मैं विकास गांव सली तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। मैम मुझे गर्मी के मौसम में आम खाना अच्छा लगता है, नाना नानी के घर जाना घूमना अच्छा लगता है। और रवि कुमार राहुल जी का मेल आया है हमारे पास, इन्होंने कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से मेल किया है और इन्होंने टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा है, इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं तो मैं जरूर से पढ़ दूंगी। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। तो आपको बता दूं रवि जी कि आपको मेल से मतलब जो आज का टॉपिक है उससे भी रिलेटेड कुछ लिखना चाहिए था और मुझे लगता है कि टॉपिक सभी को समझ में आ गया था। ईजी, बहुत ईजी टॉपिक है कि आपको ये बताना है कि जो ये गर्मी का सीजन चल रहा है उसकी स्पेशलिटी क्या है और वो स्पेशलिटी में आपको क्या अच्छा लगता है। तो हम और भी मेल पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छा सा गाना मैंने लगा के रखा है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक आ रहा है और मैं भी साथ में एंजॉय करूंगी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।

0: त्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: जी 1:36 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उठो पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। और हमारे पास अजमत अंसारी जी ने मेल किया है और इन्होंने आई थिंक कुछ लिखा नहीं है, मेल किया है इन्होंने। और हमारे पास रामेश्वर जी ने मेल किया है, होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जी को सप्रेम नमस्कार, प्रणाम नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है और बेहद अच्छी प्रस्तुति होती है, और बेहद अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमें नींबू पानी की CNG अच्छी लगती है, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। ग्राम व पोस्ट मुंगेसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे पास मेल आया है वकील अहमद जी का, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों के सीज़न में तरबूज खीरा ककड़ी और गर्मी वाले फल खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी ज़िला सीतापुर जाहिद अली चाचा साइकिल बना रहे हैं, गर्मी हमारे यहाँ बहुत तेज़ हो रही है। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी महक, तो आपको बता दें भाई गर्मी यहाँ भी बहुत हो रही है और आपको इस गर्मी में अपना ख्याल भी रखना है, चीज़ें तो आपको इंजॉय करनी ही करनी है क्योंकि जो सीज़न है वो अपने में काफ़ी कुछ संजो कर लेकर आता है और उस सीज़न हमको वो चीज़ें बहुत अच्छे से उसका यूज़ करना चाहिए और अच्छे से खाना पीना चाहिए, जो भी चीज़ें उससे बहुत अच्छे से आनंद लेना चाहिए। और आपको बता दूं लेकिन ये जो सीज़न है ये अपने साथ साथ बीमारी भी बहुत लेकर आता है, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको बहुत ध्यान देना है। घर से निकलें तो अच्छे से अपने को कवर करके निकलें, पानी की बॉटल साथ में ज़रूर रखें और बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। जी मीका जी का हमारे पास मेल आ चुका है, इन्होंने राजा जी पुरम से हमें मेल किया है, इन्होंने लिखा है कि मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, मैम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, घर के अंदर भी लगता है एसी काम नहीं कर रहे हैं, तो गर्मी तो सच में है और बिल्कुल सही बात है कि लगता है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ों को इन्जॉय करना है, चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है। और इन्होंने लिखा है कि मुझे गर्मी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको कहीं भी जाना है कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी कपड़े पहन लीजिए और आप चले जाइए, लेकिन ठंड में निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, शॉल ले लें, स्वेटर ले लें, ये कर ले वो कर ले, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, तो चीज़ें अपने में हैं, हर सीज़न अपने में कुछ ना कुछ बेहतर लेकर आता है, तो हर सीज़न की अपनी स्पेशलिटी है, तो बहुत अच्छा है कि आपने अपने व्यूज़ हमसे शेयर करें। और रविंद्र जी ने भी हमें मेल कर दिया है, इनका मेल हमें बाराबंकी से आया है, इन्होंने लिखा है कि मैम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीत हम सुन रहे हैं। और गर्मी के सीज़न में मुझे कुल्फ़ी खाना बड़ा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली नहीं तो हर दूसरे दिन खाऊं ज़रूर कुल्फ़ी, क्योंकि ये जो सीज़न है बड़े मस्ती वाला होता है और ठंडी चीज़ें हम इसी समय इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ बहुत अच्छी बात करी और बोल रहे हैं कि साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन अपनी फैमिली को भी बाहर ले जाऊं और उनको कुछ अच्छा खिलाऊं और साथ में कुल्फ़ी का आनंद तो ज़रूर लूं। और एमन नवाब जी ने हमें मेल कर दिया है, हेलो शिखा दी गुड आफ्टरनून, गर्मी में मुझे खाना खाने के बाद आम तरबूजा खाना बहुत पसंद है, खाना तो बस मैं फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए खाती हूँ, बेल का शरबत बहुत फ़ायदेमंद होता है, रूह अफ़ज़ा का शरबत पीती हूँ, गर्मी की स्पेशलिटी है, गर्मी में ठंडी ठंडी एकदम फ्रीजिंग कोल्ड आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। और बताऊँ मुझे गर्मी में क्या पसंद है दीदी, आप हंसोगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं, लिखा है एकदम कूलर के आगे मुंह करके हवा खाना बहुत अच्छा लगता है।

तो देखिए ना कितनी मजेदार मजेदार चीजें हैं ना जो हम लोग अपने में करते तो हैं लेकिन दूसरों को नहीं बता पाते. लेकिन जब इस तरीके के टॉपिक आते हैं तो अब जब दिल खोल के अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. तो बिल्कुल हंसने वाली बात है. और मैं भी कभी कभी जब मतलब बहुत गर्मी लगती है तो मैं भी ऐसा करती थी.

जी, और हमारे पास मिहारिका जी का मेल आ चुका है। इन्होंने सफेदाबाद से मेल किया है। इन्होंने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करी हूँ और मुझे आपका आपको प्रोग्राम में आने का इंतजार रहता है। तो बढ़िया, ये लीजिए, मैं आज हूँ आपके साथ, तो बढ़िया इंजॉय करते हैं प्रोग्राम, आप भाई बने रहिएगा हमारे साथ। और इन्होंने लिखा है कि मुझे घूमने जाना बड़ा अच्छा लगता है, जब शाम का टाइम होता है तो मैं सारे काम वाइंड अप करके घूमने निकल जाती हूँ। अगर बहुत दूर नहीं जाती तो आसपास के मंदिर में चली जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा वॉक करती हूँ और शाम का एक मेरा एक रूटीन बन जाता है गर्मी में ये करने का। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी और सब आपने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज शेयर करे। तो एक मैं सोच रही हूँ कि एक गाना भी भेज दूँ आप तक, क्योंकि गाना भी बहुत ज़रूरी है आप तक आने के लिए, मतलब सुनने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम और 100.7 FM रेनबो हो तो भी क्या बात है ना। तो चलिए इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

तो देसी दोस्तों, हमारे पास देखिए मेल आ चुके हैं. श्रेया मिश्रा जी ने हमें मेल किया है. हेलो मैम, मेरा नाम निहाल है. मुझे वाटरमेलन खाना पसंद है. मतलब इन्होंने तीन लाइंस में अपनी पूरी एक्सप्रेस कर दिया है कि इनको गर्मी के सीज़न में तरबूज खाना बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन हाँ, सही बात है, तरबूज को जब आप काला नमक डाल के जो है इंजॉय करिए ना, तो एक अलग ही आनंद आता है. तो इंजॉय करिए बस आप सीज़न. अजमत अंसारी जी ने, हेलो मैम, मुझे गर्मी में बाग में बैठना पसंद है. तो ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बाग में जब गांव का जो मौसम होता है, बाग में जाना और वो इमेजिनेशन करिए ना, बहुत अच्छा लगता है. तो सही बात है कि इतनी चीज़ें आप जो बता रहे हैं, मुझे भी कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ. सॉरी शिखा जी, गुड आफ्टरनून. होठों पर दिल की बात, होठों पर तेरी बात कार्यक्रम, इन्होंने लिखा है दिल की बात. तो सच में दिल की बात ही तो है जो आपकी हम पढ़ते हैं और आप अपने व्यूज़ हमें शेयर करते हैं. कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चल रहा है. विनोद कुमार गुप्ता, गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में, आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनता हूँ. कूलर से जब पानी की छींटें आने लगती हैं तो बड़ा मजा आता है. मैं आपका प्रोग्राम अजय कुमार मिश्रा, मेरे मित्र हैं, उनके साथ सुन रहा हूँ. तो बहुत अच्छी बात है भाई, फ्रेंड्स के साथ कोई भी चीज़ एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है. सुनील पाठक जी ने हमें मेल कर दिया है और इन्होंने लिखा है कि आज इनका मेल आए. अच्छा, इन्होंने गाने की फरमाइश करी आई थिंक. तो गाने तो हम आपके अभी प्ले करेंगे ही सच में, लेकिन अभी तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, उसमें हम आपकी जो बात है आप कहना चाहते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं. नमस्कार, गर्मी के दिनों में आम को आग पर पक्का कर फिर बीट नून पानी के साथ घोल कर पीना अच्छा लगता है. बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मेल किया है. छाछ जो दही से बना है. अच्छा, इन्होंने का जो आग पर भून के वो जो पना बनता है ना. हाँ सच में, पना का जो

टेस्ट है ना, वो एक अलग ही होता है. बहुत इंजॉय करने का बहुत मन करता है और हर चीज़ अपने में कुछ ना कुछ संजोए हुए होता है. और चलिए, इन्होंने लिखा है बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से इन्होंने हमें मेल किया है. और अब गाना एक हम सोच रहे हैं आप तक पहुँचा दें, बहुत अच्छा सा ट्रैक है, वो आ रहा है आप तक.

जी 1:56 का वक्त, और ये वक्त कह रहा है कि भाई अब टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात से। जी हाँ, इजाजत तो लेनी होगी प्रोग्राम से, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आपकी ये दोस्त अभी रहेगी आपके साथ अगले प्रोग्राम में। जी हाँ, रेनबो हॉट मेल, और उसमें करना क्या है, उसमें आपको अपने ट्रैक्स भेज रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और अभी खूब ढेर सारी बातें भी होंगी। तो चलिए हम टाटा बाय बाय करते हैं इस प्रोग्राम से, लेकिन मिलते हैं अगले प्रोग्राम रेनबो हॉट मेल में। तब तक के लिए इंजॉय करते हैं प्यारा सा गाना आपकी रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 26वीं बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही मध्य प्रदेश केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और चार राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को

टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। प्रदेश में आगामी दिनों के लिए भीषण गर्मी की स्थिति को लेकर एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश के दक्षिणी भाग में बांदा में भीषण लू के साथ प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, हमीरपुर एवं झांसी के आसपास के क्षेत्रों में आज लू की स्थिति दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों को स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की शुरुआत मैनपुरी जिले में हो गई है। इसी क्रम में आज कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारों का आयोजन किया गया है। आकाशवाणी केंद्र द्वारा आयोजित भंडारे का बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

आपके जीवन में खुशियाँ हजार आए, आपके जीवन में खुशियाँ हजार आए, गम का साया भी पास ना आए, गम का साया भी पास ना आए, फूलों सी महके जिंदगी आपकी, फूलों सी महके जिंदगी आपकी, रब करे हर दुआ कबूल हो जाए। जी हाँ, बस इसी प्यारी सी ख्वाहिश के साथ हाजिर हैं हम आपकी एक दोस्त, जी हाँ आपकी दोस्त शिखा, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल लेकर। तो इस घंटे ये होगा फुल धमाल, तो ये प्रोग्राम आपका है और आपकी पसंद के गीत ही प्ले करेंगे हम इस घंटे। और इस धमाल में आपको देना होगा हमारा साथ, और वो साथ आपका मिलेगा हमें आपके मेल्स के थ्रू। तो लिख भेजिए हमें वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं, और साथ ही अपनी डेडिकेशन भी कि किसको वो गीत आप सुनाना चाहते हैं। और आपको भेज रहे हैं हमें मेल हमारी मेल आईडी पर, और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com।

जानू जी हाँ भाई, आप जानते हो और ये हम जानते हैं कि प्यार में क्या जादू होता है, और यही बॉन्ड जो हम लोग के बीच में एक डेवलप हो गया है, और वो जो डेवलप प्यार हुआ है वो आपका जो हमें मेल्स के थ्रू मिलता है ना, इतना खुश हो जाता है दिल कि जो ये कतार लगी हुई है ना मेल्स की, ये दिल जो है खुश कर देती है। तो चलिए हम जल्दी से पढ़ते हैं मेल्स। बोधराज खोरवाल जी का मेल आया है हमारे पास, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश करी है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर ये गाना पहुंचाएं। और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से हमें मेल किया है, कमला रानी, बोधराज कोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका कोरवाल। और हमारे पास मेल आ चुका है अंकुश जी ने हमें मेल किया है। मैडम जी, मैं पहली बार ईमेल कर रहा हूँ, ये लीजिए आपका। अरे वाह, कितना लकी डे हो गया है ना, आपने मेल किया और आपका मेल शामिल भी हो गया टुडे। आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कर दें, वो सॉन्ग आपके लिए। ओहो, थैंक यू सो मच। और इनका मेल आपको पता है इतना, मैंने कहा ना प्यार में होता है क्या जादू, ये प्यार जो आपका मेल्स के थ्रू मिलता है ना, सच में क्या कहें, इसके लिए लव्स नहीं है कहने के लिए। और हम नहीं कह सकते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जी हाँ, बाग बाग हो जाता है दिल की भी। हमारी जो लिसनर्स हैं वो इतना प्यार करते हैं। और हमारे पास मेल आया है आफताब अंसारी जी का। आज शिखा सिस्टर जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, प्रोग्राम के पेश करने का अंदाज बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। और इन्होंने बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश करी है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक वो गाना ज़रूर पहुँचाएँ। और गाने तो ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये आपकी ही पसंद का होता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक जो गाने पहुँचाएँ वो आपके ही हों। और ये मैं मेरा एक मतलब एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी गाने आते हैं ना, तो आप बस उसको इंजॉय करिए, क्योंकि वो भाई आप में से ही किसी ना किसी के पसंद के होते हैं। और बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप, फिल्म का नाम, अच्छा इन्होंने गाना लिखा है, वो हमारी कोशिश है कि पहुँचाएँ आप तक। नसीम अंसारी, मुनान अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी। और हमारे पास मेल आया है शहरूर नूर अंसारी, है ना, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, ग्राम व पोस्ट हर हर पुर मटकली ज़िला बरेली से शहरूर नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरिसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने आफताब अंसारी जी का मेल मैंने पढ़ लिया है, और किसका मेल आया है जल्दी जल्दी से पढ़ती हूँ। अब्दुल गफ्फार जी ने हमें मेल किया है, प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए, आपकी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इन्होंने हमें मेल किया है। अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है, सोहन जोशी और पायल जोशी। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जो मेल तो अभी मैं पढ़ूंगी आपके मेल्स, पढ़ना मेरा काम है भाई, और इतने सारे मेल देखकर मेरा मन करता है कि मैं मेल ही पढ़ती रहूं, लेकिन नहीं भाई, गाना तो पहुंचाना बनता है।

0: एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है आप तक, तो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? तो चलिए इंजॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना.
1: हाँ,
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है?

जी 2:20 का वक्त और बहुत ढेर सारे हमारे पास मेल आ चुके हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं। शेख मूसा जी ने हमें मेल किया है और लिखा है, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। फिल्म में इन्होंने एक लिखा हुआ एक गाना, तो हम एक्चुअली नाम नहीं बताते हैं, हम सोचते हैं जब वो गाना आप तक पहुँचेगा तो आपके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। और सनावत से इन्होंने हमें मेल किया है, शेख मूसा मोहसिन। और हमारे पास मेल आया, रेनू देवी जी ने हमें मेल किया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी लोग सॉन्ग एंजॉय करते हुए वर्क कर रहे हैं, विलेज हसनपुर और उन्नाव से इन्होंने हमें मेल किया है। मैम पहले ज़माने में जब मेरे गांव में बिजली नहीं थी तब, अच्छा इन्होंने इस समय अपना वो भी बता दिया है, होठों पे तेरी बात का टॉपिक भी इन्होंने रिपीट कर दिया है। क्या तरबूज को ढक करके रात में तरबूज को अच्छे से पानी में डाल, वेल में डाल किया, अच्छा ठंडा ठंडा करने से निकाल के बाद हम खाते हैं उसे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो रही है मुझे लग रहा है इनकी, प्रोग्राम

अच्छा लग रहा है, मैं अपने परिवार के साथ प्रोग्राम सुन रही हूँ। रेनू, आयुषी, उषा, नीतू, और इसके बाद हमारे पास मेल आया है। सुनील खरे जी ने हमें मेल किया है, सेक्टर 67, मोहाली, चंडीगढ़। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल कुमार, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभाष चंद्र, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और बिट्टू गगनेजा जी ने हमें मेल किया, एक प्यारे से गाने की फरमाइश करी है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, पिशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और हमारे पास मेल आया है, जय ने हमें मेल किया है, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमित खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म ब्लैकमेल, इन्होंने फिल्म ब्लैकमेल से गीत की फरमाइश करी है, तो कोशिश है हमारी कि हम आप तक पहुंचाएं। जाकिर जी ने हमें मेल किया है, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन शिखा जी को नमस्कार, आदाब, अभिवादन, आज के लाजवाब और शानदार कार्यक्रम में अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, धन्यवाद। और सुधाकर यादव जी ने हमें मेल किया है, प्रेम पूर्वक नमस्कार, यह प्रोग्राम आपका हम लाइव सुनते हैं, प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है, इस प्रोग्राम की

हमारी की हम आप तक पहुंचाएं। जाकिर जी ने हमें मेल किया है, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन शिखा जी को नमस्कार, आदाब, अभिवादन। आज के लाजवाब और शानदार कार्यक्रम में अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, धन्यवाद। और सुधाकर जाधव जी ने हमें मेल किया है, प्रेम पूर्वक नमस्कार, यह प्रोग्राम आप का हम लाइव सुनते हैं, प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है, इस प्रोग्राम की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर होती है, सभी गीत सुमधुर होते हैं। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से इन्होंने मेल किया है, श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार, और इन्होंने गाने की फरमाइश करी है। और हमारे पास मेल आया है सवारण सिंह जी का, गांव लोगड़ा ठाकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुना दें और हमारा जरूर नाम शामिल करें। ये लीजिए, आपका नाम शामिल हो गया और एक बहुत ही प्यारा सा गीत भी है, वो आप ही के किसी की पसंद का है, आ रहा है आप तक, तो चलिए इंजॉय करते हैं।

0: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान

0: अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी 2:32 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो हॉटमेल, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा आपके साथ। और हमारे पास मेल आ चुके हैं और ये मेल हमारे पास जो लाइन लगी हुई है वो हमसे कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए मेरा नाम। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो बिल्कुल बेकरार हो रहे हैं कि भाई उनका नाम ले लिया जाए। तो तुलसी मस्कीन जी ने हमें मेल किया है। रिस्पेक्टेड होस्ट मैम जी नमस्कार, किसी भी गीत में मेल पढ़े, थैंक यू सो मच। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना और रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। और हमारे पास मेल आया है बबलेश पनवार जी का। बबलेश जी ने लिखा है, इन्होंने एक गाने की फरमाइश करी है और लिखा है पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब से इन्होंने मेल किया है। गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा, दिनेश चौहान ने, और डांगरी से बाबू राम जयपाल। तो थैंक यू सो मच, आपने मेल किया। और हमारे पास रामेश्वर जी ने मेल किया है। हॉट मेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता आरजे शिखा बहन जी को नमस्कार, हम आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉट मेल बराबर सुन रहे हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है बहन जी, अच्छी प्रस्तुति है बहन जी, शिखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहन जी। मेल बार बार बहन जी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो रहा है। बहन जी मेल ज़रूर ज़रूर शामिल कर लें, धन्यवाद आपको, हमें कोई भी गीत में शामिल ज़रूर करें। मजबूरी में दूसरा मेल कर रहा हूँ प्लीज़, लेकिन ये बिल्कुल भी शिकायत इस तरीके से मत करिए, क्योंकि प्रोग्राम आपका है, मेल्स हम आपके ही पढ़ते हैं और ऊपर नीचे मेल्स हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इतने ढेर सारे मेल एक साथ ही और एक ही इंसान कई कई बार मेल कर देता है, तो आपकी मेल्स हमारी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि भाई दिल के अजीज जो लोग होते हैं उनका मेल तो भाई पढ़ना बनता है, और सभी आप लोग हैं बहुत ज़्यादा अजीज। कोई भी गीत सुनवा दीजिए। शहरूर नूर अंसारी ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से, और इन्होंने राजू मिगलानी जी ने हमें मेल किया है। प्रोग्राम हॉट मेल पेश करता जी प्यार भरा नमस्कार, इन्होंने एक बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश करी है, तो हमारी पूरी कोशिश है हम आप तक वो गाना ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारे इन्होंने लिखा है, इन्होंने डेडिकेशन लिखा हुआ है, दुर्गा राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, शुक्रिया मेहरबानी जी। और हमारे पास सुधान बाबू, बाबा जी प्लीज़ मेरा मेल पढ़ें। तो भाई आपका मेल तो मैंने पढ़ लिया है, आई थिंक पढ़ भी लिया था, और कोई भी स्किप नहीं करते हैं, कोशिश तो यही रहती है। और मोहम्मद सादिक जी ने हमें मेल किया है, मोहतरमा शिखा जी आपको दिल से आदाब, आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत हमें सुनवा दीजिए। फरमाइश करते हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद सादाब खत्री, मोहम्मद रोड गोगामा से। और मनोज बंसल जी ने हमें मेल किया है, मोहतरमा शिखा जी आपको दिल से आदाब। और आई थिंक मैंने इनका दोबारा मेल पढ़ दिया, एक एक बार मेल स्किप हो जाता है। साई गायकवाड़ जी ने हमें मेल किया, हॉट मेल सादर करने प्रस्तुत करता वने शिखा दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी। हमें एक गाना इन्होंने लिखा है, बिल्कुल हम सुनवाने की कोशिश है हमारी कि वो गाना आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। और बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मेल किया, नमस्कार, फिल्म एक गाना लिखा है इन्होंने, और दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री, और बहुत ही प्यारा सा मेल इन्होंने भेजा है, पियारा बाजार झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, खदान कोठी, बोरा पारा चौक बसबेरिया, और वसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव, बी के सिन्हा, थैंक यू। और थैंक यू आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से मेल करते हैं और इतना डेकोरेटिव मेल करते हैं कि दिल तो आपसे बात करके वैसे भी खुश रहता है,

लेकिन जब मेल पढ़ते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है कि इतना प्यार और एहसास आप अपने मेल में सराबोर करके भेजते हैं. तो एक प्यारा सा गाना है, वो आपकी ही पसंद का है, तो चलिए इंजॉय करते हैं हम और आप ये प्यारा सा गीत.

दोस्तों हमारे पास देखिए मेल आ चुके हैं, बहुत ढेर सारे मेल आए हैं और शंकर लाल जायसवाल जी ने हमें मेल किया है। इन्होंने लिखा है फिल्म, एक प्यारी सी फिल्म लिखी है, वो बहुत अच्छी फिल्म है और गाना भी बहुत अच्छा है।

तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक जरूर वो गाना पहुंचाएं। जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मेल किया है, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, इन्होंने हमें मेल किया। राजकुमार दूधी ने हमें मेल किया है गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी जी का हमें इन्होंने हमें मेल किया है, कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। नरेश जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार जी आरजे जी, शुक्रिया कहना तो भूल गए थे, आपका शुक्रिया, शुक्रिया ईमेल नाम शामिल करने के लिए नहीं भेजा है दीदी जी, सदा खुश रहिए, आप शामिल नहीं करना हमें दीदी जी प्लीज, लगता है आप शामिल नहीं करोगे, बस आपनों को शामिल करेंगे, ईमेल भी नहीं भेजेंगे भी शामिल नहीं करेंगे। अरे मतलब इतना गुस्सा क्या ही है, गुस्सा तो होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, अपने अपने अपनों से गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए आपका मेल शामिल हो गया और कोशिश हमारी रहती है कि आपके जितने भी आप लोगों ने हम लोगों से फरमाइश करे है गाने की हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ, तो नाराज़गी बिल्कुल भी, अच्छा ये भी कह सकते हैं नाराज़गी अपनों से ही जाहिर करी जाती है, हम आपके अपने हैं तो आप नाराज़गी जाहिर कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेल शामिल हुआ और मैं फिर से कह देती हूँ भाई नरेश जी ने हमें मेल किया है और बहुत प्यारा मेल करा है, फ्लावर्स भेजे हैं, तो आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, गुस्सा करते हुए नहीं अच्छे लगते। और हमारे पास लालगिरी जी ने मेल किया है, कार्यक्रम हॉटमेल पेश करता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हो दीदी जी आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और गाना इन्होंने भेजा है तो हमारी पूरी कोशिश है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से इन्होंने मेल किया है, लालगिरी गोस्वामी हेमलता और रामकिशोर यादव जी ने हमें मेल किया है, हेलो एफएम रेनबो लखनऊ, लखनऊ की ट्रैफिक और हमारी लाइफ दोनों एक जैसे हो गए हैं, ना स्पीड मिल रही है ना ही डायरेक्शन, प्लीज एक धमाकेदार गाना प्ले कीजिए। तो चलिए बिल्कुल रेडी है एक धमाकेदार गाना आप तक आने के लिए और आपकी ही पसंद का वो गाना है, तो चलिए हम एंजॉय करते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

जी हमारे पास मेल आ चुके हैं, बहुत ढेर सारे मेल हैं और हमारा पढ़ने का टाइम भी हो रहा है भाई, क्योंकि धीरे धीरे टाइम कह रहा है कि वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम को, लेकिन हमारे पास 6 मिनट है और कोशिश रहेगी कि हम आपके जितने भी मेल आए हैं उनको हम पढ़ जरूर लेंगे। रविंद्र मोहन जी ने हमें मेल किया है, कोई गीत सुना दे, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। और रोजी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, और गाना इन्होंने एक भेजा है, कोशिश है कि प्ले कर दें। अनंतराम मिश्रा जी ने, शिखा जी आपने आज तक अपने कार्यक्रम में कभी मेरा नाम शामिल नहीं किया, ये लीजिए भाई आपका नाम शामिल हो गया, मेरा मेल शामिल करते हैं मगर आपने कभी शामिल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ले लीजिए अनंत राम जी, आपकी आज जो ये गलती थी, मतलब गलत फहमी थी कि मैंने आपका मेल नहीं शामिल किया, आज आपका मेल शामिल हो गया, आज के बाद आप जिस कार्यक्रम में होंगी मैं मेल नहीं करूंगा। भाई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा कि अपने लोगों से गुस्सा होइए लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा मत होइए, और आप सब तो हमारी बहुत ही ज्यादा दिल के करीब हैं। सिद्धार्थ जी ने हमें मेल किया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, और अब हमारी कोशिश है कि हम सबके नाम पढ़ लें जल्दी जल्दी से। रोजी डिकेस्ट्रो, सिद्धार्थ गुनाने और शहरू नूर अंसारी, रोजी डिकेस्ट्रो, रविंद्र मोहन दास जी, अनंत राम मिश्रा, ताज मोहम्मद जी ने हमें मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने मेल किया है, बोधराज कोरवाल जी ने मेल किया है, और रविंद्र मोहन दास, नरेश जी ने मेल किया है, अशोक कुमार जी ने मेल किया है, अहमद फुलवाली जी ने मेल किया है, और मोहम्मद सादिक सादिक जी ने मेल किया, संदीप मकर जी ने मेल किया है, ताज बहादुर यादव जी ने मेल किया है, अहमद फुलवाले, रविंद्र मोहन दास, विजय महोबिया और अजमत अंसारी, संदीप मकर, रविंद्र मोहन दास, जाकिर और रविंद्र मोहन दास जी, सतीश अनेजा, पिंकू सोनी और लालगिरी, संजय ढींगिया, और भी बहुत से लोगों का मेल आया है और हमने कोशिश करी है कि आप सभी के नाम ले लिए हैं, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई गुस्सा मत हुई है, और पूरी कोशिश रहती है कि आपके सॉन्ग आप तक पहुंच जाएं, और अगर नहीं पहुंच पाए तो उसमें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज़ आता है, तो आज आपका अगर नहीं हो प्ले हो पाया तो कल ज़रूर से प्ले होगा, और सभी गाने मुझे लगता है कि इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि आप ही के सब लोग हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं दिल के तार ज़रूर जुड़े होते हैं, तो एक से बढ़कर एक गीत जो पहुंचते हैं ना वो बहुत अच्छे अच्छे, जितने आप लोग जो मेल करते हैं सब बताते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, अच्छे गीत सुन रहे हैं, तो सब लोग जो भी चीजें हैं बस उसको इंजॉय करिए, हर पल कहते ना इंजॉयमेंट भरा होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से एक बहुत ही प्यारा गाना आप तक भेज देते हैं, और गाना आ रहा है आप तक।

2:57 का वक्त, और इसी के साथ अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत कार्यक्रम हॉटमेल से, लेकिन अगला प्रोग्राम रे सतरंगी दुनिया भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेखा के साथ। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिकसन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टोन फॉस्ट्रेड्राट्री और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इसने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया और फिर जानबूझकर एक मकसद के तहत रुक गया। सेना प्रमुख ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। एक जनपद एक व्यंजन योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों को चिन्हांकन कर उन्हें संगठित, सुरक्षित, ब्रांडेड और बाजार उन्मुख बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल स्वाद और परंपरा को संरक्षित करना ही नहीं बल्कि स्थानीय उद्यमिता, रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा देना है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के

जिलाधिकारियों, संबंधित विभागों, प्रतिष्ठित संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और जिला उद्योग केंद्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर जनपदवार व्यंजनों की पहचान की गई है। प्रदेश में आगामी दिनों के लिए भीषण गर्मी की स्थिति को लेकर एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी क्रम में प्रदेश के दक्षिणी भाग में बांदा में भीषण लू के साथ प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, हमीरपुर एवं झांसी के आसपास के क्षेत्रों में आज लू की स्थिति दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से महकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी 3:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने खास प्रोग्राम का। जी हाँ, खास प्रोग्राम का जिसका नाम है सतरंगी दुनिया, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है आपके लिए। तो आज भी होने वाली हैं बहुत ही खास बातें और वो बात हम करेंगे, तो उत्सुकता भी बढ़ रही होगी ना आपके दिलों में कि क्या बात होगी आज। भाई हर दिन तो कुछ नया ही नया होता है, तो आज भी कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए। बस आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार। तो हम बात शुरू करें उससे पहले एक बेहतरीन सा गाना आप तक पहुंचाएं, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

ब्यूटीफुल ट्रैक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में। दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में ढेर सारे रिश्ते बनाता है और उन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द उसकी रोजमर्रा की जिंदगी भी गुजरती है। और कभी कभी तो लगता है कि ये रिश्ते ही हमारी जिंदगी का आधार बन गए हैं। और एक फीलिंग ये भी आती है कि हम शायद इन रिश्तों के बिना रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में पूरा निर्भर हो जाए तो ये कहलाता है कोडिपेंडेंसी। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कोडिपेंडेंसी क्या होती है, तो ये आपके रिश्ते पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो हम जानेंगे कि क्या होती है कोडिपेंडेंसी और कहीं ये आपके रिश्तों में तो नहीं डेवलप हो रही है, और अगर हो रही है तो इसको ना पहले से रहते ही पहचान लेना बहुत जरूरी है।

जी हाँ भाई, सोना तो बनाया है आपको, बहुत ज़्यादा सोना बनाया है, क्योंकि जो इतनी इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं, इतने प्यार से हमें मेल करते हैं, तो बहुत सोने हैं आप। और ये जो खूबसूरती है ना, ये हम अपने रिश्तों में भी देखते हैं कि जो रिश्ते हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो हमारी जिंदगी का आधार बन गए। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम आज कोई को डिपेंडेंसी के बारे में। तो आपको बता दें कि रिश्तों में एक दूसरे पर निर्भरता स्वाभाविक है। जी, रिश्तों में एक दूसरे पर निर्भरता जो है ना, वो स्वाभाविक है। एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करना, पसंद नापसंद का ध्यान रखना, हर रिश्ते में एक आम बात है। तो मुझे लगता है कि आप करते होंगे ये सारी चीज़ें, आप करते होंगे कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, उनके लिए कुछ स्पेशल करवाना, उनको स्पेशल फील करवाना। लेकिन आपको बता दूं कि जब एक साथी का पूरा अस्तित्व

दूसरे पर निर्भर हो जाता है, तो ये कहलाता है को डिपेंडेंसी। और अगर समय रहते इस छोटे से अंतर को हम समझ नहीं पाते, तो हमारा जो खूबसूरत सा रिश्ता होता है ना, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो खूबसूरत सा रिश्ता कड़वाहट और तनाव से भर जाता है। तो इस बात पर आपको भी गौर करना है कि कहीं इस तरह का रिश्ता आपके बीच तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो आप जरा सोचिए और गौर करिए इस बात पर कि कहीं आपके रिश्ते में इस तरीके की चीजें तो डेवलप नहीं हो रही हैं। और साथ ही ये प्यारा सा गाना हम आप तक भेज रहे हैं, एंजॉय करते हैं।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी 3:24 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। और आज हम बात करें एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, वो टॉपिक है कोडिपेंडेंसी, जो अक्सर रिश्तों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं अपनी पहचान और खुशी को पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर कर देते हैं, लगातार दूसरे को हद से ज्यादा अटेंशन देना, हद से ज्यादा किसी के लिए त्याग या सैक्रिफाइस करना, दूसरे पर नियंत्रण की भावना और दूसरे के जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी मान लेना, इसके आम संकेत हैं। ये डिपेंडेंसी माता पिता, भाई बहन, दोस्ती, शादी के रिश्ते में बंधे बंधनों में असंतुलन लाती है, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें डेवलप होने लगती है ना, तो जो आपका रिश्ते में बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ने लगता है। और कहते हैं जब एक पक्ष जरूरत से ज्यादा देता है और दूसरा लेता है, तो रिश्तों का जो बैलेंस है वो बिगड़ना लाजमी है। और साथ में अगर ऐसी भावना जन्म लेने लगी कि आपका साथी आपके साथ ही समय बिताए और उसे भी ऐसा करने के लिए बाध्य आप करने लगे, तो समझ लीजिए कि आप को डिपेंडेंट होने लगे हैं। तो इन बातों को सुनकर अगर आपको भी जरा सा ये अंदेशा हो रहा है कि आप में भी ये चीज डेवलप हो रही है कि आप किसी को हद से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इसको यहीं पर रोक देना बहुत जरूरी है। तो जो रिश्तों की मिठास होती है ना, वो मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी 3:36 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए एहसास से और प्यार के साथ और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, 3:46 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कोडिपेंडेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो कोडिपेंडेंसी है ना, ये रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देती है। जी हाँ, इस तरह का रिश्ता त्याग और प्यार से भरा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुँचाने लगता है। आपको पता है, कोडिपेंडेंट व्यक्ति हर समय दूसरे को खुश रखने में लगा रहता है, चाहे खुद कितना भी मानसिक तनाव या थकान क्यों ना झेल रहा हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो देते हैं। तो इस स्थिति से आप यदि निकलना चाहते हैं, तो याद रखें कि आपकी खुशी सिर्फ आप पर निर्भर करती है, ना किसी और के व्यवहार या फीलिंग्स पर। तो इस तरीके की फीलिंग अगर आप में डेवलप हो रही है, तो वो आपको करनी है कंट्रोल। और वो कंट्रोल कैसे करना है? वो कंट्रोल ऐसे करना है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने महत्व को दूसरों के सामने जाहिर करना है कि हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, मैं मेरे अंदर भी गट्स हैं और मैं अपनी खुशी को

सर्वोपरि मानती हूं। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, जो रिश्तों का बैलेंस होता है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो इस टॉपिक पर आप सोचिए जरूर कि आप कहीं इस तरीके के रिलेशन में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं आप हद से ज़्यादा किसी को अटेंशन तो नहीं दे रहे हैं। और अटेंशन देने में क्या होता है, वो इंसान तो परेशान होता ही होता है और आपकी जो डिमांड्स बढ़ जाती हैं उसके लिए कि भाई आपको भी हमें टाइम देना है, आपको हमसे ही बात करनी है, तो इस तरीके की थिंकिंग को अपने रिलेशनशिप पर हावी ना होने दें।

3:54 का वक्त और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सतरंगे दुनिया, जिसमें आज हम बात कर रहे थे को डिपेंडेंसी के बारे में। और इस तरीके का जो रिश्ता है ना, वो आजकल कई रिश्तों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, चाहे भावनात्मक हो या आर्थिक। इसके लिए आप अपने शौक, दोस्तों और परिवार से जुड़े, ताकि आपका जीवन केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ना घूमे। क्योंकि एक संतुलित रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे का साथ दें, लेकिन अपनी पहचान को बरकरार रखकर। तो भले ही आप किसी को प्यार करें, बहुत हद से ज्यादा करें, लेकिन उस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना हो कि आपकी खुशी उसके ऊपर निर्भर होने लगे। और ये टाइम भी कह रहा है कि भाई अब टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम सतरंगी दुनिया से, क्योंकि 3:55 हो गए हैं और अब हमारे जो आरजे हैं वो भी आ चुके हैं हमारे यहाँ पे स्टूडियो में, और वो ये जो कमान है वो संभालेंगे और हॉट सीट पर रहेंगे आपके साथ, आरजे अनुग्रह जी। तो तब तक के लिए शिखा को दीजिए इजाजत। इस गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ और ये वादा करती हूँ कि फिर मिलती हूँ किसी दिन और आपसे। टिल देन टाटा बाय बाय।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 26वीं बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और 4 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस ना छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने देशभर की कई यूनिवर्सिटीज में फैले फर्जी डिग्री के संचालन में लिप्त गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा फर्जी डिग्री मार्कशीट संचालन करने वाला रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें 1000 के आसपास फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थीं। इसी क्रम में मिली जानकारी से गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम कामयाब हुई है। प्रदेश में गर्मी और लू का प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्नाव में भीषण गर्मी के बीच विद्युत आपूर्ति बाधित होने से बचाने के लिए बिजली विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। चित्रकूट में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव को लेकर प्रशासन ने अपील की है कि सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से धूप में बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी, तरल पदार्थों का सेवन करें। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारों का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, शाम के 4 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं यानी अनुग्रह आ गया हूं आपके बीच लेकर आपका अपना प्रोग्राम यूथ। तो दोस्तों, आज है दिन मंगलवार और आज हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। तो बातें भी होंगी और होंगी कुछ जानकारी भी, लेकिन चलिए उससे पहले एंजॉय करते हैं ये ट्रैक।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 भर्तियों के लिए विज्ञापन आ चुका है। इसमें जो है बोर्ड जोन के अनुसार पदों की संख्या भिन्न भिन्न है, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in जी यहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है वह है 14 जून और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 17 जून से 26 जून तक। तो बिल्कुल इंतजार मत करिए आखिरी डेट का, जल्दी से आवेदन कर दीजिए और कोई भी फॉर्म भरिए तो ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह से सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए।

सच में दोस्तों सफलता मिलती जरूर है, बस आप लगे रहिए, समय देते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, सफलता मिलती जरूर है। कभी निराश मत होइए, हो सकता है कभी देर सवेर हो जाए, लेकिन ये भी तो होता है ना, कई बार सब्र का फल मीठा होता है। तो जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन उससे निराश बिल्कुल मत होइए, कोशिश करते रहिए क्योंकि वो आपके हाथ में है, और देखिए फिर जो सफलता है वो आपके पास होगी।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक।

0: हो।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

और दोस्तों आपको याद दिला दें कि 4:25 पे आप सुनेंगे रोजगार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद एक बार फिर से अनुग्रह रहेगा आपके साथ प्रोग्राम यूथ वेव को लेकर। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.svpupa.gov.in/vacancies। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज IDS जयपुर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निशिबद्ध राजस्थान में अनुसंधान में संलग्न एवं स्वायत्त प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर कुछ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। लेखा कार्यपालक, ये पद का नाम है, पदों की संख्या होगी एक और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। पदों की प्रकृति होगी संविदागत आधार पर और श्रेणी है अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 62,000 रूपए और PF। कनिष्ठ कार्यालय सहायक, एक पद यहाँ पर भी रिक्त है, 18 से 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए और ये स्थायी पद होगा, अनारक्षित है। ये ग्रेड पे 2400 के लिए है। 18 से 40 वर्ष में एक और पद रिक्त है, वो है कनिष्ठ कार्यालय सहायक का, संविदागत आधार पर अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 33,000 रूपए प्लस PF। चालक, एक स्थान रिक्त है, 18 से 40 वर्ष स्थायी होगा, ये अनारक्षित है। इसमें आपका ग्रेड पे होगा 2400। एक स्थान यहाँ रिक्त है, 18 से 40 वर्ष की उम्र स्थायी अनारक्षित और ये ग्रेड पे 1700 के अंतर्गत आते हैं। आयु में छूट पर राजस्थान राज्य सरकार मानकों के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्थान IDS JGB निर्माण के अनुसार आयु में मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आपको मिल

0: जाएगा वेबसाइट पर जो है www.idsg.org/vacancies। इस विज्ञापन के प्रसारण के 15 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो IBM में सामान्य केंद्रीय सेवा अराजपत्रित राजपत्रित समूह बी के स्तर 7 के अंतर्गत सहायक भंडार अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक निकायों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विभाग में इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख होगी इस विज्ञापन के प्रसारण के 60 दिनों के अंदर। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से मैं यानी अनुग्रह आ चुका हूं लेकर आपका अपना प्रोग्राम यूथ वेव। तो टाइम हो गया है 4:30 और आप सुन रहे हैं यूथ वेव अनुग्रह के साथ। और चलिए अपने इस आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस ट्रैक के साथ और उसके बाद आपको देते हैं कुछ और बेहतरीन जानकारियां।

भारतीय वायुसेना ने सिविलियन के 47 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत सभी नियुक्तियां जो हैं वो ग्रुप सी के तहत वायुसेना के विभिन्न स्टेशनों और यूनिट्स में की जाएंगी। अब इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर के पदों के लिए एप्लीकेशन मांगी गई हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पे उपलब्ध है। यहां से आप जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है 1 जून, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए और समय से पहले आवेदन करने की कोशिश करिए।

0: जय श्री राम।
1: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी दोस्तों बताते चलेंगे, सशस्त्र सीमा बल ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल के 404 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 7 जून है और पोस्ट योग्यता और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप ssb.gov.in पे जाके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ बताते चलेंगे, 4:46 हो गए, प्रोग्राम चल रहा है, यूथ वेव अनुग्रह है आज आपके साथ।

दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफलता का असली राज है टाइम मैनेजमेंट। सही टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी तैयारियों को और भी मजबूत कर पाएंगे, जिससे आप सफलता के और करीब पहुंच जाएंगे। हर हफ्ते मॉक टेस्ट दें, अपनी गलतियों को नोट करें और जो गलतियां बार बार हो रही हों उन पर काम करें। उनसे निराश ना हो, याद रखिए गलती करना असफलता नहीं, गलती से ना सीखना असफलता है। तो हर गलती से सीख जरूर लीजिए।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधाने हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधाने हिंग।
1: और दोस्तों समय कह रहा है कि लीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन अगले प्रोग्राम यानी कि एफएम टॉप 10 में भी मैं यानी अनुग्रह रहूंगा आपके साथ। तो सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। प्रदेश में आगामी दिनों के लिए भीषण गर्मी की स्थिति को लेकर एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश के दक्षिणी भाग में बांदा में भीषण लू के साथ प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, हमीरपुर एवं झांसी के आसपास के क्षेत्रों में आज लू की स्थिति दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर के पीनना गांव में ट्रक से कार टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरनगर के एसपी संजय कुमार ने बताया कि हादसा खड़े ट्रक में कार की टक्कर के बाद आग लगने से हुआ। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्र नायकों एवं महापुरुषों की निर्माणाधीन प्रतिमाएं आगामी 15 अगस्त 2026 तक तैयार कर ली जाएं। उन्होंने वर्ष 2022-23 से अब तक निर्मित एवं स्वीकृत मूर्तियों की वर्षवार संख्या की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जयवीर सिंह ने आज विभाग द्वारा मूर्ति निर्माण को लेकर संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर पाश्चात्य मूर्तिकला वीथिका का लोकार्पण एवं संग्रहालय की पुरातत्व पत्रिका 2026 का विमोचन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जी दोस्तों, शाम के 5:04 हो गए, प्रोग्राम शुरू हो गया है FM टॉप 10, और एक बार फिर से मैं यानी अनुग्रह हूँ आपके साथ। तो वही एक और ऐसा साल जिसने रोमांस, एक्शन और म्यूजिक को नई पहचान दी। एक ऐसा साल जिसमें कई बॉलीवुड के सितारों ने मजबूती से पैर जमाए। ऐसा ही साल रहा 1992, और आज हम करेंगे इसी साल के टॉप 10 सॉन्ग्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 पोजीशन के सॉन्ग से, जो कि फिल्म यलगार से।

मल्टी स्टारर मूवी जिसमें सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह एक साथ नजर आए। फिल्म ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और साथ में दिव्या भाटी का ये सॉन्ग जो आज भी प्ले होता है तो कदम खुद ही थिरकने लगते हैं। सही पहचान आपने सात समंदर पर टॉप 10 के आज के इस प्रोग्राम में है, नंबर 9 पोजीशन पे।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों 5:16 हो गए, प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10, अनुग्रह है आज आपके साथ। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ईयर 92 में रिलीज मूवी जान तेरे नाम की, जिसमें म्यूजिक था नदीम श्रवण का। फिल्म में नजर आए रोनित रॉय फरहीन, जिन्होंने बताया कि प्यार को चाहे लाख छुपा लो छुप नहीं सकता, और यही बात बताता ये सॉन्ग है नंबर 1 पोजीशन पे।

शायद घोल देता था, और ऐसे ही संगीत था फिल्म संगीत का। संतोष आनंद रचित गीतों को संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने, और फिल्म में नजर आए जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित। तो चलिए एंजॉय करते हैं नंबर 7 पोजीशन पे संगीत मूवी का ये गीत।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक तरफ माँ बेटे का रिश्ता और एक तरफ सास बहू की तकरार नजर आई फिल्म बेटा में। मुख्य भूमिका में नजर आए अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। फिल्म के डायरेक्शन की कमान संभाली इंद्र कुमार ने और म्यूजिक दिया आनंद मिलिंद ने। साल 1992 की ये फिल्म उस साल सबसे सफल फिल्म भी रही और इस फिल्म का ये गाना आज है नंबर 6 पोजीशन पे। तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं 100.7 FM रेनबो पे कोयल सी तेरी बोली।

ऋषि कपूर डबल रोल में नजर आए फिल्म बोल राधा बोल में। स्क्रीन पे उनका साथ दिया जूही चावला ने। डेविड धवन निर्देशित इस मूवी को म्यूजिक दिया आनंद मिलिंद ने और ये गीत लिखे समीर ने। फिल्म तो सुपरहिट रही, साथ ही सुपरहिट रहा इस फिल्म का ये गीत जो कि नंबर 5 पोजीशन पे। तो चलिए हमारा एंजॉय करते हैं ये ट्रैक।

अक्षय कुमार को पहचान दिलाई फिल्म खिलाड़ी ने। 1992 में रिलीज इस मूवी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और इसी फिल्म से अक्षय कुमार के करियर को रफ्तार मिली। इस एक्शन थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट किया अब्बास मस्तान की जोड़ी ने और म्यूजिक की बखूबी जिम्मेदारी निभाई जतिन ललित की जोड़ी ने। फिल्म की तरह इस मूवी का म्यूजिक भी लोगों की जुबान पे चढ़ा और इस मूवी का ये ट्रैक आज भी कुछ अलग ही जादू चलाता है, जो कि है नंबर 4 पोजीशन पे।

साल 1992 में मूवी रिलीज हुई दिल का क्या कसूर, जिसमें दिव्या भारती के साथ दो नए कलाकार नजर आए, पृथ्वी और सनम। इस मूवी को तो वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इस मूवी के सारे ही गाने लोगों को खूब पसंद आए। तो चलिए हम और आप एंजॉय करते हैं नंबर 3 पोजीशन पे इस मूवी का ये ट्रैक।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: तरफ 1992 साल में लव ट्रायंगल एक्शन थ्रिलर मूवीज देखने को मिली, वही इसी साल कुछ अलग स्टोरीज नजर आईं। स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म जो जीता वही सिकंदर में, इसमें आमिर खान, आयशा जुल्का अभिनीत इस फिल्म को डायरेक्ट किया मंसूर खान ने और म्यूजिक की बागडोर संभाली जतिन ललित ने। और आपको बताऊं कि जो जीता वो ही सिकंदर वाज द थर्ड बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम ऑफ 1992। तो आप भी महसूस करिए इस गीत का जादू नंबर 2 पोजीशन पे।

दोस्तों साल 1992 में रिलीज हुई मूवी दीवाना, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए ऋषि कपूर और दिव्या भारती, और इनके साथ बॉलीवुड में दमदार डेब्यू किया शाहरुख खान ने। राजकुमार निर्देशित इस मूवी में जो है वो दूसरी सबसे सफल फिल्म रही और अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में सफल पहचान बनाई शाहरुख खान ने। और दोस्तों अब समय कह रहा है कि ली जाए इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन अगले प्रोग्राम यानी शाम अवध में भी रहूंगा आपके साथ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और साथ में चलिए सुनते हैं नंबर 1 पोजीशन पे ऐसी दीवानगी फ्रॉम द मूवी दीवाना।

नमस्कार, शाम के 6 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मुलाकात करेंगे और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आज विभागीय योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयासरत और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कृत संकल्पित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहितकारी कार्यक्रमों को और अधिक तीव्र गति से संचालित करें। प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2026 के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रदर्शन और मिनीक्रेट योजना के तहत कुल 1,99,910 कुंतल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ सम्पन्न हो सके। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ में सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तीसरे बड़े मंगल पर इस बार पिछले दोनों मंगलों की तुलना में अधिक संख्या में भंडारों का आयोजन किया गया है। लखनऊ स्थित आकाशवाणी केंद्र के कर्मचारियों ने भी आज भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: शाम सुहानी है और आपका साथ है, हवाओं में जैसे मोहब्बत की बात है, चांद भी ठहर कर निहारने लगा हमें, लगता है आज हर लम्हा खास है। और इसी खास लम्हे में मैं यानी अनुग्रह आ चुका हूँ आपका अपना प्रोग्राम लेकर शाम अवध। तो चलिए शाम अवध के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस ट्रैक के साथ।

जी दोस्तों, सेल्फी लेने का क्रेज इतना ज्यादा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो सेल्फी लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। इवन आज मंदिर में जा रहे हैं, वहां भी सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं कई लोग। भाई लेना बुरी बात नहीं है, सेल्फी लेना बुरी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि आपके पीछे जो लाइन है ना वो डिस्टर्ब मत हो। आप पता लगा खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं और पीछे लाइन जो है वो बढ़ती जा रही, थम सी जाती है लाइन। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी और को असुविधा हो। 6:16 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, शाम्यवध अनुग्रह है आज आपके साथ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ज्येष्ठ माह के हर मंगल को लखनऊ का नजारा कुछ अलग ही नजर आता है। हर रास्ते पे, हर मंदिरों पे कुछ त्योहार सा नजर आता है और इसी कारण से भीड़ जो है कुछ बढ़ जाती है, और इसी को देखते हुए आज ट्रैफिक जो है वो कुछ बदला हुआ सा नजर भी आ रहा है। आपको बताऊं कि मोती महल तिराहा से हनुमंत धाम मंदिर की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे में मोती महल तिराहा से जो है केडी सिंह स्टेडियम तिराहा से सुभाष चौराहा होते हुए वाहन जा सकेंगे। इसके अलावा इक्का तांगा स्टैंड चौराहा से वाहन जो है हनुमान सेतु की ओर नहीं जाएंगे। इसके लिए इक्का तांगा स्टैंड से आ रहे वाहन डालीगंज चौराहा होकर जा पाएंगे। परिवर्तन चौक चौराहा से वाहनों की हनुमान सेतु की ओर जो है रोक रहेगी। ऐसे में स्टेडियम हजरतगंज या अशोक लाट चौराहा होकर गंतव्य को जाएंगे। सुशीला स्मृति वाटिका से कोई भी वाहन हनुमान सेतु नहीं जा सकेंगे। निषादगंज गोल मार्केट संकल्प वाटिका सिकंदर बाग चौराहा होकर गंतव्य को जा सकेंगे। इसके अलावा अलकापुरी तिराहा से कपूरथला चौराहा की ओर निजी व भारी वाहनों पर रोक रहेगी। वैकल्पिक मार्ग रहेगा अयोध्या रोड से वाहन वायरलेस चौराहा, पॉलिटेक्निक से विष्णुपुरी होते हुए जा सकेंगे। उसके अलावा क्लारकवत तिराहा से हनुमंत धाम की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे, और इनके लिए वैकल्पिक मार्ग होगा अलकापुरी ओवरब्रिज चौराहा नंबर 8 होकर जी यहां से आप जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ट्रैफिक बदला हुआ सा है तो सहयोग दीजिए, सुविधा आप ही को होगी। 6:31 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, शाम्यवध अनुग्रह है आज आपके साथ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: जी, जब प्यार में दिल गुम होता है तो कुछ पता नहीं लगता। देखिए, आपसे बात करते करते 6:43 हो गए और समय का पता ही नहीं चला। क्यों, आपके साथ भी ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमें पता है भाई। जहां सड़कों पे दिन में सन्नाटा नजर आ रहा है गर्मी के कारण, वहीं शाम को भीड़ अच्छी खासी नजर आने लगती है। खासकर चौराहों पे ये हाल कुछ ज्यादा ही नजर आता है। तो भाई उपाय ये है कि आप जब चौराहों पे पहुंचे, रेड लाइट देखें, तो इत्मीनान से अपने दिमाग को ठंडा रखें, गाड़ी को बंद करें ताकि आपके ईंधन जो है उसकी बचत हो सके। गुस्साने से कोई फायदा नहीं होता, इरिटेट मत हो, या साथ में पानी की बॉटल भी रखिए ताकि गर्मी में आपको थोड़ा सा राहत भी मिले। बाकी यही है कि 12 से 4 बजे तक निकलने से बचें, क्योंकि मौसम में गर्मी ज्यादा है। 6:43 हो गए, प्रोग्राम 44 हो गए और प्रोग्राम चल रहा है शाम में। आवाज अनुग्रह है आज आपके साथ, और साथ में कुछ बेहतरीन से ट्रैक और जानकारियां।
1: दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई।

जी दोस्तों 8:57 हो गए हैं और ये वो समय है जो कि कह रहा है, माफ करिएगा, 6:57। देखा, मोहब्बत में ऐसे ही होता है, जुबान फिसल जाती है और ऐसे ही होता है कुछ आपके साथ, समय का पता ही नहीं चलता। तो 6:57 हो गए हैं और ये समय कह रहा है कि ली जाए इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपसे हेलो कहने के लिए अनुग्रह एक बार फिर रहेगा आपके साथ। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रमुख अधिकारी बैठक में शामिल रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के क्रम में आज राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर दिल्ली से मेरठ नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो से भैंसाली स्टेशन पहुंचे। शाहजहांपुर के समस्त परिषदीय विद्यालयों में 13 से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 का आयोजन किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने देश भर की कई यूनिवर्सिटीज में फैले फर्जी डिग्री के संचालन में लिप्त गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के पीनना गांव में एक ट्रक से कार टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जेठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।

जी दोस्तों, 7:03 हो गए हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो एफएम, और आपसे आज हेलो कहने के लिए अनुग्रह आ चुका है आपके बीच। तो अगर आप भी कहना चाहते हैं हमसे हेलो और हमसे बातें करना चाहते हैं, साथ में सुनना चाहते हैं हमने मनचाहे गीत, तो कर सकते हैं हमें कॉल। हमारा नंबर है 0522, CSTD कोड है, नंबर है 2238845, और दूसरा नंबर है 2238852। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0522-223-8845, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 0522 कोड के साथ 2238852। इन नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जब तक कोई आता है हमारे पास, चलिए सुनाते हैं आपको ये ट्रैक।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग
3: जी। दोस्तों, खूबसूरत शाम के इस प्रोग्राम में मैं यानी अनुग्रह हूं आपके साथ आज हेलो कहने के लिए, और हमारे साथ और भी कोई जुड़ चुका है इस प्रोग्राम में, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो
4: हेलो
3: जी, अपना शुभ नाम बताएं। हेलो, हाँ जी, आपसे गुजारिश है कि आप हमें सुन रहे हैं, रेडियो सेट जो आपने ऑन कर रखा है उसको थोड़ा सा दूर कर लीजिए।

तो आपको आवाज हमारी क्लियर आएगी और हमें भी आपकी आवाज क्लियर मिलेगी। हेलो जी, काफी डिस्टरबेंस है, हमें आवाज मिल नहीं पा रही है आपकी। हेलो जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम है जिस वजह से बात नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल तो आपको बता दें कि ये थे शफीक जी जिन्होंने हमें कॉल करी थी और इन्होंने सुनना चाहा था ये गीत। तो सुना देते हैं ये ट्रैक और फिर इंतजार करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का, देखते हैं कौन जुड़ता है हमारे साथ।

0: अच्छा सच बताइए कि मतलब याद आने से पहले अगर कोई चला है तो उसकी याद ही कैसे आएगी, ऐसा हो सकता है? जी मतलब कहना आसान होता है कई बार कि तुम याद ना करो, याद आने से पहले आ जाया करो, डिमांड बढ़ जाती है मोहब्बत में सबकी। फिलहाल तो हमारे साथ कोई और भी आ चुके हैं, चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: सर जी हम ठीक है, आप बताइए कैसे
0: हैं? हम भी अच्छे हैं, आपकी आवाज़ सुन ली तो और अच्छे हो गए। अपना शुभ नाम बता दें।
1: मेरा नाम अल्तमस अली है, मैं गांव भंसरिया जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा
0: हूँ। जी अल्तमस जी, कैसे हैं आप?
1: सर जी हम ठीक हैं।
0: जी और मौसम कैसा है लखीमपुर का?
1: मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है छत पर।
0: हाँ मतलब हवाएं चल रही हैं कि नहीं, ये गर्मी ज्यादा है?
1: नहीं हवाएं बहुत तेज चल रही
0: हैं। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं तो राहत की खबर है कि आपके इधर हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं। जी अल्तमस जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में आप?
1: जी सर यही कहना चाहते हैं कि आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं।
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनने को।
0: जी वही बता रहे थे हम आपको, बताएं कि मतलब जब मोहब्बत होती है ना तो हर चीज मोहब्बत में अच्छी लगती है। आपकी मोहब्बत है हमसे, आपको हमारी हर चीज अच्छी लगती है। जी अल्तमस जी और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: वो तुमसे अच्छा कौन है,
0: और सुनाना किसको चाहेंगे?
1: सुनाना आपको सबसे पहले और सभी को।
0: और सभी को, और किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: सर जी जो लिसनर आपके पास कॉल करते हैं जैसे मोहम्मद फैज हो गए और मोहन सेठ हो गए, उन सभी को।
0: जी तो सभी लिसनर्स हमारे ध्यान से सुन लें कि भाई अल्तमस जी ने गाना सुनाना चाहा है आपको, तुमसे अच्छा कौन है। तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं अल्तमस जी की पसंद का ये ट्रैक।
1: थैंक यू सर
0: जी।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में

0: अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
1: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही

0: उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
2: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बरात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और आज अनुग्रह आज आपके साथ प्रोग्राम हेलो FM में। तो आप भी कर सकते हैं हमें हेलो, हमारा नंबर है 0522223845 और दूसरा नंबर STD कोड सेम रहेगा 2238852। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ और कह सकते हैं हेलो। तो फिलहाल कोई हेलो कहने के लिए हमारे साथ जुड़ चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो हेलो।
3: जी सर।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आज आपका।
3: सर आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं बबलू यादव, मोहन लालगंज लखनऊ, धनवा शाम गाँव है मेरा सर।
2: जी बबलू यादव जी, कैसे हैं आप?
3: सर मैं स्वस्थ हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आज भी स्वस्थ होंगे।
2: बिल्कुल, आपकी आशा बिल्कुल सही है, हम भी स्वस्थ हैं और आपकी आवाज सुन ली तो और स्वस्थ हो गए।
3: मैं माता रानी से आपके स्वस्थ जीवन की कामना भी कर रहा हूँ।
2: क्या बात है बबलू जी, हमारी तरफ से भी आपके लिए मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। तो बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप?
3: सर मैं कहना कुछ नहीं चाहता, बहुत गर्मी पड़ रही सर। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बस बता के आप काम करते रहे, लोगों को भी आप देते हैं अच्छी अच्छी जानकारियां सर, अब मैं क्या कहूँ।
2: बिल्कुल सही बात है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी नियमित पीते रहिए आप भी और खूब ध्यान रखिए। तो बबलू जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
3: सर मैंने ये 10 लाख फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, जो गरीबों की सुनेगा वो तुमको 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा।
2: क्या बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही, गरीबों की सुन।
3: अक्सर मैं भी थी गाना सुनता हूँ, कभी आपसे रेगुलर सुनता हूँ सर आपका।
2: जी बिल्कुल बबलू जी, आपकी आवाज और आपका अंदाज बता रहा है कि आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं और आपकी मोहब्बत जो है ना आपकी आवाज से साफ झलक के आ रही है। जी
3: सर, आपका अधिक समय ना लेते मैं दो नाम लेना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: नाम भी नहीं लूंगा।
2: हाँ हाँ नहीं, आप बिल्कुल नाम ले लीजिए, आप किनको सुनाना चाहेंगे गीत?
3: सर मेरे बड़े भाई विजय पाल यादव लखीमपुर से है, मेरे सत्यम भाई बहराइच से है, मेरी रिंकी सिंह छोटी बहन रायबरेली से, सर मेरे शिव भैया इंदिरानगर से है और सर मेरे श्री प्रकाश चाचा तिवारी उन्ना से। बहुत नाम है लेकिन सबके बीच बड़ी लंबी है सर, आपका नाम नहीं लूंगा।
2: जी लेकिन जिन्होंने भी मतलब आपका ये प्रोग्राम सुन रहे ना वो समझ गए होंगे कि आप नाम नहीं ले पाए लेकिन आपके दिल में प्यार बहुत है उन सबके लिए।
3: सर सबके नाम मेरे हृदय में चल रहे, सर के कॉल में मीडियम वाट पे भी सुनता हूँ सर, मैं FM रेनबो भी सुनता हूँ, विविध भारती भी सुनता हूँ, सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, सबके कॉल लगभग वही आते हैं।
2: जी बबलू जी, इतनी मोहब्बत के लिए बहुत। हाँ हाँ बताएं
3: सर, एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, जिसकी कॉल लग जाए कम से कम एक जैसे मीडियम वाट पे लगे तो उसको एक सप्ताह ना करे, और रेनबो पे लगे तो एक सप्ताह ना करे, और विविध भारती पे भी लगे तो एक सप्ताह कोई कॉल ना करे, अगले कॉलर जुड़े उनसे सुने और मैं कोई मेरी बात हृदय में आहट करती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन सभी लिसनरों से, आप सभी में।
2: जी तो बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा आइडिया भी है, तो उम्मीद करते हैं कई सारे लोग इस आइडिया पे अमल करेंगे। तो आपका गाना बिल्कुल तैयार है, चलिए एंजॉय करते हैं आपकी पसंद का ये ट्रैक। थैंक यू फॉर कॉलिंग बबलू जी।
3: ओके सर, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, नमस्कार।

0: 05222238845 पे यहाँ पे अनुग्रह आपकी बात सुनेगा। तो फिलहाल तो बात सुनने के लिए जी कोई सुनाने के लिए भी हमारे पास आ चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमें हेलो कहने के लिए। हेलो,
1: सभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: क्या बात है, आपका आपकी आवाज में बहुत ज्यादा प्यार है जी। अपना शुभ नाम बता दें।
1: सर हम रजनी चौरसिया नवाबों के शहर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: जी रजनी जी, कैसे हैं आप?
1: सर हम बहुत ही अच्छे हैं और आज आपके कार्यक्रम हम शाम 4 बजे से सुन रहे हैं सर।
0: क्या बात है, इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम, अच्छा लगा?
1: नहीं, आपके जो भी आपने गाने बजाए बहुत ही अच्छे लगे और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप पेश करते हैं सर।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रजनी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसको सुनाना चाहेंगे?
1: सर फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई, उसका एक गाना है दिल में सनम की सूरत, यह गाना सुनवा दीजिएगा। राजेश कुमार वर्मा जी हैं और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए सर।
0: जी रजनी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए, हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो आपका गाना बिल्कुल हमने रेडी कर रखा है, तो एंजॉय करिए ये ट्रैक रेडियो सेट पे। तो ये थे रजनीश जी, और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम से, हमसे कर सकते हैं हेलो। हमारे नंबर हैं 05222238845 और दूसरा नंबर है सेम स्टडी कोड के साथ 22388852। इन नंबर्स पे कॉल करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे

0: जी 90s का ये दौर जब गाने कुछ अलग ही अंदाज में पेश किए जाते थे और यकीनन हमारी जिंदगी से जुड़ जाते थे, ऐसा ही गाना था फिर तेरी कहानी याद आई। तो ये गाने सुनते सुनते ना जाने कितने लोगों को अपनी कहानी याद आ गई होगी। तो फिलहाल तो चलिए हमारे साथ कोई हेलो कहने के लिए आ चुका है हमारे साथ, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, शुभ नाम बता दें अपना।
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में प्रेम जी आपका।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, आपकी आवाज सुन ली और अच्छे हो गए।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: तो और बताइए और क्या कहना चाहेंगे हमारे आज इस प्रोग्राम में?
1: जी कार्यक्रम सुन रहा हूँ मोबाइल ऐप से में आपका। जी आप बड़े अच्छे श्रोता से बात कर रहे हैं, साथ में गाने भी बड़े अच्छे श्रोताओं के पसंद के।
0: जी जी तो जी, आप कौन सा गाना
1: सर? ये
0: जी
1: आकाशवाणी लखनऊ और आकाशवाणी रेनबो की, आप जैसा भी गाना है उसमें चूज करेंगे ना आपको वही गाना सर्च करके सुनाया जाएगा।
0: जी,
1: और जैसे भी आपका कॉल लगता है ना वहाँ पे तुरंत रिसीव किया भी जाता है, ये भी खासियत है इस कार्यक्रम में।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफें करने के लिए। बिल्कुल कोशिश हमारी यही रहती है कि मैक्सिमम लोगों से बातचीत हो जाए, लेकिन समय की कमी और लाइन में हो जाता है कई बार। तो फिलहाल तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर फिल्मों का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाने के बोले अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
0: और सुनाना किसको चाहेंगे?
1: जी हमारे दोस्त है भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा कानपुर से, पूनम जी, आशुतोष रविना संगीता जी, और आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी जी।
0: जी तो चलिए हम सब मिलके सुनते हैं प्रेम जी की पसंद का ये ट्रैक। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी।
1: जी थैंक यू सो मच
0: जी।

0: जी तो फिलहाल हमारे साथ और भी कोई श्रोता जुड़ चुके हैं, चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आज आपका।
1: सर जी एक मिनट।
0: जी हाँ जी,
1: अब आई आवाज
0: हमें आपकी आवाज आ रही है, बस थोड़ा इको करके आ रही है। आपने जो साउंड इफेक्ट के लिए रेडियो लगाया ना, उससे हमें हमारी आवाज मिल रही है।
1: अब देखिए सर।
0: हाँ अभी भी आ रही है।
1: आप ठीक है?
0: आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हालांकि इको आ रही है, आप अगर हो सके तो रेडियो सेट को थोड़ा दूर कर दिए, दूसरे कमरे में रख दिए, थोड़ा सा बंद कर दिए। हाँ हेलो। जी जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी
1: जी, आवाज़ सर आवाज़।
0: जी आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं अपना शुभ नाम बताएं।
1: जी सर, सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार
0: जी
1: और प्यार भरा सलाम
0: जी।
1: मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बोले सर।
0: क्या बात है फैजी, आपका अंदाज बिल्कुल निराला है।
1: जी जी,
0: और मुझे लगता है कि आपका वक्त बदलने वाला है।
1: जी जी
0: जी फैजी बताएं और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में आज।
1: जी सर, कहना चाहेंगे ये कि सर जी आपने जो प्रोग्राम किया दोपहर 4 बजे से 8 बजे तक आप रहेंगे तो सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छे लगे और आपका प्रोग्राम तो खास करके बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
0: क्या बात है, इतनी तारीफें मत किया करिए, हमारे लिए बोलना भी मुश्किल हो जाता है।
1: नहीं सर, तारीफ करने वाली है बात, तभी कर रहे हैं।
0: जी आपकी मोहब्बत है। फिलहाल तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे अभी बता दें।
1: जी सर गाना बताएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को डेडिकेट करना है वो भी बताएंगे।
0: बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि समय है कम, काम है ज्यादा।
1: गाना सुनना चाहते हैं। बस यही जमाने को बुरी लगती है, ये वाला सॉन्ग है।
0: ठीक है जी, और सुनाना किसको चाहेंगे?
1: सर
0: जी
1: जी, सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे अनुग्रह को आपको।
0: क्या बात है, थैंक यू, शुक्रिया।
1: मोहम्मद जावेद अख्तर भाई हैं
0: जी,
1: और मोहम्मद आसिफ भाई हैं
0: जी,
1: रिंकी पिंकी हैं, समा परवीन अप्पा हैं, गुलाब साहब हैं, साहिब अंसारी हैं, सादिया अंसारी हैं, यासिर हमीद भाई हैं, और बाबू अंसारी भाई हैं, और सुरभि सिंह हैं, और अकबर अंसारी भाई हैं चौखंडी वाले।
0: जी तो बिल्कुल।
1: हेलो सर।
0: हाँ जी बताएं।
1: सर जी कभी आइए हमारे गांव, डाल जाइए सर।
0: बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो बिल्कुल हम जो आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो आवाज के थ्रू हम आपके आप तक पहुंच ही रहे हैं, देखिए।
1: हेलो।
0: जी जी
1: मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कभी आइए, आपको जो है फल फ्रूट खूब खिलाएंगे, सब्जी बढ़िया ताजी ताजी खिलाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, और देखिए हम आवाज के थ्रू आप तक पहुंच ही रहे हैं, और जल्दी से आपका गाना भी सुना देते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ना।
1: जी जी जी सर, आप थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फैज जी। तो उनकी पसंद का ये ट्रैक एंजॉय करिए, तुम जो हंस हंस के बात करती हो।

जी, जिनको आप चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आप ही तक बने रहें, तो वही गाना कुछ ऐसे ही कहता ना, तू जो हंस हंस के बात करती है यही बात जमाने को बुरी लगती है, जमाने को बुरी लगेगी भाई, कुछ ऐसे ही होता है। तो फिलहाल तो हमारे साथ आज लास्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो,

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं सर। जिला औरैया ग्राम पुराना चल्ला से गगन जी कमल बोल रहे सर।
1: कमल जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ सर
1: जी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आवाज में, तो बताइए और क्या कहना चाहते हैं, कैसे हैं आप, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक?
0: हाँ सर, तबीयत सही है। आप कैसे हैं सर?
1: हम भी अच्छे हैं, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए।
0: आज सर भागवत का भंडारा खाने आए हैं।
1: हाँ जी,
0: आज भंडारा खाने आए हैं, यही कॉल हो लाइन पर।
1: भंडारा खाने आए? बिल्कुल, अब तो रात हो गई, अब तो आएंगे तो मिलेगा भी नहीं ना कुछ।
0: मिलेगा
1: जी जी बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी बताएं गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: भरोसा सुनूंगा, आज की मुलाकात बस इतनी।
1: जी आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, कल चाहे बातें जितनी।
0: हाँ सर
1: जी, और किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
0: आपको सर और रामचंद्र कमल को
1: जी,
0: जितने सुन रहे हैं सभी को।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी पसंद का ट्रैक बिल्कुल तैयार है, तो एंजॉय करिए अपने रेडियो सेट पे। ओके कमल जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। नमस्ते जी। तो ये थे कमल जी, जिनकी पसंद का ट्रैक बिल्कुल तैयार है, और इस ट्रैक के थ्रू हम भी यही कहना चाहेंगे कि आज की मुलाकात बस इतनी, और चलते चलते और क्या कहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ गर्मी बहुत है, अपना भी ध्यान रखिए, साथ में पशु पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि उनके लिए आसरा आप ही हैं। हो सके तो पक्षियों के लिए आप पानी भर के रखिए छतों पे, बालकनी पे, और पशुओं के लिए भी रोटी वगैरह जो भी है, पानी वगैरह आप खास तौर पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करिए। और अनुग्रह चलता है, फिर किसी और दिन मिलेंगे आपसे, फिलहाल तो कोई और है बिल्कुल तैयार अगले प्रोग्राम के साथ, हंसती खनकती आवाज़ के साथ। कौन है वो, ये सस्पेंस क्रिएट रहने देते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

सिन्हा ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन गया जाएगा। आज बस्तर में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल रहे। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वाराणसी में केंद्रीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार मौजूद रहे। बैठक में धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को और मजबूत बनाने, पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन तथा पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय पर्यटन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देशी और विदेशी पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा देश में एक बार फिर सर्वाधिक गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के दौरान प्रदेश में अगले दिन लू से भीषण लू का रेड अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक उष्ण रातें रहेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम एवं 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जनपद के इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर MK बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। MK बंधानी हींग

जिक्र जब जब होगा मोहब्बत का तो नाम तेरा आएगा, जिक्र जब जब होगा मोहब्बत का तो नाम तेरा आएगा, हर महफिल हर नज़र हर लब से पैगाम तेरा आएगा। रात के 8:21 का वक्त, महफिल आबशार में इस वक्त आप हैं, आपकी मेज़बान आपकी दोस्त रिचा के साथ।

इसीलिए शायर ने ठीक ही कहा है कि गजल के बारे में कहा जाए जितना उतना ही कम है। गजल वो खुशबू है जो कागज पर बिखर जाए तो शायरी और दिल में उतर जाए तो इश्क बन जाती है, वो इश्क जो आपको उसके जैसा बना देती है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स

0: शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग। Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
1: तो यस मेरे ऑल डियर फ्रेंड्स, हटकर लखनऊ के 100.7 FM रेंज पर वापस आपके साथ आपसे मिलने हाजिर हो चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त आपकी अनुषा, लेकर आपके लिए आपका मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे। तो लहराने दीजिए रेनबो कैफे का परचम और झूमने दीजिए आरा, बलिया, दिल्ली, छपरा, हरियाणा, गुजरात, मद्रास, सब जगह, उसके साथ साथ आप भी, क्योंकि आपका होना है बेहद जरूरी। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके बिना हमेशा रह जाती है बात अधूरी। और लेकर आपका ये फेवरेट शो हम कहाँ मिलेंगे आपको, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, जहाँ हमें है आपके ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार। तो बस आइए जुड़िए, आपका होना है हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत बहुत जरूरी। खुशामदीद, वेलकम, गुड इवनिंग एंड यस, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे रजा।

तो बहरहाल रात के 9:05 का वक्त हो चुका है. आपको पता है कि आपका रेनबो कैफे बिल्कुल आपके रेडियो सेट्स पर इस वक्त आपके साथ है. तो जहां कहीं भी आप आइए, फिर आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आपके ईमेल्स का मुझे है बेसब्री से इंतजार. जाहिर सी बात है आपका फेवरेट शो है जिसे आप मंडे एंड सैटरडे सुनते हैं, और इस वक्त यकीनन हम हैं आपके साथ.

हाँ तो ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाकई कोई जादू टोना है, कोई तो मंत्र है। जब रेनबो कैफे शुरू होता तो आपके इतने सारे ईमेल्स आने शुरू होते हैं कि लगता है अरे बाप रे कहीं ऐसा ना हो कुछ भी छूट जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी भी ईमेल को छूटने नहीं देंगे, बस गाना खत्म होगा वापस आप तक लौटेंगे। आप यूं सुनते रहिए, जुड़े रहिए आपका अपना FM रेनबो, आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ।

हमने आपको इनवाइट किया और मेरे साथ बाबू अंसारी जुड़ चुके हैं देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। हमेशा की तरीके से आपने लिखा है कि आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हन हनुआ लग रहा है, ऐसे आपने लिखा जो आप लिखते हैं। और उसके बाद आपने बड़ा प्यारा सा आपका रेडियो सेट भेज दिया है, आपका GIF जिसे बोलते हैं, और आप लिख रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है इस वक्त आपको यहां पर सुनते हुए। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आप हमें सुनते रहें और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप रहते हैं, हर बार मैं इस बात को कहती हूं आपसे कि आप जब होते हैं ना तभी लाइफ में मजा आता है, चार चांद लगते हैं, वरना तो क्या लाइफ बस यूं ही चलती रहती है। आपके ईमेल्स आते रहें और हम उन्हें वापस पढ़कर आप तक पहुंचाते रहें, इससे बेहतर तो कभी कुछ होता ही नहीं है। गुलफ्सा सिद्दीकी का भी ईमेल है और आप लिख रही हैं संडीला से, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। आपने लिखा कि अपने घर की छत पर हूं, हवा चल रही है। चलो ये अच्छी बात है कि आप छत पर हैं, हवा चल रही है। जब रजनीगंधा के सफर में हम पहुंचेंगे ना तब ये हवा और ये छत का जो आलम है ये बहुत काम आने वाला है। अच्छा वो आपने हमको बता दिया और यहां भी हम भी इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल बैठे हैं कि बस आपका साथ बना रहेगा। आप लिख रही हैं खाना हम खा चुके हैं और आराम से इस वक्त आपके प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और आपके साथ सबिया अंसारी और सजिया अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी और महक सब मिलकर इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा कहती हूँ जब साथ बैठते हैं सबके सब तब वाकई मजा आता है जिंदगी का। फिलहाल मनोज विश्वकर्मा भी हैं मेरे साथ और लिख रहे हैं रेनबो कैफे प्रस्तुत करने वाली मीठी आवाज को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। इतनी खूबसूरती के साथ आपका ईमेल हम तक पहुंचाने के लिए आपने लिखा कि आबशार सुना, बहुत अच्छा लगा आपको रेनबो कैफे का, आप मजा ले रहे हैं काम करते करते। और छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम ताराशरीफ से इस वक्त आप हमारे साथ हैं। कृष्णकांत सिंह जी भी आ चुके हैं हमेशा की तरह, बड़ा प्यारा सा ईमेल है आपका और आपने लिखा कि रात के 9 बजे प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है तन मन थिरक उठता है, ऐसा ही बताइए। तो कोशिश तो यही रहती है कि ये जो तन और मन है ना ये सब थिरके, बस धन बचाइएगा, ऐसा ना जेब में सिक्के पड़े उछल उछल करके बाहर आ जाए, फिर दो चार लोग और आ जाए उसको

लेने के लिए, अरे अरे देखो सिक्के गिरे पैसे गिरे, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है. आप लिख रहे हैं कि हर मूड के ढिंचक म्यूजिक इस प्रोग्राम की जान होते हैं और हमारे होस्ट आजेज भी इस प्रोग्राम में खूब खूब इंजॉय करते हैं, नो डाउट. ये तो बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो आप तक कैसे उस चीज़ को पहुँचाएंगे ना, हम जब फील करेंगे तभी तो आप तक उस एहसास को पहुँचा पाएंगे. और आपने लिखा कि ऐसी ही शानदार प्रस्तुति के लिए एफएम रेनबो हर श्रोता के दिल में लखनऊ की म्यूजिकल धड़कन बन के धड़कता है, इसीलिए कहते हैं साथ साथ बोलिए कि आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ. और आपने हमें कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल भेजा, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस खूबसूरत प्यारे से ईमेल के लिए. रॉयल अमित हैं, लिख रहे हैं बहुत खूब. क्या बहुत खूब. अभी तो हमने रजनीकंदा शुरू भी नहीं किया, आपने लिख दिया बहुत खूब, चलो अच्छी बात है. इन एडवांस आपकी शुभकामनाएं मिल गई, ये बहुत ज़रूरी होता है जब कोई आपसे ये कह दे गुड लक बेस्ट ऑफ लक, आप किसी ऐसे काम पर जा रहे हो तो वाकई ये बहुत काम आती हैं चीज़ें. पता नहीं आपने इस चीज़ को कभी महसूस किया है या नहीं, ऐसा होता है. हमने तो इस चीज़ को बड़ा अच्छे से महसूस किया, अभी हाल ही में किया जब शो के लिए आ रहे थे ना, तब हमसे किसी ने कहा गुड लक, हमने कहा बस ठीक, इसी की ज़रूरत थी, और वही गुड लेकर लक लेकर हम आपके साथ वापस आ गए. वापस ईमेल आया है रॉयल अमित यादव जी का, लिख रहे हैं कभी आप दोनों एक साथ आओ ना प्लीज़, कौन दोनों, अच्छा आपकी अंजू मैम, हाँ जल्दी आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी क्या करें, वो मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं और हम रात में आपके साथ, आपने लिखा धमाल मचा रही हैं, हाँ तो ये हम मान सकते हैं शायद, ऐसा हो, कितना है कितना नहीं ये आप हमें बताइएगा, ठीक है. और आपने हमें लिखा है कहाँ से ये बता दे, हम विलेज बाराबंकी से हैं, आपका गनगंज रोड से, और आपके साथ श्रिया यदुवंशी भी हैं. अच्छा, रॉयल अमित यादव इस आईडी से श्रिया यदुवंशी ने हमें ईमेल किया, तो श्रिया थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए. बस आ जाना चाहिए, किसके ईमेल से आए ये अलग बात है, आप जुड़ गए हैं साथ में ये जरूरी है. रेनू आ चुकी है, रेनू देवी गुड मॉर्निंग लिख रही हैं आप फिलहाल, ये गुड इवनिंग है, हाँ हाँ गुड इवनिंग ये, सॉरी हमने पढ़ने में गलती कर दी थी. और लिख रही हैं दुकानें उनकी भी लुट जाती हैं जो दिन भर में न जाने कितने ताले बेच देते हैं, और आपकी की तरफ बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी तो यहाँ भी हो रही है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ भी और यहाँ भी है. और हसनपुर और रास उन्नाव से आपने आपका ईमेल किया, थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए. बस ये सिलसिला आप यूं ही जारी रखिए. 9:18 का वक्त हो चुका है, रेनबो कैफे इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर, वो रेनबो कैफे जहाँ पर आपके पैर, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो शो शुरू होने से पहले ही आप अभी देखो ना, कृष्णकांत सिंह जी कह रहे थे कि नाचना गाना शुरू कर दिया, तो हमने कहा कि पैसे सिक्के बचा लीजिए बस, बाकी तो सब बढ़िया है. फिलहाल गाना आप तक लौट करके आएंगे, फिर आपके ईमेल्स, बहुत सारे गाने, रेनबो कैफे आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर.

अच्छा इनको जहाँ जाने नहीं जाने दीजिए, लेकिन हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरे साथ जुड़े रहे, आपके अपने 107 FM रेनबो के साथ, क्योंकि हमेशा ही कहती हूँ आप होते हैं तभी मजा आता है। देखो सुल्तान रजा साहब का भी ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं रॉकिंग रचा आपको प्यार भरा नमस्कार सलाम, थैंक यू सो वेरी मच इतने खूबसूरत अंदाज में आपका सलाम हम तक पहुँचाने के लिए। और आप आगे आप लिख रहे हैं कि मंजिल दूर है किनारा क्यों नहीं आया, मंजिल दूर है किनारा क्यों नहीं आया, आज दोस्त SMS तुम्हारा क्यों नहीं आया, तुम भूल गए नंबर या आपको मिल गया हमसे भी कोई प्यारा। अब देखो इसके पीछे तो बड़े सारे राज हैं, ये है इसका खुलासा हम यहाँ कर नहीं सकते। हाँ कह भी सकते हैं कोई बहुत प्यारा मिला, वही जैसे जो आप है ना वैसे कोई प्यारा, हालांकि ये बात आप भी जानते हैं कि आपसे प्यारा तो कोई वैसे भी नहीं है। फिलहाल आपने ईमेल किया इसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ आपके भाई इकबाल रजा, अफजाल रजा और दोस्त मोनिश रजा, सादिक रजा, जीशान रजा और नदीम, ये सब मिलकर मुझे सुन रहे हैं और साथ में आपने बड़ी प्यारी सी शायरी भी हमेशा की तरह लगा के भेजती है कि इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, अर्ज किया है कि दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला इंसान अकेला रह गया। अब वैसे हम इसका बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे क्योंकि आपके साथ हम हैं ना, और जब हम हैं तो फिर काहे का गम है, आप बस चुपचाप आंखें बंद करके इंजॉय करते, नहीं आंखें बंद मत करिए अभी, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे डांस करना है मेरे साथ, और आंख बंद करके सुनेंगे तो कहीं गिर वर जाएंगे तो फिर नाम हमारा लगा देंगे, ये हम चाहते नहीं है बिल्कुल भी। शिव सदाशिव का ईमेल है मेरे पास और लिख रहे हैं कि नींद कहती है सो जाओ वरना सुबह उठ नहीं पाओगे, नींद कहती है सो जाओ वरना सुबह उठ

पाओगे, पर रेनबो कैफे कहता है 9 बज गए हैं, उठ जाओ बाबू नहीं तो पछताओगे। एकदम सही बात आपने बोली, इसीलिए पहले से बता देते कि भैया रेनबो कैफे है मंडे नहीं ट्यूसडे एंड सैटरडे, और यहाँ पर आपका रहना बेहद जरूरी होता है। कहाँ से ईमेल किया ये बताते हैं आपको, आपने हमें जिला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है, पोस्ट मुंडेरी। थैंक यू सो वेरी मच सदाशिव जी आपके ईमेल के लिए, आगे भी आपके ईमेल का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। मोनू सेठ आ चुके हैं, लिख रहे हैं पॉप टाइम, नहीं नहीं नहीं मोनू सेठ जी रेनबो कैफे है, आज ट्यूसडे है ना, कैसे भूल गए आप। और आपने लिखा कि गाँव भी हिलत बा क्योंकि रेनबो कैफे बजट बा, जाहिर सी बात है ये जो आप अपने अंदाज में लिख करके भेजते हैं ना, हमें थोड़ी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन हमें पता है आपने लिखा हम पढ़ भी देंगे, सही सही जैसा आपने लिख करके भेजा है। विनीत कुमार जी आ चुके हैं हमारे साथ, और आपने हमें अर्थापुर और रामगढ़ से आपका ईमेल भेजा है, सीतापुर से रेनबो कैफे आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। सुपरहिट लाजवाब प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, गाने पसंद आ रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं ये अच्छी बात है, और आप जब सुनते हैं आपके ईमेल्स वापस आते हैं और फिर जवाब बताते हैं, ये अच्छा वो बुरा, तो हमें लगता है कि चलो अब इसको ठीक कर लेते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। फिलहाल अभी अगला ईमेल किसका है ये देख लेते हैं। मेरे पास नीलू शर्मा हमेशा की तरह हैं रूपपुर चंदेला से, और लिख रही हैं कैसे हैं आप, मेरे ख्याल से मैं ठीक हूँ, और आपने लिखा है कि आज अंदाजा लगा लिया था कि आप आएंगी। देखो इसको कहते हैं दिल से दिल को रहा होना, और आपको शायद ये अंदाजा इसीलिए लिया क्योंकि आप हमें दिल से चाहती हैं, और आपको लगा कि हम आ गए, और आपने कहा कि बबीता से और रोशनी से आपने इस बारे में बात की, और देखो हम आ गए, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। जीमेल में कब आएंगे गुड मॉर्निंग में, हमें भी इंतजार है, जिस दिन आएंगे हम आपको सुनाई पड़ जाएंगे। फिलहाल तो यही सुनिए, अभी 9:33 का वक्त है। रवि कांत का भी ईमेल मेरे पास है, और लिख रहे हैं कहां से, दिल्ली परिवहन विभाग DTC से, और लिख रहे हैं एकदम गर्दा उड़ा रखे हैं, हम बस आप तक गाने पहुंचा रहे हैं, आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने हमें लिखा DTC दिल्ली परिवहन विभाग से, बहुत शुक्रिया रवि जी आपके ईमेल के लिए। वकील अहमद भी आ चुके हैं, आपकी आवाज अच्छी लगती है सच बताइए। गाने अच्छे बज रहे हैं, गर्मी बहुत तेज है, नो डाउट वो तो है, बहुत ज्यादा है, और अभी देखिए रेड अलर्ट और फिर ऑरेंज अलर्ट भी है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, है ना। आपने लिखा है कि आम के बाग से ना आए हैं, खाने जा रहे हैं, क्या खाना खाने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है खाइए, अभी तो हम फिलहाल यहाँ रहने वाले हैं 12 बजे तक आपके साथ, उसके बाद ही जो होगा सो होगा, अभी तो फिलहाल रेनबो कैफे है। और आपने लिखा है आपके साथ सुन रही है साजिया, शमा, रिंकी, पिंकी और महक, तो सभी से बोलिए ऐसे ही बिल्कुल बैठे रहे सबके साथ, सुनते रहे हमें आपके अपने 107 FM रेनबो के साथ। अगले ईमेल की तरफ बढ़ेंगे, चलो अच्छा पढ़ देते हैं, उसके बाद आप तक गाना पहुंचाएंगे। रोशनी का ईमेल आ चुका है, मुझे बड़ी शिकायत रहती है रोशनी इतनी देर से क्यों आती है भाई, आपसे हमेशा कहते हैं आप जब आती हैं तो रोशनी बिखरती है हमेशा आपके नाम के साथ, इंतजार करवा देती हैं आप, जल्दी आ जाए करिए। आपने लिखा है गजल का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, और आज की सारी गजलें बहुत लाजवाब थी हैं सच में। आप लिख रही हैं कि आप बोल रही थी जल्दी आया करो तो मैं आ गई हूँ कहाँ, देखो मैंने अभी आपका ईमेल पढ़ा, और आपने लिखा है कि रात 12:02 तक आपका साथ निभाने को बिल्कुल तैयार है, पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लिख देती हैं कि रात के 12:02 तक आप मेरे साथ रहेंगी, दिल को सुकून आता है कि हम अकेले नहीं है, यूं ही नहीं बस बोले जा रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, और उसमें भी रोशनी है जो बहुत देर तक हमें सुनने वाली है, थैंक यू सो वेरी मच रोशनी। और आपका हमेशा की तरह ईमेल है ग्राम व पोस्ट पमना तहसील सफीपुर जिला उन्ना से, थैंक यू सो वेरी मच, चंडीगढ़ में है इस वक्त, आप वहां से प्रोग्राम सुनती हैं, और लिख रही हैं अर्ज किया है स्पेशल हमारे लिए, क्या अर्ज किया है सुन ले, बस इंतजार रहता है आपके आने का, कभी सब्र से तो कभी बेसब्री से, तो बस ये इंतजार बना के रखिए, कहते हैं इंतजार का जो मजा है ना बहुत अच्छा होता है, सब्र का फल वैसे भी बहुत मीठा माना जाता है, लेकिन अब आपके सब्र को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए ले चलते हैं वहां जहां से अगला गाना बिल्कुल हमने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। इट्स 9:35 बाय स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज आरजे रिचा विद यू ऑल गाइस, आपके अपने 107 FM रेनबो पर, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड Keep listening to 100.7 FM Rainbow.

अच्छा भले ही वहाँ ओढ़नी सर सर सरक रही हो, लेकिन यहाँ तो भर भर भर के ईमेल्स आ रहे हैं आपके, इतने सारे ईमेल्स मेरे पास हो गए। चलिए वापस आपके ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद कुमार दुबे जी का ईमेल आ चुका है और लिख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ इस वक्त आप इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच हमेशा की तरह आपके ईमेल के लिए। लिख रहे हैं कि रेनबो कैफे प्रोग्राम आप पसंद करते हैं, रही बात पॉप टाइम की और रेनबो कैफे की, तो यहाँ एक से बढ़कर एक हिट गाने सुनने को मिलते हैं, नो डाउट, तभी तो कहती हूँ कि आपका फेवरेट शो है। कहीं मत जाया करिए, सिर्फ और सिर्फ यहीं जुड़े रहा करिए, उसके बाद देखिए आपको बड़ी सारी वैरायटी यहाँ मिल जाती है। आपने लिखा है कि श्रोताओं की दिलचस्प टिप्पणी भी अच्छे ढंग से हैंडल की जाती है। दीपा, तन्वी, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, अरविंद दुबे, आप सभी सुन रहे हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। विजय पाल यादव का ईमेल लिख रहे हैं, मेरा ईमेल भी ढूंढ लीजिए। हाँ हमने ढूंढ लिया, इतने सारे ईमेल्स के बीच में कहीं नीचे चला गया था, लेकिन हम उसके निकाल कर वापस पकड़ कर ले आए हैं। और आपने लिखा कि आपको शो अच्छा लग रहा है, गजल का प्रोग्राम आप शायद अच्छा लगा, इस वक्त आप रेनबो कैफे सुन रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है। और आपने लिखा कि आज आप आए थे यहाँ पर, हम आपसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई क्योंकि हम तो रात में आए थे, तो कोई नहीं फिर किसी दिन किसी रोज़ ज़रूर से मुलाकात होगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा मानते हैं। इत्तेफाक देखिए ज़िंदगी में हो जाते हैं कई बार, आप सोचते हैं कुछ और है और लाइफ में कुछ और होता है, और फिर वही बड़ा खूबसूरत सा इत्तेफाक बन जाता है। बहरहाल आप हमें सुन रहे हैं ग्राम पोस्ट ज़िला खीरी से, और आपके साथ हैं बबलू यादव जो प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। गुलफ्सा वापस आई है मेरे पास और लिख रही आए हाय आपने लिखा बहुत ही मजा है आ रहा है इस वक्त और आपको मस्त गाने बज रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, धन्यवाद शुक्रिया, दिल लूट लिया आपने, लूट लिया आपने, अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब आप कुछ ऐसा लिख देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने जो कोशिश की वो पूरी हो गई, ठीक ठाक जाके तीर निशाने पर लग गया है, ऐसा हमको लगता है। फिर तो एम के राज भी आ चुके हैं, एल एम पी यानी लखीमपुर खीरी से, और आपने लिखा है जिला लखीमपुर खीरी से आप हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, हर घंटे बहुत ही लाजवाब रहता है और इस घंटे हर रोज आपका कार्यक्रम लाइव सुनता हूँ। देखो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी, लाइव प्रोग्राम आप सुनते हैं, अच्छा बुरा गलत सही, और आपके साथ हम सब यहीं होते हैं और आप तक चीज़ों को पहुंचाते हैं। उसके बाद आपने लिखा है कि आवाज़ सुनकर दिन बन जाता है, धन्यवाद, हमारी आवाज़ सुनकर अगर ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती, किसी तो काम आ रही है हमारी आवाज़, किसी का दिन बना रही है, तो इससे बेहतर बात और क्या ही हो सकती है। आपने लिखा है कि बालाजी के दर्शन करने मंदिर आए हैं और महाराज से आप सभी श्रोताओं और आरजे टीम के लिए सुख शांति खुशहाली की प्रार्थना की, इससे बिल्कुल अच्छा किया आपने। और कहते हैं ना कि जब दिल से कोई दुआ मांगी जाती है तो वो पूरी हो जाती है, उम्मीद करती हूँ कि आपने दिल से मांगी है दुआ, ये ज़रूर से पूरी होगी। जीशान खान है हमारे साथ और आपने हमें संडीला से ईमेल किया है और आप लिख रहे हैं कि सऊदी में हैं इस वक्त, वहाँ से सुन रहे हैं। देखो भला हो ये ऑन AIR ऐप का कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव रेडियो के जरिए जुड़ सकते हैं, बाकी FM तो है ही आपके साथ, और ये जो दूर दराज से, तभी तो हमने कहा था बस लहराने दो रेनबो कैफे का परचम यहाँ से वहाँ तक, दुनिया में देश में जहां जहां कहीं आप हमें सुन रहे हैं, तो रेनबो कैफे की जो आवाज़ है ना, इसकी जो गूंज है वो उस दूर तक पहुंचनी चाहिए। और आप लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आती है आपकी आवाज़, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अरे वाह क्या बात है, आवाज़ लिखा इन्होंने आप लिख रहे हैं मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से सभी सुनने वालों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं एडवांस में बकरा ईद की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी इन एडवांस, आपने ईमेल किया इसके लिए भी आपका बहुत दिल से शुक्रिया। जावेद अख्तर साहब आ गए, और जब ये ऐसे कुछ नाम आते हैं ना तो हमारी आवाज़ में अपने आप एक चहक आ जाती है और फिर हमको लगता है कि ज़ोर से पढ़ दें, जावेद अख्तर साहब हैं अभी भी हमारे साथ। और आप लिख रहे हैं कि इस वक्त थोड़ी देर से जुड़ पाए हैं लेकिन शादी में गए थे, लेकिन कार्यक्रम आप सुन पाए, जितना भी सुन पाए, और अंदर से तबीयत मचल रही थी सुनने के लिए चलो अच्छी बात है। और रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने आपका ईमेल लिखा है, शमशूल, कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन भी हैं आपके साथ। आयुषी मिश्रा हैं, क्या लिख रही हैं चलो पढ़ते हैं। गुड इवनिंग लिखा है आपने, आपने लिखा है कि

राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज अच्छी लग रही है, धन्यवाद शुक्रिया इसके लिए, क्यूट है, ये अच्छी वाली लाइन आपने लिखी, सभी लिखते हैं अच्छी, आपने लिखा क्यूट है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे क्लास करके आए थे, रेस्ट कर रहे थे और अब खाना खा लिया है और साथ में FM रेनबो सुन रही हैं। बस सुनिएगा, रात के 12 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। और आपने हमने जिला उन्नाव न्यू अशोकनगर से आपका ईमेल भेजा है, थैंक यू आपके ईमेल के लिए आयुषी। महादेव है ना, महादेव नहीं, माधव राज भी हैं हमारे साथ। और अच्छा, काफ़ी कुछ लंबा ईमेल लिखा है तो 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, वापस पढ़ के तब आप तक पहुंचा देंगे ताकि कुछ गलत ना हो जाए जाने से पहले, ये हमारा वादा है। अवधेश कुमार जी ने भी ईमेल किया है और लिख रहे हैं कि रेडियो हमारे जीवन का अनूठा और सुलभ हिस्सा है और यहाँ संगीत सुनना, जुड़ना वाकई दिल को बहुत तरोताजगी देता है। अब आपने हमें बाराबंकी माधोपुर से आपका ईमेल किया है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। सुधांशु जी का ईमेल आ गया, लिख रहे मेरा नया रेडियो आया, वाह वाह क्या बात है, आपने उसकी एक तस्वीर भी खींचकर मैं भेज दी, बस अब इसी में फुल वॉल्यूम करके हमें सुनिएगा और फिर देखिएगा कितना मजा आएगा जब वॉल्यूम होगी फुल ऐसे ऐसे और उस पर सुनाई पड़ेंगे आपको हम फुल वॉल्यूम के साथ, तो फिर मजा आएगा। शो होगा रेनबो कैफे, साथ में होंगे हम और आपका रेनबो होगा आपके साथ और फिर क्या ही कहने, आप हमें खुद बताएंगे कि आहा बड़ा मजा आया आज। रणवीर गुप्ता जी आ चुके हैं और आपने लिखा है सबको नमस्कार, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं और आपके साथ रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ये सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए फिलहाल अभी जो है 9:53 का वक्त हो चुका है, एक गाना आप तक भेजे देते हैं, इस गाने को सुनिए और उसके बाद वापस लौटेंगे, बचे हुए ईमेल्स और वो जो हमने ईमेल बोला था ना अभी बड़ा लंबा सा है उसको पढ़ने के लिए वापस आऊंगी। फिलहाल गाना सीधा राजस्थान से।

एग्जैक्टली जब आपके ईमेल्स हमारे पास आते हैं ना, इतने प्यार से भरे ईमेल्स आते हैं, तो यकीन मानिए कहीं हमारा भी जो है कहीं क्या ही बोलूँ, 9:56 का वक्त हो चुका है, लेकिन वो ईमेल जो मैंने आपसे कहा था महादेव राज जी का, उसको पढ़ना वाकई ज़रूरी है। आपने लिखा, यूं तो गुजर जाता है दिन मसरूफियतों में अक्सर, मगर आपकी आवाज़ आते ही शाम हसीन हो जाती है। आपका एक ऐसा दीवाना श्रोता हूँ जिसके दिन की शुरुआत ढलती हुई शाम आपके स्टेशन की शुरू के बिना अधूरी है, नो डाउट। तभी तो कहती हूँ रेनबो से आप जुड़े रहिए, रेनबो से बेहतर आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं। लखनऊ की नज़ाकत, तहजीब और आपके आरजेस का खूबसूरत अंदाज सीधे बहराइच तक हमारे दिल में उतर जाता है। बहराइच ही नहीं, दुनिया के सारे कोनों में पहुंचते हैं हम, और जब ये आवाजें गूंजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी भाग दौड़ के बीच सुकून का झोंका आ गया है। बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से ईमेल के लिए माधव जी, आपने वाकई दिल से लिखा है और दिल से इसके लिए आपका धन्यवाद। 9:56

55 मिनट का वक्त हो चुका है, शो को वाइंड अप करने की है बिल्कुल बारी। वो तमाम सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक एक बार जल्दी से उनका भी नाम ले लेते हैं। अच्छा, जगदीश राज भी आ गए और लिख रहे हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, गाने आपको पसंद आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आपका ईमेल है। और इसके साथ साथ सुमित हैं, डॉक्टर सुमित भी हैं, और आपने हमें उत्तराखंड से उधम सिंह से आपका उधम सिंह नगर से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, स्टाइल और तरीका, आप आवाज़ सब अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और आप सुनते रहें, जुड़े रहें। सुल्तान रजा ने वापस बहुत ढेर सारा धन्यवाद भेजा, थैंक यू सो वेरी मच सुल्तान जी। आकाश जी हैं मलिहाबाद से, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। और आगे भी आप अपने ईमेल यूं ही पहुँचाते रहें, हम तो ये चाहते हैं। जय भी है हमारे साथ होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, और आपको गाने पसंद आ रहे हैं तो बस गाने ऐसे ही पसंद आते रहे और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और ये जो दिलों से दिलों का रिश्ता है ये यूं ही बना रहे, इतनी सी हमारी आपसे दरखास्त है। तो 9:57 का वक्त रेनबो कैफे को वाइंड अप करने की है बारी, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगला घंटा भी हमें आपका रहेगा बेसब्री से इंतजार, तब जब दिलों के किस्से मोहब्बत की बातें फिजाओं में खुलती हैं, रजनीगंधा जो हम लेकर के आते हैं। तो कहीं नहीं जाना है आपको, जुड़े रहना है आपके अपने 100.7 FM रेनबो के साथ। यस, मैं रहूंगी आपके साथ।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की संकल्पना का साकार रूप हम सभी को प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बस्तर छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह महत्वपूर्ण बैठक इसका नवीनतम उदाहरण है। अतीत में चुनौतीपूर्ण रहा यह अंचल आज राष्ट्रीय नीति निर्धारण की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद पर आधारित टीम भारत का विजन दिया है। इस दिशा में क्षेत्रीय परिषदें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री आज बस्तर छत्तीसगढ़ में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए धाम परिसर में व्यापक व्यवस्थाएं लागू की हैं। वर्तमान में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के बावजूद प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा धाम परिसर में विभिन्न स्थानों पर RO वाटर कूलर लगाए गए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर बड़े मटकों में ठंडे पानी की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को निरंतर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मंदिर कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसके साथ ही ORS घोल और ग्लूकोज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जनपद शाहजहांपुर के समस्त परिषदीय विद्यालयों में 13 से 19 मई 2026 तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आयोजित इस 7 दिवसीय

शिविर का उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में बहुभाषिकता को बढ़ावा देना और उन्हें देश की विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों से जोड़ना रहा। जिला भाषिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में गतिविधियों को जनपद की स्थानीय भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए रोचक तरीके से संचालित किया गया। जनपद सुल्तानपुर में आगामी गंगा दशहरा मेला एवं ईद उल जुहा बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चारू निगम की संयुक्त अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष तथा पीस कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में त्योहारों के दौरान साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, चिकित्सा सहायता एवं कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
4: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

वैसे सच है ये बात, जब जब बाहर कभी ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं ना, तो अकेले नहीं आते, अपने साथ साथ किसी खास की याद भी ले आते हैं। वो जो आपके दिल के बेहद करीब हो, वो जो आपके दिल में बसने वाले उन अरमानों के करीब हो जिसे आप प्यार, इश्क, मोहब्बत कहते हैं। तो रात के 10:09 का वक्त, आपके साथ वापस मैं आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने कार्यक्रम रजनीगंधा में। रात का ये पहर, हवा में हल्की सी सिहरन और आपके दिल की धड़कनों की गूंज जो सीधा आकर टकराती है उस दरवाजे से जहां मोहब्बत की खुशबू रजनीगंधा बनकर बिखरती है। वो रजनीगंधा जहां बातें हैं दिलों की, किस्से हैं मोहब्बत के, और उन्हीं किस्सों और बातों को समेट कर वापस लेकर आप तक हम आ जाते हैं। तो चलिए इस सफर में आपके साथ आज की इस रात में हम और आप दोनों मिलकर गढ़ेंगे वापस उन्हीं किस्सों को जो है आपके दिलों के हिस्से, वो जो है आपकी जिंदगी के किस्से। रजनीगंधा 107.4 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रजा के साथ।

वैसे अगर गौर से देखें ना तो यकीनन ये बात बिल्कुल सही लगती है कि जब आप किसी की मोहब्बत में होते हैं तो आपको आस के आपके आसपास सब कुछ बस ऐसे ही खुशनुमा सा लगता है। ठंडी हवा के झोंके जैसे आपको छूते हुए से गुजरते हैं और जैसे किसी के प्यार की सदाएं कानों में आकर कुछ प्यार से कहती गाती गुनगुनाती जाती हैं, ठीक जैसे रजनीगंधा के सदाबहार नगमे आपके कानों तक गुजरते हैं। रजनीगंधा यानी रात की रानी, एक ऐसा फूल जो सूरज ढलने के बाद अपनी खुशबू को बिखेरता है, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के सो जाने के बाद किसी की यादें हमारे दिल के बंद कमरों को महका देती हैं। बहुत बार आपने भी महसूस किया होगा जरूर इस बात को। तो अगर आपके सिरहाने किसी की याद में आज कोई फूल इस वक्त भी रखा हुआ है ना, जो रजनीगंधा की महक से भरा हुआ हो, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसे बंद आंखों से आप छूना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी याद जो आपके दिल के किसी कोने में आज भी बसी हो, या फिर कोई ऐसा इत्तफाक

जिसे आप बार बार अपनी जिंदगी में जीना चाहते हो, जिसे आप बार बार वापस दिल के किसी कोने का हिस्सा बनाना चाहते हो। अगर हाँ, तो आज की हसीन रात सिर्फ और सिर्फ आपके और आपकी उसी मोहब्बत के नाम, वो मोहब्बत जिसके किस्से, जिसके फसाने आप हर रात 10 बजते ही रजनीगंधा के इस सफर में साझा करते हैं, सुनते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह आपके रहने की दरकार को साथ लिए रजनीगंधा के सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे, और इस उम्मीद में कि हाँ, अगर दिल के किसी कोने में ये तमाम सारी यादें हैं जो आपके दिल का हिस्सा हैं, तो बस ये वक्त, ये सफर, ये लम्हा, ये घड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

अच्छा, कभी आपने इस काले का जो का रंग है ना, इसको गौर किया है ना? कहते हैं कभी कभी बेहद खूबसूरत लगता है, जब आंखों में अगर काजल बनकर बस जाए तो क्या ही कहने, या फिर कभी अगर होठों के पास काला तिल बनकर आ जाए तो क्या ही कहने। बाहर जाकर देखिए जरा, रात ने भी अपना काला लिबास पहन लिया है, वो रात जो हर रात हर रोज चांद का हाथ लेकर, चांद का साथ लेकर आसमान में धीरे धीरे बढ़ती है मोहब्बत के किस्म के साथ। और वो जो उसमें सफेद सफेद सितारे जड़े हुए ना, चांद ने उस पर अपनी चांदनी की जैसे कढ़ाई कर दी है। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अभी अभी आया होगा अंदर, एक रूहानी महक के साथ। हाँ, रजनीगंधा ही है ये, वो रजनीगंधा जो एक ऐसा फूल जो दुनिया के शोर में अपनी खुशबू छुपा कर रखता है, और फिर जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है चुपके से महक उठता है। मोहब्बत भी तो कुछ ऐसी होती है ना, दुनिया के सामने खामोश और तन्हाई में सबसे ज्यादा असरदार, एक दूसरे से खामोशी से बातें करती हुई, पूछती हुई, ये कहती हुई कि तुम होते तो ऐसा होता या तुम होती तो वैसा होता। हाँ, खामोश मोहब्बत का असर यकीनन कुछ ऐसा ही होता है। रात के 10:26 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त।

0: के साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई

तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

वैसे ये बात बिल्कुल सच भी है कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं पर अपनी धड़कनों से नहीं। वो धड़कनें जो ये कहना चाहती हैं कि आप किसी की मोहब्बत में हैं, जो बताना चाहती हैं कि आप किसी की मोहब्बत में हैं, लेकिन जब बात दुनिया, समाज, रीति रिवाज की आती है तो कई बार डर जाती हैं। लेकिन फिर वही बात कि अपनी धड़कनों से आप लड़ नहीं सकते। रात के 10 बजते ही जब सदाबहार गीतों का दौर शुरू होता है तो ये धड़कनें जैसे खुद से बातें करने लगती हैं। दूर कहीं रेडियो पर बजते ये गाने कई बार दिल के बेहद करीब से मालूम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं आपके आसपास कहीं कोई सुरीला राग बज रहा हो। न जाने कितने हसीन और यादगार लम्हात भी साथ ले आते हैं अपने साथ ये गाने, जब आप कभी इन्हें सुनते हैं तो। कई बार महसूस भी किया होगा आपने कि ये गाने अक्सर आपको कभी किसी बारिश का जिक्र याद दिलाते हैं तो कभी चांदनी रात का जिक्र, कभी कहीं कोई हंसी शाम है इसमें तो कभी कहीं किसी अजनबी से मुलाकात, वो मुलाकात जो किसी रोज़ इत्तफाकन होती है और उसके बाद ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। तो अगर कभी आपके साथ भी किसी दौर में ऐसा हुआ है तो हाँ, आज का रजनीगंधा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसे आप इस वक्त सुन रहे हैं आपकी दोस्त आपके रचा के साथ आपके अपने 107 FM रेनबो पर।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

तो इसे ही तो खूबसूरत इत्तेफाक कहते हैं ना, कभी किसी से दो पल की मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन के साथ चली आती है, एक ऐसा साथ जो वाकई आपको बेहद सुकून देता है। सच है बात ये कि जहाँ एक तरफ किसी की मोहब्बत दिन की कड़ी तपती धूप में रात की ठंडी चांदनी का एहसास कराती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी उतनी ही सच है कि दिन की रोशनी में हम चाहे जितने मसरूफ क्यों ना रहें, लेकिन ये जो रात का सन्नाटा है ना, इससे हम बच नहीं पाते। ये हमसे हमारी बातें करता है और फिर हमें उस चेहरे के करीब ले जाता है जिससे दूर रहकर भी हम दूर नहीं हो पाते, उस एहसास के करीब ले जाता है जहां कोई भूला सा ख्वाब सच होकर मुस्कुराता हुआ मालूम होता है। ठीक इस गीत की तरह जो ये कहता है कि तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है, तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है, तुम्हारी याद के साए मेरे दिल में रहते हैं।

0: प्यार की पहली कशिश भी कितनी अजीब होती है ना, जब किसी का चेहरा सामने आए बिना ही धड़कनें तेज हो जाती हैं, जब मोबाइल की हर रिंगटोन पर लगता है कि शायद उसका ही कॉल होगा, जब भी कभी दरवाजे की घंटी बजती है तब हर बार यही लगता है कि शायद उसके नाम का खत होगा। जब भी कभी किसी गाने की धुन बजती है तो जहन में सिर्फ और सिर्फ वही याद आता है, आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं आके तैर जाता है। तो अगर आप भी इस वक्त किसी की यादों की खुशबू में डूबे हैं तो आज की ये शाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। खो जाइए उन यादों में और सुनिए नगमा जो शायद आपकी ही दास्तां कहता हो, जो कहीं आपके दिल की ही बात को आप तक पहुंचाता हो।
1: अंकल ये कौन गा रहा है?
2: हमारा एक कैदी है अमर।

लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक पाक जज्बा है, वो जज्बा जिसे दिल की गहराइयों से, रूह की गहराइयों से महसूस किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आजकल के दौर को देखें ना, तो आजकल के राइट स्वाइप जमाने में हम शायद वो पुरानी वाली मोहब्बत कहीं भूल से गए हैं। वो चिट्ठी लिखना, वो घंटों इंतजार करना, वो नजरें मिलते ही पलकों का झुक जाना, शायद आज के दौर में नहीं मिलता देखने को, क्योंकि मोहब्बत को हमने डिजिटल जो बना दिया है। पर सच तो ये है कि मोहब्बत डिजिटल नहीं होती, मोहब्बत तो एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। और अगर आपके पास है ऐसा कोई एहसास जिसे देखकर आपकी सारी थकान मिट जाती हो, जिसकी मुस्कान आपके होठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कान ले आती हो, या फिर किसी के रोने से आपका दिल भर आता हो, तो मुबारक हो आपको, आपने इश्क का वो मकाम पा लिया है जिसे लोग किताबों में ढूंढते हैं। कहते हैं जिसकी इबारत दिल की कलम को फूलों के रंग की स्याही में डुबो कर लिखी जाती है।

पता है, कभी कभी सच में लगता है कि वाकई बहुत खुशकिस्मत है वो जिनकी जिंदगी में मोहब्बत का एहसास समाता है, जहाँ दो दिल एक जान हो जाते हैं, जहाँ अपना पराया जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ होता है तो बस मोहब्बत, और उस मोहब्बत का वो एहसास जो दिलों को जोड़ देता है, बांध देता है उन्हें एक बंधन में। उस बंधन में नहीं जहाँ आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, बल्कि उस बंधन में जो आपको आज़ादी का भाव देता है। क्योंकि कहते हैं कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं होता, बल्कि एक आज़ादी है, खुद को बेहतर बनाने की आज़ादी, जहाँ मैं और तुम का भेद नहीं बल्कि हम का

साथ साथ चलता है, ठीक वैसे जैसे आपके होने से हमारे होने से वो एहसास एक साथ चलता है। तो इस एहसास को हम आगे भी आपके साथ यूं ही जिएंगे। रात के 10:57 का वक्त हो चुका है, रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को यहीं पर वाइंड अप करने की है बारी, तो रात कहीं मत जाइए। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश इल्तिजा कि रहना है आपको इस सफ़र को पूरा करने के लिए उस दौर तक जहां रजनीगंधा का ये सफ़र रहेगा आपके साथ। फिलहाल मैं हूं आपकी दोस्त आपकी रचा रजनीगंधा के इस खूबसूरत सफ़र में, सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं और सुनिए मुख्य समाचार। ज्येष्ठ माह के पावन तृतीय बड़ा मंगल के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, सुंदरकांड पाठ एवं विशाल भंडारों में महापौर सुषमा खरकवाल सम्मिलित हुई। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया और प्रभु श्रीराम तथा संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर शहरवासियों के सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में किए गए आह्वानों को जन जन तक पहुंचाने और जनता को राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि रखने के लिए आगरा में आज भाजपा राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम अभियान के तहत विशाल जन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्र प्रथम अभियान के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने, स्वदेशी को बढ़ावा देने, ईंधन बचत, कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। काशी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने तथा विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास को लेकर कमिश्नरी सभागार में केंद्रीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने वाराणसी में प्रस्तावित पर्यटन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए होटल, टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट गाइड संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए। अमरोहा में आज नगर पालिका परिषद में उप नगर आयुक्त डॉ. ब्रजेश कुमार द्वारा पालिका सभागार में किन्नरों के साथ बैठक कर जनगणना 2027 की जानकारी देते हुए सभी को जागरूक करते हुए प्रथम चरण की मकान गणना के लिए स्वगणना किए जाने का आह्वान किया गया। बैठक में उपस्थित किन्नर समाज के लोगों को स्वगणना

घटना की पूरी जानकारी देते हुए मौके पर ही स्वगणना कराई गई। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला कार्यक्रम रजनीगंधा आपके साथ आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

न जाने कितनी बार आपके दिल ने भी आपसे इस सवाल से कहा होगा कि कहीं ये तुम वही तो नहीं जो आपके सपनों में आकर बार बार आपके पलकों की दहलीज पर दस्तक देते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत भी जो है ना वो ख्वाब के हिस्से ही होती है। कोई हसीन ख्वाब कभी आपकी आंखों में सजता है जिसे कई बार आप बंद तो कभी खुली आंखों से देखते हैं और चाहते हैं कि वो ख्वाब कभी ख़त्म ना हो। ये मानकर कि भले ही वो आज उस रात आपकी आंखों का मेहमान है लेकिन जल्द ही जिंदगी की सच्चाई भी होगा। वो ख्वाब जिसे आप अपनी मोहब्बत के साथ पलता हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। यकीनन ये ख्वाब भी पूरा होगा जो इस वक्त मेरी आंखों में है कि आप यहाँ मेरे साथ इस सफर को पूरा करने के लिए हैं। रात के 11:13 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रिचा के साथ।

प्यार भरा दिल हमेशा यही चाहता है कि जो भी सपने उसने देखे हैं, जो भी ख्वाब उसने बुने हैं, वो पूरे हो जाएं। जब मोहब्बत की शुरुआत ख्वाब से होती है तो उस वक्त जहन में सिर्फ और सिर्फ यही दास्तान चलती है। लेकिन मोहब्बत में ख्वाब सिर्फ मिलन के नहीं होते, कभी कभी इंतज़ार भी ख्वाब बन जाता है। किसी की आहट का इंतज़ार, किसी के पैगाम की उम्मीद। हर रात इसी ख्वाब के साथ सोना कि कल का सूरज हम साथ में देखेंगे। ये मोहब्बत और ख्वाब के एक होने की निशानी ही तो है, क्योंकि कहते हैं कि ख्वाब ही वो पुल हैं जो हमें अपनों से मिलाते हैं। बाहरी दुनिया में जो कर सके तो कर सके, लेकिन सपनों की दुनिया में लाख मनाने के बाद भी उस साथ को अलग नहीं कर पाता कोई, ना समाज, ना दुनिया और ना हम खुद।

कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के सफर में न जाने कितने लोगों से हम रोज मिलते हैं। कई बार कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी में कहीं ठहर जाते हैं, रह जाते हैं आपके दिल में, और कई बार कुछ ऐसे जिनसे भले ही हमारे रिश्तों की उम्र लंबी ना हो लेकिन वो आपकी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ कर जाते हैं। हम जितने लम्हात भी उनके साथ होते हैं वो हमारी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक होता है। और फिर उस वक्त यादों से भरा दिल चाहता बस यही है कि काश हम जिंदगी को रिवर्स लेकर जा पाते, फिर से उस इंसान को रीसेट कर पाते, जिंदगी को फॉरवर्ड कर पाते। लेकिन ये हम भी जानते हैं और वो भी कि ये महज ख्वाब भर है। लेकिन फिर वही बात कि ख्वाबों की खास बात भी तो यही है ना कि हम जो असल जिंदगी में नहीं कर पाते, नहीं जी पाते, हम उसे बहुत आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ ख्वाबों में जी लेते हैं। ये जानते हुए भी कि ये कभी मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी तमाम सीमाओं रेखाओं को तोड़कर हम चले जाते हैं उस पार किसी अनजानी आस के पीछे, ये सोचते हुए कि शायद किसी रोज़ उस सफ़र को अपनी मंजिल मिल ही जाए।

तभी तो शायद मन को चंचल कहा जाता है कि एक जगह टिकता नहीं, बस जाना चाहता है उस आस के पीछे जिसे शायद अक्सर वो पा भी ना सके, लेकिन फिर भी मन में इस आस को हमेशा रखता है कि हाँ कभी किसी रोज उस सफर की मंजिल में वो पहुंच जाएगा वहां तक। कहते हैं प्यार इश्क मोहब्बत कहने को ढाई अक्षर का छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अगर गौर से देखें ना तो इश्क में भी आधा और मोहब्बत में भी आधा। लेकिन बावजूद इसके प्रेम के एहसास को पूर्णता से जीना सिखाता है ये छोटा सा अक्षर। जहां एक दिल ये कहता है कि अगर मैं शब्द हूं तुम अर्थ हो, तो दूसरा दिल भी खूबसूरती से इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ तुम बिन मैं भी व्यर्थ हूं। और यही प्रेम की पूर्णता है जिसे चाहकर भी कोई मिटा नहीं सकता कभी, फिर चाहे लाख जमाना कोशिश करे, फिर चाहे लाख आपका मन इस बात की दलीलें दे कि कभी उस सफर

तो दूसरा दिल भी खूबसूरती से इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ, तुम बिन मैं भी व्यर्थ हूँ। और यही प्रेम की पूर्णता है, जिसे चाहकर भी कोई मिटा नहीं सकता कभी। फिर चाहे लाख जमाना कोशिश करे, फिर चाहे लाख आपका मन इस बात की दलीलें दे कि कभी उस सफ़र की मंजिल पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन प्यार अपनी राह पर पूरी आस के साथ, शिद्दत के साथ चलता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी किसी रोज़, किसी मौके, किसी मोड़ पर वो उसे ज़रूर हासिल करेगा जो उसकी चाहत है। 11:28 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर इस वक्त आपकी दोस्त, आपकी रचा के साथ।

सच है ये बात, अगर आप किसी से वाकई मोहब्बत में हैं, सच्ची मोहब्बत में हैं, तो फिर ये डर वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी कई बार दिल डरता है, जानते हैं क्यों और कहाँ ये डर होता है? वहाँ और तब जब हम प्रेम को सिर्फ और सिर्फ दैहिक अनुभूति से जोड़ देते हैं, जो वाकई आपको वैसे तो कुछ देर के लिए बहुत सुख दे सकती है, लेकिन अगर अमर और अटूट होने के भाव की बात करें ना, तो शायद नहीं। सिर्फ जिस्मानी तौर पर किसी को पाया तो क्या मोहब्बत की? मोहब्बत तो वो है जो किसी के सारे गमों को अपना कर अपनी सारी खुशियां उसके नाम कर दे, बरसों से नींद को तलाशते किसी की आंखों में जाकर सुकून भरी नींद बनकर बस जाए, किसी के ना होने पर भी पूरी शिद्दत से पूरे समर्पण के साथ उसी का होकर रह जाए। यकीन मानिए, इससे बेहतर, इससे ज्यादा गहरे और अटूट प्रेम का कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता।

अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा। लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ हंसना और हंसना लिखूंगा।

0: भागूं।
1: यकीन मानिए, कभी किसी के लिए ऐसे जीकर देखिए, सच मानिए, इससे बेहतर सुकून जिंदगी में कभी नहीं होगा। और वो जो मोहब्बत आप कहते हैं ना, शायद इससे बेहतर मोहब्बत कोई हो ही नहीं सकती। तुम मिलो तो आत्मा में उतरो, तुम मिलो तो आत्मा में उतरो, केवल शब्दों में नहीं मौन में भी उतरो। क्योंकि प्रेम वो नहीं जो कहा जाए, वो है जो बिना बोले भीतर तक सुना जाए, जो बिना छुए भी महसूस किया जाए, रूह की गहराइयों तक उतर जाए। तुम दूर हो फिर भी पास नजर आती हो, तुम दूर हो फिर भी पास नजर आती हो, इन हवाओं में भी तुम्हारी ही खुशबू है।

किसी को चेहरे से किसी को बातों से हुई, किसी को चेहरे से किसी को बातों से हुई, मुझे उससे मोहब्बत उसकी आंखों से हुई। रात के 11:45 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत वो नहीं जिसके पास धन दौलत हो, बल्कि वो है जिसके पास एक ऐसा हाथ है जिससे वो उम्र भर थाम सके, जो ये भरोसा दिला सके कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भीड़ में आपकी तलाश खत्म कर दे, क्योंकि वही मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है। और उस मोहब्बत का साथ मिल जाना जैसे तपती धूप में अचानक घनी छांव का मिल जाना। जब उनकी मोहब्बत के साए हमारे साथ हुए, जब उनकी मोहब्बत के साए हमारे साथ हुए, यूं तो अकेले भी कट जाती है जिंदगी, पर उनके मिलने से हम मुकम्मल इंसान हुए।

पता है जिंदगी की पहली सच्चाई क्या है? हम अक्सर मंजिल की तलाश में इतना थक जाते हैं कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल जाते हैं, उन फूलों को चुनना भूल जाते हैं जिनकी खुशबू से हम दिन रात महकते हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि ठहरना भी जरूरी है, बिल्कुल इस रात की तरह। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत कोई सौदा नहीं। मोहब्बत तो वो एहसास है जो आपको तब भी सुकून देता है जब आप किसी के साथ हों, और तब भी जब आप अकेले हों, क्योंकि उस अकेलेपन में भी किसी की याद के साए आपको अकेला जो नहीं रहने देते, वो हर वक्त आपको ये एहसास कराते हैं कि हाँ, वो हैं आपके साथ, हर वक्त, हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं, हर वक्त आपके साथ किसी साए की तरह। आमने सामने से नहीं ख्वाबों में बात होती है, आमने सामने से नहीं ख्वाबों में बात होती है, हर रात उससे ख्यालों में मुलाकात होती है। वो कहाँ दूर है मुझसे, कभी याद, कभी एहसास, तो कभी हमसाया बनकर वो मेरे साथ होती है।

तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ भी हमेशा ऐसे ही रहेगा, एक दूसरे के साथ, फिर चाहे आलम तन्हाई के हो या एक दूसरे के साथ के हो, हम और आप दोनों जिंदगी की राहों पर यूं ही चलते रहेंगे। दीजिए आज के रजनीगंधा से आपकी दोस्त आपकी रिचा को इजाज़त, लेकिन वो तमाम लोग जो मेरे साथ आज इस सफ़र का हिस्सा बने उनका तहे दिल से शुक्रिया। नीलू, बबीता, रोशनी रावत, सिद्धांत, विशाल, शालू, आप सभी का दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपनी शिरकत बना के रखें। दीजिए आज की रजनीगंधा से आपकी दोस्त आपकी रिचा को इजाज़त, फिर होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।

नमस्कार। रात के 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय जनसंचार संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उर्दू पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के अनुसार प्रवेश परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को नई दिल्ली स्थित IIMC मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन के पात्र हैं। वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय राजकीय चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों को वर्तमान में पड़ रहे भीषण चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से बचाव एवं सुविधा हेतु सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मंडलीय अपर निदेशक प्रमुख अधीक्षक SSPG मंडलीय चिकित्सालय डॉ. ब्रजेश कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सालय परिसर में विभिन्न स्थलों पर 14 वाटर कूलर लगे हैं जो सभी क्रियाशील हैं, जिससे चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं OPD में आए मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी शुद्ध शीतल पेयजल सुलभ हो रहा है। बस्ती जिले में चल रहे 6 करोड़ की लागत से प्रमुख मंदिरों के पर्यटन विकास कार्यों का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने किया। उन्होंने आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए तैयारियों को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:17 पर और सूर्यास्त 6:48 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेडियो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 होने को हैं। अब हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50